0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
0: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमीव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से श्रावण मास के उपलक्ष्य में श्रावण मास में शिव पूजा और शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होती है वो मैं प्रस्तुत करूँगा। हिंदू परंपरा में श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा भक्ति और नियम से शिव पूजा करने से मन की शांति, परिवार में सुख समृद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। शिव पूजा से लक्ष्मी कृपा के लिए सरल विधि, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के शिवलिंग पर जल या गंगा जल अर्पित करें। दूध, दही, शहद, घी आदि से पंचामृत से अभिषेक करें। यदि संभव हो तो बिल्व पत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें या तो महामृत्युंजय मंत्र जप करें और मन का संकल्प करें बिल्वाष्टकम और शिव चालीसा का अवश्य पाठ करें। शुभ लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए भगवान शिव के सामने शिव चालीसा का पाठ करने से अत्यंत फलदायी होता है और शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माता पार्वती का स्मरण करें क्योंकि शिव पार्वती की पूजा को गृहस्थ जीवन में सुख और समृद्धि, समृद्धि माने तो या तो शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति समृद्धि से जोड़ा जाता है। लक्ष्मी कृपा के लिए प्रार्थना करें, हे भगवान शिव और माता पार्वती, मेरे घर में सदैव शांति, सदाचार, अन्न धन और सुख समृद्धि बनाए रखें। वैसी भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जहाँ शिव की कृपा होती है वहाँ शुद्धता और समृद्धिता अवश्य होता है। साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ईमानदार कर्म, दान, संयम और सदाचार को भी महत्व माना गया है। यदि आप चाहे तो भगवान शिव की आराधना श्रावण मास में सुबह शाम, प्रातः और रात्रि में अवश्य करें और माता पार्वती की भी आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव की आराधना के साथ माता पार्वती

शक्ति की पूजा अर्चना करने से शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, हमारे घर में आरोग्य और समृद्धि की अवश्य प्राप्त होती है। यहाँ पर एक श्लोक में कहा गया है, कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतक्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव।

0: जो भी भूल हुई है उन्हें क्षमा करे और अपनी कृपा प्रदान करे। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। आज के ध्यान के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेषु कुते बलम कूपं सिंहसु मधुमन्तः शश्वीनं निपातितं। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, बुद्धिहीन को बल कहाँ से प्राप्त होगा। किसी खरगोश ने मंदोमन सिंह को कुएं में गिरा दिया था। सपिंडनाय गजतो यदि क्रियते तप फलम तद्वेनम वेधम तस्म सुविधितम तप। यदि जगत को पीड़ा पहुंचाने के लिए तप किया जाए तो उसका फल नष्ट समझना चाहिए। अतः उत्तम उद्देश्य के लिए किया गया तप फल होता है। सर्वे तद्दुलम तद्युतम यदि बुद्धियाताम विरचयेत इदम निश्चितम की पाणी यूनम हिताम योगम कृते धर्म जीवा तुल्यम च कवापिम तम जितयेत तस्मान त्रणिनम कार्य विदितम यनभी अस्मिन्दम रक्षति जीवे त्रैलोक्यम रक्षति भवेत धाति धाति धन्युत्यातनम तम धनयेह न हिंसाम दृष्यते पापम त्रैलोक्यम सदाचरेत हिंसा को नरकम क्षते त्वं स्वर्गम गच्छते हितम भेतिस्ता भयम देह व्याधिभ्यम तभूषणम दिव्या विद्यार्थिनीं विद्या देयम यत्रम सुधातर। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी सम्मान है, ऐसा निश्चित करके किसी को कभी किसी भी जीव को हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतः ऐसा जानकर सभी प्रकार के प्रयल लोगों द्वारा मनुष्य को जीवों पर दया करनी चाहिए। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते श्री राम कृष्ण हरि नारायण। आज सैटरडे 8 अगस्त श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए शिव सती चरित्र को हम आगे बढ़ाएं। माँ सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए तैयार होती हैं। तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं

इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है।

जो कुछ राम जी ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा, विस्तार कौन बरावे। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव, भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां से गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे।

सती माता ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए जो युक्ति अपनाई है, तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। आज इसको यही विराम दो, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु।

0: साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्र प्रस्तोता प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। सपर्यगाच्छुक्रम कायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभुर्याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच्छाश्वतीभ्य समाभ्य। प्रिय श्रोताओ, ये मंत्र ईशोपनिषद का है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय। कितनी सुंदर ईश्वर की परिभाषा इसके अंदर दी है। ईश्वर को, भगवान को हम कैसे माने? सपरियगात, कण कण में व्याप्त है, शुक्रम और सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है वह अपने उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना दुनिया का, इसमें किसी की सहायता नहीं लेता, इसीलिए उसको शुक्रम कहा है। और परमात्मा कैसा है? अकायम, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित है। इसीलिए परमात्मा तीनों प्रकार के शरीर से रहित है। रामचरितमानस में लिखा है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।

0: शेषाव। क्या मतलब कि परमात्मा का शरीर नहीं, शरीर नहीं तो कोई फोड़े फुंसी नहीं हो सकते, नस नाड़ियों से रहित है। और कैसे हैं परमात्मा? शुद्धम परम पवित्र है, अपाप विद्धम निष्पाप है, वह कभी पाप से विद्ध नहीं होता। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे विशेषण भगवान के दिए हैं। कवि है, कवि का मतलब है क्रांतदर्शी है, विद्वान है। इसीलिए तो परमात्मा ने हम सब जीवों के कल्याण के लिए संसार के आदि में वेद का ज्ञान दिया और कहा कि इससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, संसार के नॉलेज को ज्ञान को प्राप्त करो। इसलिए परमात्मा को कवि कहा गया है, मनीषी कहा गया है। वह भगवान हमारे सबके मनों को गति देने वाला है, जानने वाला है, स्वयंभू है, अर्थात उसके होने में वही प्रमाण है, कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए कहा ना सेल्फ ओरिजिनेटेड, स्वयंभू, परिभू। और संसार में जो गलत काम करने वाले हैं, दुष्ट हैं, पापियों का पराभव करने वाला है। और कितनी सुंदर बात कही है, याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच्छाश्वतिभ्य समाप्य। समस्त प्रजाओं को अनादिकाल से जीवों के कल्याण के लिए पदार्थों को ठीक ठीक देता है, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे कर्मों के अनुकूल परमात्मा, समा का अर्थ है प्रजा, उन सारे प्रजाओं को अपने अपने किए हुए कर्मों के आधार पर वह अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो शब्द आए स्वयंभू, यह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, स्वयं भवति, जो स्वयं हो रहा है, जिसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया। इसीलिए उपनिषद कहता है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये समस्त प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवन धारण करते हैं, ऐसा परमात्मा है। बहुत सुंदर परिभाषा इसमें दी गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावणी पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

अधस्व मा सुचरिते भज उदायुषा स्वायुषो दस्थाममृता अनु ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोताओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से श्रावणी उपाकर्म के शुभ उपलक्ष पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, चरित्र मानव जीवन की अमूल्य संपत्ति है। चरित्रवान व्यक्ति का प्रत्येक स्थान पर आदर और सम्मान होता है। चरित्रवान दूसरों पर अपने विचारों की छाप लगा देता है। गेरुए वस्त्र, सिर पर पगड़ी, हाथ में लोटा और कंधे पर चादर डाले स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में शिकागो के किसी मार्ग पर भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने अपने पीछे चलने वाले एक स्त्री पुरुष के जोड़े को अपने वस्त्रों के संबंध में यूं कहते सुना, लुक एट दिस जेंटलमैन, इस महाशय को देखो। स्वामी जी समझ गए कि अमेरिका निवासी मेरी भारतीय वेशभूषा को हीन दृष्टि से देखकर इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अतः वे रुके और उस महिला को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय बहन, इन कपड़ों को देखकर आश्चर्य मत करो। देखो, इस देश के पुरुषों को तो कपड़े सज्जन बनाते हैं, परंतु जिस देश का मैं निवासी हूँ वह चरित्र ही मनुष्य को सज्जन बनाता है। इस अपूर्व बात को सुनकर वह दंपति विवेकानंद जी के चरणों में झुक गए। श्रोताओं, यदि आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो चरित्रवान बनो। चरित्रवान बनने के लिए जीवित सदाचारी स्त्री पुरुषों के मध्य में रहो। आप ऐसे समाज में रहो जो आपके आदर्श तक पहुंचाने में आपका सहायक हो। समाज को ही आप अपना मंदिर समझें। अपने आप को किसी ऐसे महापुरुष से संबंधित कर दो जिसका जीवन सादा हो, जो सदाचारी, धर्मात्मा, परोपकारी, अक्रोधी, संतोषी और कर्मशील हो। जिन महापुरुषों के नाम इतिहास में सूर्य और चंद्रमा की भांति चमकते हैं, उनकी जीवनियों को पढ़ो। उनके जीवन चरित्रों को पढ़ने से आपके जीवन में भी चमक और ज्योति आएगी। आपका चरित्र महान बनेगा। श्रोताओं, पेट के लिए अपना धर्म मत छोड़ो। ईश्वर को अंधा बनाने का प्रयत्न मत करो। पाप करने से डरो और चरित्रवान बनो। अंत में एक कवि के शब्दों में प्रभु से प्रार्थना है, सत्संग सेवा सत्य से प्रेरित हमारा प्राण हो, माँ भारती के बालकों का शुभ चरित्र निर्माण हो। इन्हीं विचारों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।

0: वृषभस्तिग्मा श्रृंगः पर्यग्ने परिसूर्य बभूव यो विष्टब्नाति पृथिवीं देवं च तस्मादेव अधि अधिसृष्टिः सृजन्ते।
1: सृष्टिकर्ता परमात्मा निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। सूर्य पृथ्वी आदि जितने भी ग्रह नक्षत्र विद्यमान हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा उपादान कारण से ही ग्रह नक्षत्रों का निर्माण करता है। महाशक्ति तीव्र तेज वाले सृष्टि का सृजन करने वाले परमेश्वर पृथ्वी सूर्य एवं अग्नि जल वायु आकाश आदि तत्वों को अपने सामर्थ्य और नियम से व्यवस्थित कर रखा है। पृथ्वी आदि सभी ग्रह नक्षत्रों को गति प्रदान करने वाले और अपने दिव्य नियम से चलाने वाले ईश्वर संपूर्ण सृष्टि का परम पालनहार हैं।
0: ओम अनृक्षरारिजवः सन्तु पन्थानो ये भिः सखायो यन्ति नो वरेयम् संभगेन समर्यम्ना संधाता सृजत्तु वर्चसा।
1: हमारे जीवन का मार्ग कांटों से भरा हुआ न हो, हम सब का जीवन विघ्नों आपदाओं कष्टों और शत्रुओं से रहित हो, हम श्रेष्ठ जनों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। जब हम और हमारे मित्र उस विघ्न रहित मार्ग पर ईश्वर के विधान और नियम के अनुसार चलते हैं तो धारण और पोषण करने वाला परमेश्वर हमें ऐश्वर्य और श्रेष्ठ व्यवहार के साथ जोड़ते हैं। हम अपने श्रेष्ठ व्यवहार से अन्यों का मान सम्मान करते हैं, कदापि किसी का तिरस्कार नहीं करते या अपमान नहीं करते, तभी हम प्रतापी होकर अन्यों की भलाई कर सकते हैं। परमात्मा की उपासना और देव स्वरूप विद्वानों का सम्मान करते हुए हम प्रतापवान ऐश्वर्यवान भाग्यवान और चरित्रवान बने।
0: ओम वाचस्पते पृथिवी नः स्यो नास्यो नायोनिस्तल्पानः सुषेवा इहैव प्राणः सख्येनो अस्तु तन्वा परमेष्ठिन् पर्यग्निरायुषा वर्चसा दधातु।
1: परमेश्वर का ध्यान करते हुए हम लोग विद्या तप और उचित पुरुषार्थ द्वारा संसार के पदार्थों को उपयोगी बनावें। संसार में जब पदार्थों का सही उपयोग होता है तो संसार का कल्याण होता है। वेद का स्वामी वाचस्पति परमेश्वर हम सब जीवों के लिए अन्न धन वैभव आदि से धरती को सुखदायक बनाते हैं। मनुष्य विद्या और तप के द्वारा उस सुख को पाने में सफल होते हैं, तभी हमारे निवास स्थान और धर्मस्थल में सुख शांति का संचार होता है। जिस प्राणवायु को धारण करके अपने को सामर्थ्यवान बनाते हैं वह प्राण शक्ति हमारे मित्र के समान हो। सबसे श्रेष्ठ और परम पद धारण करने वाले परमेश्वर सब मनुष्यों को प्रकाशवान ज्ञानवान विद्यावान दीर्घायु

0: तुम्हारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है। संध्या नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ खेल 2026 में मॉरिशस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, दो रजत और एक ब्रॉन्ज सहित कुल 4 पदक जीत कर 74 देशों में 15वां स्थान हासिल किया है। मंत्रिमंडल ने पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके ट्रेनरों को बधाई दी है, जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लुकोपियनो की टूर दे फ्रांस फाम में शानदार जीत की भी सराहना की है। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में उत्सर्जन 3.4% बढ़ा, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% की वृद्धि हुई है उसमें। मॉरिशस में उधर स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के तहत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस में उन्नत चिकित्सा सेवाओं, प्रशिक्षण, विशेष उपकरणों और आधुनिक उपचार सुविधाओं के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस डिजिटल प्रक्रिया के जरिए कर्मचारी टैक्स बेनिफिट्स यानी कि लाभों का दावा कर सकते हैं, जिसमें डिपेंडेंस और शुरुआती 5 लाख रुपए तक की थ्रेशहोल्ड पर टैक्स एग्जेम्पशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। और उधर एमटेल ने इस वर्ष की पहली छमाही में 320 मिलियन रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। बेहतर वित्तीय स्थिति, कम कर्ज और मजबूत लाभ मार्जिन के साथ कंपनी ने शेयरहोल्डरों के लिए डिविडेंड पेमेंट की नई व्यवस्था की घोषणा भी की है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय और दिन के दौरान बादल घिराएंगे और विशेषकर ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। धीरे धीरे रात के दौरान आसमान में बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। कोहरा छाएगा और हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और पूर्व की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के जुआर उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:54 पर।
2: Your weather forecast on RM2 Radio.

0: तो इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला. हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 बजे.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ.
3: किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो, किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना देखो. और जब उसके घर से निकलो तो अपनी ज़ुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे. लेडीज एंड जेंटलमैन, सांसद आवाज़ की हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों, देवी और सज्जनों, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार. सुबह के 6:05 हो रही है. हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं AM2 MBC रेडियो मॉरिशस की लहरों पे 819 KHz पर. आज है शनिवार की सुबह, शनिवार का दिवस 8 अगस्त साल 2026. परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि आज की सुबह और आज का पूरा दिन आप सभी के लिए एकदम अच्छी तरह से बीते. अगर साथ देने का वादा करते हैं तो बता देते हैं कि हमारा और आपका साथ रहेगा अब इसे लेकर दिन के 9 बजे तक. आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे. कल जो बीत चुका वो एक सपना था, जो है आपका हकीकत है, और आने वाला कल जो है आपका भविष्य है. सो वर्तमान में जिए और आने वाले भविष्य की तैयारी करें. इसी को अकलमंदी कहते हैं, इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं. चलिए इन्हीं विचारों के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की ओर. गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रोग्राम है वैदिक नाथ.
4: सुनिए गहलोत राजपूत महासभा की ओर से वेदों और शास्त्रों पर आधारित कार्यक्रम वैदिक नाद.

ॐ तत्सत् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आदरणीय श्रोतागण, सादर सप्रेम नमस्ते। वैदिक नाथ इस कार्यक्रम में मैं पंडित राम सेवक आप लोगों का स्वागत करा हूँ। हम श्रावणी पर्व मना रहे हैं, चलिए उसी आधार पर हम कुछ वेद मंत्रों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ओम कवि मग्निमुपस्तु ही सत्याधर्मणा वद्वरे देवमिव चातनम। उपास देव अग्नि के लिए इस मंत्र ने अनेक विभीषणों का प्रयोग किया है। उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अग्रगंता अग्नि को हम कवि कहकर पुकारते हैं। सर्वज्ञ मनस्वी तथा दिव्य विचारों का वाहक होने के कारण वह परमात्मा कवि नाम से पुकारा जाता है। प्रकाश स्वरूप तथा दिव्य गुणों का भंडार के कारण वह देव नाम से भी संबोधित होता है। वह सत्य धर्म है। परमात्मा के नियम सर्वदा सर्वथा सर्वलोकों में अटल रहते हैं, उनमें कभी व्यक्तिक्रम या व्याघात नहीं होता। ऐसे दिव्य ज्ञान के प्रदाता अग्नि का आह्वान हम नाना प्रकार के भौतिक एवं मानसिक रोगों का विनाश करने के लिए अपने उपासना रूपी यज्ञ में करते हैं। वैदिक साहित्य में यज्ञ के लिए जिन नामों का प्रयोग हुआ है उनमें एक अद्वर भी है। यह हिंसारहित होता है, किसी प्राणी के प्रति वाचिक मानसिक अथवा कार्मिक हिंसा का भाव प्रदर्शित किया जाता है या आचरण किया जाता है तो वह यज्ञ की भावना के सर्वथा प्रतिकूल होता है। इसलिए संसार में जितने श्रेष्ठ उपकारक तथा लोकोपयोगों परमार्थ के कार्य किए जाते हैं उनकी संज्ञा यज्ञ है। ऐसे महोपकारक यज्ञों को करते समय हम परमात्मा को कभी न भूलें। हम इसे अग्नि कवि और देव आदि विशेष

क्षणों से पुकारें, उनका आह्वान करें, उससे निवेदन करें कि वह हमारे रोगों, कष्टों, दुर्गुणों और दुर्व्यसनों को दूर करे तथा हमें सत पर चलने की प्रेरणा दें। ओम सन्नो देवीर्विष्ठय आपो भवन्तु पीतये। किंचित परिवर्तन के साथ यही मंत्र यजुर्वेद में आया है और उसी पाठ को ऋषि दयानंद ने मध्यता के आचमन को रूप में विनियुक्त किया है। यजुर्वेद में आपो भवन्तु का प्रयोग हुआ है तो सामवेद में सन्नो भवन्तु पाठ मिलता है। सर्व प्रकाशक सर्व सर्वानंद प्रद परमेश्वर ही देवी पद से पुकारा गया है। अपने अभिष्ट सुखों की प्राप्ति के लिए हम उसी को पुकारते हैं, उसकी ही स्तुति करते हैं। संपूर्ण आनंद एवं लौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की शरण में जाना ही उपयुक्त है। वह परमेश्वर हम पर चारों ओर से सुखों और मंगलों की वर्षा करें। मंत्र का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, दीवु धातु का अर्थ क्रीड़ा आदि है, उसे देवी शब्द सिद्ध होता है। सबका प्रकाशक, सबको आनंद देने वाला सर्वव्यापक ईश्वर मनोवांछित आनंद और पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हुएं और हमारा कल्याण करें। वही परमात्मा हम पर निरंतर सुखों की वर्षा करता रहे। इस मंत्र का आचमन में विनियोग सर्वथा उपयुक्त है। जिस प्रकार हथेली में जल लेकर आचमन करने से शरीर तथा इंद्रियों में शांति, प्रबुलता तथा ताजगी की संचार होता है, इसी आधार करुणा वरुणालय परमात्मा से भी हम सुख एवं कल्याण की वृष्टि के लिए सतत प्रार्थना करें। यही इस विनियोग की सार्थकता है। ओम पाहिनो अग्न एकया पाहयु इतः दिव्यतियायत। परमात्मा हमारा रक्षक है, वह अपने शरणगतों, भक्तों तथा उपासकों की सदा रक्षा करता है, किंतु उसने हमें परावलंबी नहीं बनाया। ईश्वर ने वेद ज्ञान देकर हमें सदा सदा के लिए स्वावलंबी बना दिया है। बल प्रदाता परमात्मा ही है, उसे अन्यत्र शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक बलों का प्रदाता कहा गया है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक तथा लोकांतरों में बसा होने के कारण वसु संजग भी है। वह ऋग्वेद रूपी परमात्मा पर्यंत प्रदातों का ज्ञान है। अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, वायु आदि विभिन्न देवताओं की स्तुतियों का यह संग्रह वास्तव में एक अद्वितीय परमात्मा के स्वरूप का ही आख्यान करता है, जो उपयुक्त नामों के द्वारा पुकारा जाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं को जानकर तथा तदनुसार आचरण कर मनुष्य अपनी रक्षा करता है। पुनः यजुर्वेद में वर्णित नाना श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने की सिख देकर परमात्मा ने हमारी सुरक्षा का एक दूसरा साधन हमें उपलब्ध करा दिया है। तृतीय सामवेद भक्ति और उपासना के मंत्रों का संग्रह है। मनुष्य की वास्तविक सुरक्षा, इसका कवच तो प्रभु भक्ति ही है। उपासना का यह मार्ग हमें प्रभु की तीसरी सामवेदात्मक वाणी से प्राप्त होता है। अथर्ववेद का ज्ञान विज्ञान प्रतिपादक मंत्र भी हमारे रक्षक है। विभिन्न लौकिक तथा आध्यात्मिक उपदेशों के संकलन रूप इस चतुर्थ वेद के द्वारा हम अपनी रक्षा करें, यही परमात्मा को इष्ट है। ओम अया अग्नि सुवीर्यस्य सेरु हितिशो भगास्तः राय हिषे स्वापत्मस्तत्य गोमत
ईशे वस्त्र आधनम। इस मंत्र में अग्नि नाम वाले परमात्मा के अनेक

0: गुणों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम हम इस परमात्मा को बल का स्वामी कहकर पुकारते हैं। परमात्मा के बल का अनुमान लगाना सामान्य व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। उपनिषदों ने परमात्मा के ज्ञान, बल और क्रिया को स्वाभाविक माना है। ये गुण उसके किसी वाहन साधन से उपार्जित नहीं है, जैसे एक साधारण मनुष्य के बल का उपार्जन करना पड़ता है, वैसे परमात्मा के लिए नहीं है। अपने सहज बल के द्वारा ही वह सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार जैसे दृष्टिकर कर्म करता है। वही परमात्मा समस्त सौभाग्यों का भी स्वामी है। ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश आदि उत्कृष्ट दैवी संपत्तियों परमात्मा की कृपा से मनुष्य को प्राप्त होती है। परमात्मा अपने सेवक और भक्त के लिए इन सौभाग्यों की वृष्टि कर देता है। परमात्मा की कृपा से ही हमारी संतानों में सद्गुणों का संचार होता है। इसीलिए पारस प्रकारांतर से हम उसे उत्तम गुणवान संतानों का प्रदाता कहते हैं। उसकी कृपा से ही हम अपने इंद्रियों तथा वाणी का परिष्कार करते हैं। इंद्रियों का वशीकार तथा मधुर सत्युक्त प्रिय वाणी का उच्चारण परमात्मा की कृपा से संभव होता है। वही अग्नि पापी जनों का दमन करने वाला श्रेष्ठ बल संपन्न पुरुषों का स्वामी है। तो आदरणीय श्रोतागण, इन्हीं विचारों के साथ वैदिक नाट कार्यक्रम यहां विराम ले रहा है। ओम शांति शांति शांति। ओम रक्षक।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैदिक नाट।
2: आजकल श्रावण मास चल रहा है। घर घर में वेदों का पठन पाठन और वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो चलिए कुछ वेद मंत्र हम पढ़ते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा मृत्योर्गमय, मृत्योर्मा मृत्यं गमय। ओम शांतिरंतरिक्षुगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जहाँ वेद मंत्रों का गुणगान करते रहिए, सर श्रावण मास को पावन बनाइए। एक तरफ वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है तो दूसरी ओर शिव जी की भी आराधना हो रही है। और बहुत ही पावन महीना है ये श्रावण मास का महीना, जो हर वर्ष आता है जुलाई और अगस्त के महीने में। तो वेद मंत्रों का जाप करते रहिए और पूजा पाठ में लगे रहिए, इससे मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। चलिए इसी में हम सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा भजन कंचन कुमार के स्वर में, हे दयालु हे कृपालु। चलिए एक साथ सुनते हैं।

देवी और सज्जनों, याद है ठीक 6:25 पर आप सुनेंगे श्रावण मास के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस द्वारा, और वो वार्ता अमेरिका जाएगा सुबह के ठीक साढ़े छः बजे का पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल, और ठीक 7 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी चैनल पर योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्रेम से MBC Radio Mauritius.

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वकेतपु केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। सम्माननीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। वेद मास की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है उपर्युक्त मंत्र का भावार्थ। इस मंत्र का देवता है सविता। देवता का मतलब है विषय। इस मंत्र का विषय है नारायण और छंद त्रिष्टुप। इस मंत्र के द्वारा भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, दिव्य गुण युक्त प्रभु सवितः, समस्त ऐश्वर्य से युक्त और जगत को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर, दिव्य विशेष गुण युक्त गंधर्व, वाणी और पृथ्वी को धारण करने वाली केतपु, ज्ञान से अपने को पवित्र करने वाली नह हमारी केतम बुद्धि को, वाचम वाणी को स्वदतु माधुर्य से युक्त करें, यज्ञपतिम

शुभ कर्मों के रक्षक को भगाया ऐश्वर्ययुक्त धन के लिए प्रसुवा उत्पन्न कीजिए। श्रोतागण, इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या सुनिए। इस मंत्र में भगवान से चार प्रार्थनाएं की जा रही है। पहली प्रार्थना है यज्ञम प्रसुवा, अर्थात हे परमात्मन, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शुभ कर्म करने की प्रेरणा कीजिए। दूसरी प्रार्थना है यज्ञपतिम प्रसुवा, अर्थात जो शुभ कर्म करने वाले हैं उनके उत्साह को बढ़ाइए। तीसरी प्रार्थना है दिव्य गंधर्व, अर्थात दिव्य वाणी को धारण करने वाले हम भूले भटकों को मार्ग बताइए। चौथी प्रार्थना है वाचस्पति नह वाचम स्वदतु, अर्थात वाणी के स्वामी हमारी वाणी को मधुरता से भर दीजिए। इस मंत्र का मुख्य शब्द वाचस्पति है, जिसका सीधा अर्थ है वाणी का पति। जिस प्रकार गृहपति घर के मुखिया को कहते हैं, कुलपति गुरुकुल के मुखिया को कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में चांसलर कहते हैं, उसी प्रकार वाणी पर जिसका अधिकार हो उसे वाचस्पति कहते हैं। जिसने अपनी वाणी पर अधिकार पा लिया हो, मानो समस्त प्राणियों पर अधिकार पा लिया, क्योंकि वाणी के द्वारा ही हम अपने दुश्मनों को हितैषी बना सकते हैं, सभी का मन जीत सकते हैं। अर्थात ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहम भाव समाप्त हो जाए। मधुर वचन से अपना मन तो शीतल होता ही है और वह दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। श्रोतागण, प्रतिदिन सुबह शाम संध्या करते समय हम जल से मुख को स्पर्श करते हुए बोलते हैं ओम वाक वाक। याचक वाणी की शुद्धता, पवित्रता, मधुरता, शीतलता, सौम्यता तथा शांति की कामना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, ये सभी गुण मेरी वाणी में आ जाएं, जिससे मैं किसी अपशब्द बोल कर दिल न दुखाऊं। किसी का दिल दुखाना बहुत बुरी बात है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वाणी का ठीक ठीक प्रयोग जाने। वाणी परमात्मा प्रदत्त वरदान है, जो मानव के अतिरिक्त किसी और के पास नहीं है। इससे वह उत्तम से उत्तम कार्य करता है। प्रेम का प्रदर्शन, वात्सल्य का प्रदर्शन, स्नेह का प्रदर्शन, विनय का प्रदर्शन, प्रार्थना याचना करना तथा आशीर्वाद आदि भी इसी से देकर मनोवृत्ति का प्रकाश होता है। वह संगीत गाता है, वेद पाठ करता है, कविता सुनाता, सरस भावों को प्रकट करता है। श्रोतागण, यज्ञ करते समय इस मंत्र का उच्चारण करके याजक याचना करता है कि मेरा जीवन शुद्ध हो, मेरी भावना शुद्ध हो, मेरी वाणी शुद्ध हो, मेरी वाणी परमात्मा का ध्यान करने वाली हो, इत्यादि प्रार्थना करते हुए दक्षिण दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक परिसेचन करते हैं। जल की भांति अखंड प्रभा से युक्त मेरा जीवन यजमय बने। श्रोतागण, इस मंत्र में वर्णित इन चार प्रार्थनाओं का भाव यह निकला कि संसार को सुखमय बनाने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति के चार कर्तव्य है। पहला यह कि प्रत्येक व्यक्ति को सद विचारों का प्रचार करना चाहिए। दूसरा यह कि अच्छे काम करने वाले धर्मात्माओं के काम की प्रशंसा करके उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तीसरा यह कि जो जो हम जानते जावें उस पर पूरा आस्था और दृढ़ता के साथ आचरण आरंभ कर देना चाहिए। चौथा यह कि मनीषी अनुभवियों से मधुर भाषण की शिक्षा लेकर हमें इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर व्याकुल और विशुद्ध व्यक्ति भी शांति लाभ करें। आइए पुनः इस मंत्र का उच्चारण करें।
ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु।

0: वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावणी पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: शनिवार 8 अगस्त 2026 के इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कॉमनवेल्थ खेल 2026 में मॉरिशस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 4 पदक जीतकर 74 देशों में 15वां स्थान हासिल किया। मंत्रिमंडल ने पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके ट्रेनरों को बधाई दी, जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लुपको पियना की टू दे फ्रांस फॉर्म में शानदार जीत की भी सराहना की। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में उत्सर्जन 3.4% बढ़ा, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% की वृद्धि दर्ज की है। मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस में उन्नत चिकित्सा सेवाओं, प्रशिक्षण, विशेष उपकरणों और आधुनिक उपचार सुविधाओं के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस डिजिटल प्रक्रिया के जरिए कर्मचारी टैक्स बेनिफिट्स का दावा कर सकती है, जिसमें डिपेंडेंस और शुरुआती 5 लाख रुपए तक की थ्रेशहोल्ड पर टैक्स एग्जेम्पशंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। विपक्ष नेता के तौर पर अपनी नियुक्ति के अगले ही दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि वे राष्ट्रीय सभा में जनता की आवाज बनना चाहते हैं। भले ही वे संसदीय छुट्टियों के दौरान अपना पद संभाल रहे हैं, लेकिन नए विपक्ष नेता के अनुसार उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निर्धारित किए हैं। हमारे सहयोगी मिगन पुनापनायकन ने कल दिन के दौरान पोर्टलिस में न्यूटन टावर की 5वीं मंजिल पर स्थित उनके दफ्तर में उनसे मुलाकात की। गीता सुनारायण का है।
1: अपने नए दायित्व की जिम्मेदारी संभालते ही चेतन बाबूलाल ने इसे पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सभा के स्टैंडिंग ऑर्डर्स उनके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे, ताकि वे सदन में जनता की आवाज प्रभावी ढंग से उठा
2: सकें। Travail de leader de l'opposition, les poubzins, check and balances, le tout bonne décision qu'ils ont prend, le tout bonne mesure qu'ils ont prend.
1: चुनाव क्षेत्र नंबर 10 मोताई ब्लॉन्च ग्रैंड साउथ ईस्ट से निर्वाचित चेतन बाबूलाल का कहना है कि वे पूरी विनम्रता के साथ अपनी नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
2: Beaucoup de dossiers qui prioritaires. Quand on get, par exemple, coup de la vie même, coup de la vie vient bien sûr qui ban mesir capable amener pour soulager la population. Quand nous get l'inflation, nous get des lots. Problème des lots, CIB, courant, électricité peut monter puis aller même. Donc, nous avons beaucoup de dossiers, nous avons l'éducation.
1: 48 वर्षीय फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के सांसद इस पद को संभालने वाले 17वें नेता हैं। उनका कहना है कि वे विपक्ष के सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करें।

0: गाइडेंस वो पहुंचे वो वैसे फिर वो दवाई को मैं बिजा फिर
1: अपना पहला पीएनक्यू पूछने से पहले नए विपक्ष के नेता संसदीय छुट्टियों का उपयोग पूरी तैयारी करने और अपनी रणनीति को मजबूत बनाने में करेंगे।
2: मंत्रिमंडल ने संज्ञान लिया है कि खिलाड़ियों, ट्रेनरों, युवा एवं खेल मंत्रालय के अधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों और सपोर्ट स्टाफ सहित 75 सदस्य मॉरिशस के प्रतिनिधि मंडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भाग लिया। मॉरिशस ने 6 खेलों एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, जूडो, तैराकी, बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग में प्रतिस्पर्धा की। मॉरिशस ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते, जिनमें जूडो में 1 स्वर्ण, पैरा एथलेटिक्स में 2 रजत और बॉक्सिंग में 1 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। 74 देशों में भाग लेने वाले राष्ट्रमंडल खेल संघों में मॉरिशस 15वां स्थान पर रहा। मंत्रिमंडल ने पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके ट्रेनरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। युवा एवं खेल मंत्रालय ने 7 अगस्त 2026 को सम्मान समारोह आयोजित कर खिलाड़ियों और ट्रेनरों को नगद पुरस्कार प्रदान किए। मंत्रिमंडल ने किम्बर्ली लुतुपियन एमएसके के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने 6 अगस्त 2026 को टोर्नो-सुरोन में आयोजित टूर दे फ्रांस महिला श्रेणी के 6ठे चरण में स्प्रिंट फिनिश जीतकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में इसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% बढ़ गई। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की पर्यावरण की स्थिति पर जानकारी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आई है। इस पर शब न्यूज उजिय वहीद अली की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का।
3: मॉरिशस में 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, अधिक कचरे का निपटान और बारिश में कमी दर्ज की गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सकल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 6.57 मिलियन टन से बढ़कर 6.77 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष हो गया है, यानी एक वर्ष में इसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऊर्जा क्षेत्र अभी भी उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जो कुल उत्सर्जन में 75% का योगदान देता है। इसके बाद कचरा क्षेत्र का स्थान है, जो 13.4% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2025 में मॉरिशस में 582,798 टन कचरा दफन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। इसके अलावा मॉरिशस में प्राप्त वर्षा की मात्रा में भी 16.6% की कमी दर्ज की गई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मॉरिशस के सामने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं, खासकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कचरा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में।
2: स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन के प्रमुख शिक्षण अस्पतालों में से एक पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये इस सहयोग के तहत मॉरिशस को चीनी विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ मिलेगा, विशेष रूप से कुछ वैस्कुलर बीमारियों का पता लगाने और उपचार के क्षेत्र में। चीन के प्रोफेसर और विशेषज्ञ मॉरिशस आकर स्थानीय चिकित्सा टीमों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी देंगे, खासकर रेडियोलॉजी और न्यूरोलॉजिकल देखभाल जैसे विशेष क्षेत्रों में। इसके अलावा आवश्यक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी तथा चीनी विश्वविद्यालयों के साथ सीधा सहयोग विकसित किया जाएगा। सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिछू की प्रतिक्रिया को। काविंता पिसो, शबनीज उजिया वायदारी की रिपोर्ट पर विधिमा सिबरन का विवरण।
4: We've been seeing a memorandum of understanding avec Peking University Third Hospital, qui est une des plus grandes universités qui trouve dans la Chine. Là-bas, il y a beaucoup d'advanced clinical expertise.
5: हमने पेकिंग यूनिवर्सिटी सेड हॉस्पिटल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जो चीन में सबसे बड़े अस्पतालों में से एक हैं। वहां पर कई एडवांस क्लिनिकल विशेषज्ञ हैं। इस एमओयू के अनुसार वे हमें इंटरवेंशनल डायग्नोसिस जैसे क्षेत्रों में अपनी मदद देंगी। मॉरिशस को इन क्षेत्रों में अनुभव की कमी है, परंतु हमें चीन के साथ सहयोग मिल रहा है ताकि हम अपने मरीजों की मदद कर सकें। अगला चरण ये होगा कि इस यूनिवर्सिटी से विशेषज्ञ और प्रोफेसर मॉरिशस आएंगे और हमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और न्यूरो रेडियोलॉजी में हमारी मदद करेंगे। साथ ही एक टेक्निकल इंजीनियर भी भेजेंगे, जो

0: टेरे सुविधा स्थापित करेंगे ताकि संचार बेहतर हो।
1: Technical engineer qui peut set up mantelé facilities qui nous capable en communication avec soit l'université.
2: सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से कर्मचारी 30 जून 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने वेतन से कर कटौती शुरू होने से पहले अपने कर संबंधी अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं। इसमें डिपेंडेंस व्यक्तियों के लिए कटौती और पहले 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रणब बिहारी के अनुसार ये प्रक्रिया काफ़ी सरल है और पूरी तरह डिजिटल है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए वास्तव में किन चीज़ों की आवश्यकता है, ज़्यादा जानकारी उनकी इस रिपोर्ट में विधिवासी बुरन की विवरण के साथ एक बार फिर।
3: नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर या गैर नागरिकों के लिए NCID, एक टेलीफोन नंबर और एक ईमेल पता ही पर्याप्त है। डिपेंडेंट व्यक्ति के लिए टैक्स कटौती 1,10,000 रुपये है और 4 या अधिक आश्रितों यानी डिपेंडेंट के लिए ये 3,50,000 रुपये तक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले 5 लाख रुपये की टैक्स योग्य आय पर कोई कर नहीं दिया जाएगा। कई अन्य कटौतियों का भी प्रावधान किया गया है। डिपेंडेंट बच्चे की विश्वविद्यालय की फीस 5 लाख रुपये तक, निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस, देखभाल करने वाले की नियुक्ति, चैरिटी के लिए दान या फिर सौर ऊर्जा या रेन वाटर हार्वेस्टिंग में निवेश। साथ ही आय और संपत्ति की कुछ निश्चित शर्तों के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली राहत को भी नहीं भूलना चाहिए। MRA की वेबसाइट www.mra.mu पर फॉर्म उपलब्ध है।
2: अब इस आंकड़े को याद रखिए, 320 मिलियन रुपए। ये इस वर्ष की पहली छमाही में MTEL का मुनाफा है। दूरसंचार कंपनी ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है जहां उसका कर्ज कम हुआ है और प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हुए हैं। ये नतीजे निश्चित रूप से शेयर होल्डरों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि ग्रुप ने वर्ष के अंत में उन्हें डिविडेंड पेमेंट करने का एक नया तरीका पेश करने की योजना बनाई है।
3: दरअसल निदेशक मंडल ने डिविडेंड इन शेयर्स देने के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। अब शेयर धारकों के पास विकल्प होगा कि वे नकद भुगतान प्राप्त करें या MTEL के नए शेयर लें। वे दोनों विकल्पों का मिश्रण भी चुन सकते हैं। ये व्यवस्था इस दूर संचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी को अपनी वित्तीय लचीलापन यानी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और पिछले कुछ वर्षों की अच्छी प्रगति को जारी रखने में मदद करेगी। आंकड़ों के अनुसार इस साल के पहले 6 महीनों में कंपनी के मुनाफे में 34% की वृद्धि हुई है। वहीं राजस्व बढ़कर 2.14 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है जो 8.6% की बढ़ोतरी दर्शाता है। ये उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब 2025 की इसी अवधि में भी कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा था और उसका टर्नओवर पहले ही 10.8% बढ़ चुका था। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले के मुनाफे की बात करें तो ये 1.7 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है जो 10.8% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी के CEO मार्सेलो अलेमान ने इस प्रदर्शन का श्रेय पहले किए गए निवेशों के बेहतर क्रियान्वयन और उनसे मूल्य सृजन को दिया है। एक और सकारात्मक संकेत ये है कि समूह का कर्ज जो जून के अंत तक 3 बिलियन रुपए था, घटकर वार्षिकीकृत ब्याज पूर्व मुनाफे के मुकाबले 2.2 गुना से 1.4 गुना रह गया है। MTEL ने कहा है कि वो देश के डिजिटल परिवर्तन को तेज करने के लिए लक्षित निवेश जारी रखेगा।
2: जहां दुनिया अब तक के सबसे बड़े कोरल ब्लीचिंग संकट का सामना कर रही है, वहीं मॉरिशस में किए गए एक अध्ययन ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है। मॉरिशस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और शोधकर्ता नदीम नाजुराली ने 15 महीने तक लाकॉम्ब्यू स्थित एक प्रवाल यानी कोरल नर्सरी में 671 कोरल टुकड़ों का अध्ययन किया। इस वर्ष प्रकाशित परिणामों से पता चला है कि कुछ संरचनाओं में 77% से अधिक जीवित रहने की दर दर्ज की गई है। ये दर्शाता है कि प्रवाल भित्तियों की बहाली समुद्र के बढ़ते तापमान के सामने उनकी सहनशीलता और मजबूती बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी शैली नियबन की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण। दुनिया भर में ये समस्या है जो कि मुख्य रूप से समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने से उत्पन्न होता है। कोई इसको रोक नहीं पा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्रवालों यानी कॉरल्स की पुनर्स्थापना से प्रवाल भीति को

0: किसी भी प्रकार के प्राकृतिक या मानवीय संकट के बाद अधिक तेजी से पुनः स्वस्थ होने में मदद मिलती है। संस्थाओं के बीच ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। मंत्रालय, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों के बीच ये कड़ी है ही नहीं। केवल किसी परियोजना के लिए हम एक साथ काम करते हैं, इसके बाद संपर्क खत्म हो जाता है। निर्णय अनुभव और वैज्ञानिक खोज पर आधारित होने चाहिए। प्रवाल भीतियां यानी कोरल रीफ्स मॉरिशस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे तटों को कटाव से बचाती हैं, कई समुद्री प्रजातियों को आवास प्रदान करती हैं और मछली पालन तथा पर्यटन उद्योग को भी सहारा देती है। इस पर हम सुनते हैं एक बार फिर नदीम नजुराली को इस विवरण में।
1: Changement climatique lie une grande menace, mais bonne pression locale comme pollution.
0: जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा है, पर स्थानीय दबाव भी इनमें शामिल हैं, जैसे प्रदूषण, समुद्री इलाकों में विकास, जहाजों का प्रवार रेखाओं पर ठहरना तथा चन पर्यटन गतिविधियों के कारण भी कोरल्स प्रभावित हो सकती हैं। पहले से ही तनावग्रस्त कोरल के लिए समुद्री जल का तापमान बढ़ने पर उसके पुनर्जीवित होने की संभावना काफी कम हो जाती है। मंत्रालय को प्रदूषण पर नियंत्रण के वास्ते तथा प्रवार रेखाओं को क्षति पहुंचने से रोकने के लिए ज्यादा बूम्स लगाने होंगे, पानी के ट्रीटमेंट बेहतर करने होंगे तथा कमजोर प्रवार भीतियों का संरक्षण करना होगा और जागरूकता अभियान भी बढ़ाने होंगे। पिछले दिसंबर से बंद मेबक स्थित राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय यानी म्यूजियम में सोमवार से लोवो संग्रहालय के मुख्य संरक्षक डोमिनिक दुफों रेवलुक्स शामिल हुई है। ये सब एक सप्ताह के मिशन पर आई विरासत विशेषज्ञ संग्रहालय उसके संग्रह और आगंतुकों के लिए प्रदर्शनी मार्ग का मूल्यांकन करेगी। इसका उद्देश्य भविष्य की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक योजना तैयार करना है जो इस स्थल के नवीनीकरण का मार्गदर्शन करेगी। इस नवीनीकरण के लिए 100 मिलियन मॉरिशन रुपए की राशि निर्धारित की गई है। निर्माण कार्यों के अलावा इस पहल का लक्ष्य संग्रहालय को आधुनिक बनाना, राष्ट्रीय इतिहास को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना और मॉरिशन जनता तथा विदेशी पर्यटकों के बीच इसकी आकर्षण क्षमता बढ़ाना है। गौरतलब है कि मंत्री महेंद्र गोंदिया ने कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी के तहत 8 जुलाई को स्थल का पहला तकनीकी दौरा किया था। डोमिनिक दुफों रेलिक्स को सुनते हैं शैली नेबर की इस रिपोर्ट में। लक्ष्य है अपना दृष्टिकोण और सुझाव पेश करना और सहयोगियों के साथ जानकारियों का आदान प्रदान करना, जिससे नए मेबर्ग म्यूजियम पर अपने विचारों को सामने रख पाएंगे, जिसके कुछ सालों में पुनर्निर्माण कार्य किए जाएंगे। जरूरी है इस स्थल के अस्तित्व को समझना, जैसे कैसे और कहाँ इस संग्रहालय को बनाया गया, इसके आसपास क्या है तथा जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं वे कौन हैं, और आवश्यक ये भी है कि वर्तमान में इस संग्रहालय की स्थिति और संग्रहों की स्थिति क्या है तथा कैसे यहाँ की जगह तक पहुँचा जाए और इसका उपयोग किया जाए। ये एक वृतांत होने के साथ साथ इस स्थान की प्रत्यक्ष स्थिति का भी वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत तीनों देशों में से किसी एक पर होने वाले हमले की तीनों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते की घोषणा सऊदी अरब के मक्का शहर में आयोजित बैठक के दौरान की गई, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसमें शामिल हुए। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण सऊदी अरब क्षेत्र तनाव की चपेट में आया है और रणनीतिक तेल परिवहन मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तथा रेड सी में समुद्री यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में तीनों देश अपने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले वर्ष भी एक संयुक्त रक्षा समझौते की घोषणा की थी। मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का उद्देश्य किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करना है। समझौते के अनुसार तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है सुबह

के समय और दिन के दौरान बादल घिरेंगे और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। धीरे धीरे रात के दौरान आसमान में बादल घिराएंगे और पूर्व दक्षिण तथा ऊंचाई वाले इलाकों में रह रहकर वर्षा होगी। कोहरा छाएगा और हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। झोंका 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण और पूर्व की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:54 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। विक्टोरिया रोड मोटाइलोंग में 65 साल के 65 इयर्स ओल्ड के श्री भरद्वाज चमन जिन्हें मिनिस के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके बेटे महेश्वर सिंह नीरज चमन के घर मोटाइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूरियर 11:30 AM। TBS लेन थ्रियोली में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की जनाब महबूब रोमजोन जिन्हें मिस्यू महबूब के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। और जो पहले ACP का पद संभालती थी, इनका जनाजा आज सुबह 10:30 बजे इनके मकान थ्रियोली से उठाकर दफनाने के लिए प्रेंदी पपाय का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। रॉय रोड फ्लोरियाल में 86 साल की श्रीमती देवंती रामसामी पैदाशाम पियती और जिन्हें साबित के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टूटिया 1:30 PM। कॉर्सन विल में कॉचिमिलिटिया में 63 साल के श्री गोपी सिंह चोते जिन्हें रोहित चोते के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके बेटे आतिश छोटे के घर विल में कॉचिमिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास्क की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टूडे 8:00 PM। क्लेफो नंबर दो वाकुआ में 79 ईयर्स ओल्ड के श्री राम जंगली जिन्हें इंदर के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12:30 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडे 11:30 PM। एवेन्यू रोवर्स सेकोंस्टांस सेंपिया में 95 साल के श्री मोवेन मुनसामी जिन्हें दासन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके घर सेकोंसा सेपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंसा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11:30 PM। गांधी रोड एएनएस फ्लोरों में 56 साल के श्री सतीश उदित जिन्हें सतीश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे अक्षय उदित के घर एएनएस फ्लोरों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10:00 AM। कोलंबो रोड मोटाइलोंग में 70 साल की श्रीमती दमयंती मुरुवान पैदाशाम पुलिगादू और जिन्हें कमला के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कृष्णा मोवेन के घर मोटाइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोली की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टूरिया 2 PM। A9 Impasse Prem Singh Babulal Street Bobassin में 61 साल के श्री शिवराज गेन

श्री शिवराज गेनू, जिन्हें बाबू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौत की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 2 PM। हरे कृष्ण लेन फोतेन ल्योशे में 74 साल के 74 years old के श्री नारायण दत्त नुबिन, जिन्हें प्रकाश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके घर ल्योशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉमोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट नून। बाबूलाल लेन मौदालबिया में 94 साल की 94 years old की श्रीमती धनवंती खुबलाल पैदाशाम रघु और जिन्हें शांति के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे अर्जुन खुबलाल के घर मौदालविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1:30 PM। एवेन्यू एडवर्ड हॉट रेजिडेंस बोसेजो कैट्रोबोन में 63 साल के 53 years old के श्री सूर्यदेव लकू, जिन्हें मनोज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनके भाई नाराज मोहन लकू के घर रेजिडेंस बोसेजो कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए सुबह 11 बजे कैट्रोबोन सैजों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। रेलवे रोड सैमिशेल बेले रिवियर सेश में 77 साल की 77 years old की श्रीमती इंदुमती भुवन पैदाशाम विदेशी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे धर्मदेव भुवन के घर सैमिशेल बेले रिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। नंबर 17 एवेन्यू दे इबिस सुदना कैट्रोपोन में 86 साल के 86 years old के श्री पुबाला सुंदरन और नसाला पाते, जिन्हें बाला बिल पाते के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर सुदना कैट्रोपोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 11 AM। रॉय रोड और सिनाल में 60 साल के 60 years old की श्रीमती उषा जोगिया पैदाशनाम इसरिया और जिन्हें नानी गातो के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे वीरू जोगिया के घर और सिनाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे 10 AM। SSR Road, Mont Saint-André में 66 साल की 66 years old की श्री सुरेश ननलाल चुनी, जिन्हें कंट्रोल या TBS के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर मोसलमों सैत आंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मॉरिशस में समय सुबह के ठीक 7 बजे हैं।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत करते हैं और ये बुलेटिन शुरू करते हैं साइकिलिंग के साथ। आज महिला टूर डे फ्रांस का पूर्वांतिम चरण है। कल शॉ एलिजे में ये साइकिलिंग प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी और पूर्वांतिम चरण, जो इस साल की सबसे लंबी रेस मानी जा रही है, यानी

सिस्टेरों से निस तक का लंबा 171.9 किलोमीटर का रास्ता। हालांकि हमारे चैंपियन हमवतन किमलेकू देपिना जनरल क्लासिफिकेशन में 10वें स्थान पे है और वो टाइटल कंटेंडर से 6 मिनट 17 सेकंड दूर है। फिर भी आज की ये सबसे लंबी रेस एक टाइटल डिसाइडर साबित हो सकती है, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं, पिक्चर अभी भी बाकी है एक आखिरी रेस के लिए। इसलिए कम ऑन किम, कम ऑन मॉरिशस। उल्लेखनीय है कि कल के 7वें चरण में किम लेकू देपिना ने केवल 9वां स्थान प्राप्त किया और वो पहले स्थान पे आई पोलैंड की कैसिया फीने से 3 मिनट 58 सेकंड बाद आई और आज 171.9 किलोमीटर का लंबा रास्ता है सिस्टेरों से निस तक। क्षेत्रीय फुटबॉल में रोशनवा दुदला बीमा सुविनियर कप के अंतर्गत आज और कल इस सप्ताहांत के दौरान 2 मैच रखे गए हैं। आज शाम 3:30 बजे रेड डेस्टा का मुकाबला रेनबो एससी से होगा और कल शाम 3:30 बजे ही वहीं के फुटबॉल मैदान में स्पोर्टिंग एससी का मुकाबला एसोसिएशन रोशनवा से है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फांटिनो बहुत भारी असमंजस में है। इस बार उसका संबंध एक प्रेमिका के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे रिपोर्टर के मुताबिक एक सेवरेंस पेमेंट दिया गया था और जिसे इन्फांटिनो इनकार कर रहा है और जो उसके आलोचकों के मुताबिक फीफा के नियमों के विरुद्ध है और जिस पर सबसे पहले फीफा के अध्यक्ष इन्फांटिनो के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन सबसे पहले आइए कल के खेले गए मैचों के नतीजे सुनिए। इंग्लिश लीग कप के पहले राउंड के अंतर्गत कल 3 मैच खेले गए, जिनमें वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स ने पोर्ट वेल को 3-0 से हराया। विकुम वांडरर्स की हार हुई, विकुम 1 स्टीवनेज 2 और मिडल्सब्रो ने रैक्साम को 1-0 से परास्त किया। फिर स्कॉटिश चैंपियनशिप में पार्टिक के जीत हुई 2-0 से लिविंगस्टोन के खिलाफ और क्लब फ्रेंडलीज में कल बायर्न म्यूनिख ने एस्टन विला को 2-1 से परास्त किया। बायर्न म्यूनिख के लिए किम मिन जाए और लुइस डियाज का विनिंग गोल रहा। वाओ गोमेज ने खेल के 73वें मिनट पर एस्टन विला के लिए एक गोल कम किया। अभी अभी वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स से वाओ गोमेज आया है एस्टन विला में और उल्लेखनीय है कि इसी बुधवार 12 अगस्त की रात 11 बजे यूएफए सुपर कप खेला जाएगा। यूरोपा लीग विनर एस्टन विला और चैंपियंस लीग विजेता पेरिस सेंट जर्मेन के बीच कल बायर्न म्यूनिख ने एस्टन विला को 2-1 से परास्त किया। बाकी मैचों में कुछ और नतीजे सुनिए। कल के खेले गए मैचों में जिरोना और सादाबेल ने मैच ड्रॉ किया 2-2, जबकि फुलहम की हार हुई, फुलहम 1 क्रिस्टल पैलेस 2। और ऐसे में आज मोंजा और कैल्शियो पादुआ के बीच भी एक जो मैच खेला गया वो भी ड्रॉ पर संपन्न हुआ 3-3। आज शाम कई मैचों के साथ इंग्लिश लीग कप का पहला राउंड जारी रखा जाएगा, तो फ्रेंडलीज में भी अब दोस्त ना रहा। आज शाम 3 बजे से ही यूवेंटुस का मुकाबला इंटर मिलान से, चेल्सी खेलेगा एसी मिलान के विरुद्ध शाम 4 बजे, टोटनहम हॉटस्पर वर्सेस गेटाफे, तो पेरिस सेंट जर्मेन का मुकाबला आज रात 7 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। ये सभी मैच आज शाम खेले जाएंगे और कल लिवरपूल खेलेगा आईएस मोनाको के विरुद्ध। इन सब के बारे में सुनते रहिए और हम आपको सुनाते रहेंगे। टेनिस में, लेकिन इससे पहले ट्रांसफर बाजार में लिवरपूल फुटबॉल क्लब अपने फैंस को चौंकाना बंद नहीं करेगा। यदि पेरिस सेंट जर्मेन के ब्रैडली बाकोला और एम्बाये की तलाश जारी है तो अभी खबर आई है बीबीसी स्पोर्ट्स में कि अभी बार्सिलोना का 27 वर्षीय डिफेंडर रोनाल्ड अरोरो लोन पर लिवरपूल में आ रहा है और ये खबर बीबीसी स्पोर्ट्स में आई है। जबकि अभी लिवरपूल को चाहिए डिफेंस को मजबूत करना, सो लोन की बात हो रही है रोनाल्ड अरोरो
के आने की बात, क्योंकि अभी लिवरपूल की तलाश जारी है। सो इन सब के बारे में सुनते रहिए।

वर्ल्ड कप का बेहतरीन खिलाड़ी रोड्री एफसी बार्सिलोना का शिकार बन गया है, यानी उसका शिकार जारी है। किंतु मैनचेस्टर सिटी ने द ब्लाउग्राना के मात्र 38.5 मिलियन पाउंड को ठुकरा दिया है। ऐसी खबर है कि मैन सिटी 60 मिलियन पाउंड की मांग कर रहा है। रियल मैड्रिड भी अब इस रेस में लगा हुआ है। और ज्ञानी इन्फांटिनो की बात कर रहे थे, पॉलिटिशियंस, प्राइवेट जेट्स और पावर, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फांटिनो का जीवन। आजकल वो कोलंबिया में है, पिछले सप्ताह कहीं और था और अगले सप्ताह कहीं और होगा। और इस प्रकार तुम घूमते रहो और हम ढूंढते रहेंगे। इसीलिए कई फुटबॉल फेडरेशंस ने उनके इस्तीफे की मांग की है। इनमें से नोवे ने कल साफ साफ इन्फांटिनो से पद त्यागने को कहा, किंतु दूसरी ओर अपने फेडरेशन से हटकर मेक्सिको और अर्जेंटीना ने इन्फांटिनो का साथ देना अधिक मुनासिब समझा है। टेनिस के कैनेडियन ओपन में आज के मैचों में सारा ध्यान इन मुकाबलों पर होगा। मारिया सकारी का मुकाबला कोकोगाव से, कास्पर रूड वर्सेस हुआओ फोंसेका, जबकि चैम खेलेगा टोमी पोल के विरुद्ध। अरीना सबलन का इगा स्वियातेक, जेसिका पेगुला आदि टॉप खिलाड़ी कल से राउंड ऑफ 16 में कदम रख रही है। और क्रिकेट में श्रीलंका और इंडिया के बीच, भारत के बीच चल रहे 3 दिवसीय टेस्ट मैच के प्रथम दिन श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए हैं। आज संभवतः भारत के बल्लेबाज अपने बल्लों का जलवा दिखाएंगे। सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: समझे? शिकार करो लेकिन होशियारी से, कि ऐसा ना हो कि तुम खुद शिकार बन जाओ।
1: बड़े तीतर पकड़ने आए थे, तीतर तो हवा।

अच्छा, इतने ढेर सारे तीतर, कितने हैं भला? आहा, गौर से देखो और सोच के बोलो।

0: सुबह के सात बजकर उन्नीस मिनट हो रहे, सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं एएम टू रेडियो मोशन्स की लहरों पे। अब सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ। मेनिल सेंट पॉल, रूट रॉयल मेनिल, बनारली लेन, एम्पास रामजोन, रविंद्रनाथ टैगोर एवेन्यू, जिंगू लेन, आली लेन, सोना लेन और पारिजो ब्रांच रोड, सिटी लेन, गुलजार लेन, अमीराली लेन, कालीचरण लेन, पिटोल लेन, धनी लेन एक, धनी लेन दो और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार, जी हां कल रविवार 9 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और सेंट क्वा डुक्रे, माफ़ कीजिए, सेंट क्वा डुक्रे, रामगुलाम, कनाक बाथर्स, सेंट क्वा रोड, रेजिडेंस ब्रिकेटरी के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है। फिर से सुन लीजिए अभिव्यक्ति। सेंट क्वा रू डुक्रे, रू रामगुलाम, कनाल बाथर्स द रू, सेंट क्वा रोड और रेजिडेंस ब्रिकेटरी के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 8 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और मुका ले रावन, मोसेलमेंट बागातेल, लुक्लेजियो एवेन्यू, ओल्ड रेड्यू रोड, मोसेलमेंट यूरेका, माउंट ओरी रोड, अम्ब और बाबूला लेन के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल अभियान 9 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। लालोरा शिवाला रोड, लालोरा विलेज, रोजलिन कॉटेज, शमें सेवियत, जार्डन और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 8 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और पेरेबेर, रू कोस्टल पेरेबेर, बैंबफ के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 8 अगस्त को सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। लालमाटी, रूट रॉयल, CWA की पास, ओवरसीज रोड, जानकी प्रसाद लेन, प्रोआग लेन, सिटी एडीसी, मौसल मोविया, SNHDC और सिमिचियर दे बोबोआ और आसपास में जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 9 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। अमिची बॉलो, गोकुला, बेबी मोगल और मोलवाजी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 9 अगस्त को सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और ओकुले, रॉयल रोड, रामपोसाद, रामदीन स्ट्रीट और वहाँ की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 10 अगस्त को दिन के 9 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मिडलैंड्स, जुब्रॉय, रॉयल रोड, मिडलैंड्स, NHDC जुब्रॉय के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 8 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। Albion, Fort Albion, Poultry, Sairali, Gamma, Workshop, Morcellement, Belle Vue, que l'innovation go sujit kiya jata hai ki aaj shanivar 8 august ko subah ke 8:30 baje se sham ke 3 baje ke beech bijli ke supply mein kadoti lai jayegi. Bobassin, Dr. Reid, Avenue Mahadeo Biltu, Avenue Jupiter, maaf kijiye ga, fir se suniye abhivyakti. Bobassin, Dr. Reid, Avenue Mahadeo Biltu, Avenue Dupéré, Avenue Châteauneuf, और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 9 अगस्त को सुबह के 4:15 से शाम के 3:00 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।

कभी भी बदल सकती है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और न किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हैं, आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। सोचने वाली बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, देवी और सज्जनों, आप सभी को अपने होस्ट और दोस्त अजय प्रताप सिंह का सप्रेम नमस्कार स्वीकार हो। शुभ प्रभात। भोर की इस बेला में हम आपका सभी का स्वागत करते हैं और बेशक हम हैं यहाँ पर आपका साथ देने के लिए न्यू मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना। आज है शनिवार 8 अगस्त साल 2026, सुबह के 7:25। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉरिशस। आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, थैंक यू जी, हमारा साथ दे रहे, शुक्रिया, साथ देते रहिए। मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक 2 घंटे का फुल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। हम जानते हैं कि शनिवार का दिन आप थोड़ा लेजी लेजी फील कर रहे हैं, ठंड का मौसम है, सर्द हवाएं बह रही है और ऐसे में नींद से जागने का मन तो नहीं कर रहा है। पर नींद से तो जागना है, सक्रियतापूर्वक कार्यों में भी लगना, घर में कितना काम पड़ा है कि नहीं। ओके, जिसके पास नौकर चाकर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिसके पास नौकर चाकर नहीं है, सुबह उठकर सारा काम हमें खुद करना पड़ता है ना, और आजकल तो पति पत्नी दोनों काम करते हैं, सो यू हैव टू शेयर द हाउस होल्ड गोल्स। ऑलराइट, अब केवल पत्नी ही बाहर का काम करेगी, घर का काम करेगी, बेचारी कितना काम करेगी। जो हमारे जो पुरुष वर्ग है, थोड़ा थोड़ी सी सहायता कीजिए, है कि नहीं। सो मौसम तो बड़ा ही प्यारा है, सुहाना मौसम, पर बहुत ठंड है यहाँ पर मौका में। और मौसम ऐसा ही सुहाना हो पर दिन के दौरान गर्मी होती है। कल मैंने नोटिस किया कि सुबह के वक्त जब बहुत ठंड होती है तो दिन के दौरान धूप निकलती है और काफ़ी गर्मी होती है, फिर दोपहर बाद फिर से ठंड होने लगती है। सर्दी का मौसम ऐसा ही होता है मॉरिशस में। और आजकल हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स अध्यापक है, स्कूल की छुट्टियों पर हैं, घर पर है, सो इन छुट्टियों का भरपूर मज़ा लीजिए। 17 अगस्त से रिजम्पशन ऑफ स्टडीज, आज फ्रॉम 17 अगस्त थर्ड टर्म पर की पढ़ाई शुरू, अभी और एक सप्ताह बाकी है, खूब मजे कीजिए। और हमें यहाँ पर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना प्रोग्राम में, और बेशक मन में तो बहुत सारी बातें हैं कि ये करना है वो करना है, पर एक दिन में हमारे पास केवल 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे में जितना हम कर पाते हैं, जितनी हमारी क्षमता है, हम उतना ही कर पाते, उससे न कम उससे न ज़्यादा। चलिए इन विचारों के साथ बढ़ते हैं आज के चिंतन की ओर। और आज का चिंतन आप सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की जुबानी।

0: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: निःस्वार्थ हृदय, विनम्र वचन और सेवा का भाव, ये तीन गुण जीवन की सच्ची सुंदरता हैं। जब ये तीनों साथ चलते हैं, तब मानवता अपने श्रेष्ठ रूप में दिखाई देती है।
2: अभी अभी तुम गाना गा रहे थे।
3: जी,
2: गाना गा रहे थे।
3: जी जी, मगर ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
2: ऐसी गलती रोज होगी।
3: जी
2: जी, ऐसी गलती रोज होगी। आज से तुम क्लाउन, एक जोकर, जो गाएगा और हंसाएगा।
3: मैं जोकर?
2: हाँ।
3: आपके यहाँ? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
2: देखो, मेरा नाम साहब नहीं, मेरा नाम महेंद्र है।
3: जी महेंद्र साहब।
2: फिर साहब?
3: नहीं साहब,
2: महेंद्र।
3: महेंद्र साहब।
2: यू आर ए क्लाउन, ही इज अ सिंगिंग क्लाउन।
3: बहुत बहुत शुक्रिया।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

किस्मत है। तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शोध।

जी हाँ, आपने सही सुना है भाई। जरा देख के चलो, आगे भी नहीं, पीछे भी, ऊपर भी नहीं, नीचे भी, दाएं भी नहीं, बाएं भी, और खासकर रास्ता पार करते समय दोनों तरफ अच्छी तरह से देखनी चाहिए, हाँ कि नहीं। सुबह के 7:40 दोस्तों, आजकल हम श्रावण मास में हैं, श्रावण का महीना चल रहा है, और हमारे नौजवान दोस्त अक्सर हमसे पूछते हैं कि प्रताप जी, ये श्रावण मास क्या है। सो श्रावण मास, जिसे हम सावन का महीना कहते हैं, हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए प्रसिद्ध है, पर शिव जी की उपासना के साथ साथ वेद का पठन पाठन भी होता है और घर में यज्ञ हवन भी होता है। भक्त इस दौरान पूजा पाठ करते हैं, व्रत धारण करते हैं, वेद मंत्र जाप होता है, दान और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में समय बिताते हैं। और हिंदू परंपरा में भगवान शिव के श्रावण मास का विशेष प्रिय माना जाता है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करते हैं और शिव जी का महामंत्र का गुणगान करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और श्रावण का संबंध वर्षा ऋतु से भी है। प्रकृति में हरियाली आती है और वातावरण में नई जीवंतता दिखाई देती है, इसलिए यह महीना आध्यात्मिक साधना के साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का समय भी है। और बेशक शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, शिव जी की पूजा होती है और शिव जी की पूजा के साथ साथ चारों वेदों का गुणगान भी होता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, जितने मंत्र हैं उनका जो है उच्चारण करते हैं, और बेशक इन मंत्रों के उच्चारण करने से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि होती है और जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। सो आजकल बहुत से हमारे लोग, हमारे श्रोता जो है व्रत धारण किए हुए हैं और शाकाहारी भोजन कर रहे हैं और पूजा पाठ ये सब हो रहा है, घर में यज्ञ हवन का भी आयोजन किया गया है। सो बच्चे लोग जो घर पे है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, आप लोग इन यज्ञ हवन में भाग लीजिएगा, इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और मन शुद्ध होगा। शरीर, जब मन और शरीर शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो मन में अच्छे विचार आते हैं। सो श्रावण मास का यह महीना सभी को बहुत बहुत अभिनंदन हो, और प्रभु का नाम लेते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, इससे सभी का कल्याण होता है।

श्रोताओं, कंचन कुमार के स्वर में इसी भजन के साथ ही यह सुबह का नजाना का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। ठीक 7:45 आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम। उसके बाद सुबह के 8:00 भोजपुर में समाचार और शोक समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर। सुनते रहिए प्यार से, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, MBC रेडियो मॉरिशस।

0: हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान सरोवर में आप सभी श्रोताओं का मेरा पैतो विक्रम का सादर अभिवादन, सादर नमन। इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, हर सप्ताह की तरह आज भी हम सुचारू रूप से एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का विषय जितना रोचक व शिक्षाप्रद है, उतना ही विशेष और प्रभावशाली हमारे सामने बैठे आज के हमारे अतिथि हैं। प्रिय श्रोताओं, यह एक सिद्ध तथ्य है कि अध्यापन हम मनुष्यों के जीवन का सबसे नेक काम है। आज के हमारे अतिथि अध्यापन क्षेत्र के वह चमकते सितारे हैं जिनमें हिंदी भाषा के पठन पाठन की अभिरुचि बचपन से ही स्थापित है। बैठकाओं की कुर्सियों से आरंभ हिंदी भाषा के प्रति इनका प्रेम आज महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के शाखा रविंद्रनाथ टैगोर सेकेंडरी स्कूल में पाठ्य पुस्तकों के रूप में उभर रहा है। श्रोताओं, चलिए हम सभी OTSS के इस कर्मठ योद्धा श्रीमान सलिक विजय सिंह जी का स्वागत करते हैं। श्रीमान सलिक जी, ज्ञान सरोवर के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हिंदी साहित्याकाश के काव्य क्षेत्र के एक सशक्त स्तंभ है। इसी संदर्भ में सलिक जी, आप प्रमुख कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन अनुभव पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें।
1: जी, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी थी। वे मुख्य रूप से वीर रस और देशभक्ति की कवयित्री के रूप में जानी जाती है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, साहस, त्याग, मातृभूमि के प्रति प्रेम तथा सामाजिक जागरूकता की भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो तत्कालीन इलाहाबाद है, जिले में निलहालपुर गांव में हुआ था। वे अपनी ओजपूर्ण और देशभक्ति के परिपूर्ण कविताओं के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना,

0: वीरता तथा सामाजिक संवेदनशीलता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सुरिक जी, कवयित्री की विश्व प्रसिद्ध कविता का नाम क्या है और कविता का मुख्य विषय क्या रहा है?
0: वैसे तो उनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, जलियांवाला बाग में वसंत, राखी की चुनौती तथा विदा जैसी कविताएं विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। परंतु झांसी की रानी बहुत प्रभावपूर्ण और ओजस्वी कविता है। इन सभी रचनाओं में झांसी की रानी उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, वीरता, आत्मसम्मान और देशभक्ति का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया गया है। कवयित्री ने सरल, ओजपूर्ण और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग करके रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष और बलिदान को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस कविता में केवल साहित्यिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों की राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना जागृत करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कविता की पंक्तियां सुने। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों की ने ब्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसतावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
1: वाह वाह, आपकी बातें सुनकर मेरी अभिरुचि और भी बढ़ रही है। तो सुरिक जी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया?
0: सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपनी कविताओं और सार्वजनिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति, साहस और राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत की है। उनकी रचनाओं ने अनेक लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। एक कवयित्री के रूप में उनका सबसे बड़ा योगदान उनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी मानी जाती है। कवयित्री होने के साथ साथ सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित थी। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी और असहयोग आंदोलन में शामिल हुई थी। उन्होंने अनेक सभाओं और आंदोलनों में भाग लिया था तथा देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। इस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इस प्रकार उन्होंने केवल अपनी लेखनी के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी और संघर्षों से भी द्वारा राष्ट्र से की सेवा की है।
1: मुझे तो लगता है ये लक्ष्मीबाई की कहानी वास्तविकता में सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। तो सुरिक जी, आपकी बातों और तथ्यों से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं के प्रति मेरी रुचि और ज़्यादा बढ़ रही है। मेरा अगला प्रश्न यह होगा सुरिक जी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में देशभक्ति के अलावा और कौन सी कविताएँ परिलक्षित होती हैं?
0: वैसे तो सुभद्रा कुमारी चौहान को मुख्य रूप से देशभक्ति और वीर रस की कवयित्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके रचनाओं का क्षेत्र केवल राष्ट्र प्रेम तक सीमित नहीं था। उन्होंने मानवीय संवेदनाओं, बाल मन, पारिवारिक संबंधों, नारी जीवन और सामाजिक भावनाओं को भी अपनी कविताओं का विषय बनाया।
1: बहुत खूब।
0: उनकी कविताओं में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सरलता और भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कविता मेरा नया बचपन एक सुंदर उदाहरण है। इस कविता में कवित्री ने बचपन की सरलता, निश्चलता और मधुर स्मृतियों की भावनाओं का किया है। जैसे, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसा भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोंपड़ी और चित्रों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किलकोर मचाकर

0: सुना घर आबाद किया।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो श्रीमान सुरिक जी, इस सत्र का मेरा अंतिम प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
0: सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना को सशक्त बनाया। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और स्वतंत्रता आंदोलन अपनी उत्कर्ष पर था। ऐसा ही समय में उनकी कविताओं ने लोगों के मन में आत्मविश्वास, साहस, देश प्रेम की भावना जागृत करने का कार्य किया। उनकी रचनाएं केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम भी बनी। दूसरे, उन्होंने वीर रस को नई ऊंचाई प्रदान की। उनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में गिनी जाती है। तीसरे, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण किया है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति, सामाजिक विषमता, गरीबी, रूढ़िवादिता और अन्य सामाजिक समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। चौथे, उन्होंने साहित्यिक भाषा को अधिक सरल, सहज और प्रभावशाली बनाया। उनकी भाषा में कृत्रिमता और जटिलता का अभाव था। यही कारण है कि उनकी रचनाएं शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों के समान रूप में लोकप्रिय हुई। पांचवें, उन्होंने हिंदी साहित्य में नारी शक्ति और महिला चेतना को एक नई पहचान दी। उनकी रचनाओं में महिलाओं को साहसी, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र का चित्रण इसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रसिद्ध रचनाओं जैसे वीरों का कैसा हो वसन, राखी की चुनौती और विदा ने भी हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरूकता और मानवीय मूल्यों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है।
1: प्रिय श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। मैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से श्रीमान सुरिक विजय सिंह जी को उनके अमूल्य समय तथा उनके विचारपरक बातों व शिक्षाप्रद तथ्यों के लिए उनको कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ MBC के टीम को और श्रोताओं को भी साधुवाद। अगले सप्ताह के नए विषय सुनने के लिए ज्ञान सरोवर से जुड़े रहें। एक बार फिर सुरिक जी, आपके समय के लिए साभार। सभी को धन्यवाद और सादर सप्रेम नमस्ते।
0: धन्यवाद जी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिलाल जा फजीर के 8 बजे तक। आठ बजे के भुजबी समाचार में सब लोग के स्वागत करल जाता, सब लोग के नमस्ते आप प्रणाम। सबसे आगे हमनी देश के समाचार संगे ई बुलेटिन के शुरुआत करब, जहाँ विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्ति के दूसर दिन ही

0: चेतन बाबूलाल। बुल्ले हवन की उनकर पहला प्राथमिकता राष्ट्रीय सभा में जनता के आवाज के प्रभावी ढंग से उठाई के रही। संसदीय अवकाश के बावजूद भी उ कई गो महत्वपूर्ण मुद्दा की अपन प्राथमिकता बतैलन जोन जनता के हित में रही आर जेकर पर उ बहुत हाली काम शुरू करियन। कॉमनवेल्थ खेल 2026 में मॉरिशस ऐतिहासिक प्रदर्शन करत एगो स्वर्ण एगो रजत और एगो ब्रोंज सहित कुल मिला के 4 पदक जीत के 74 देश में 15वां स्थान पर आल बाटे। आर काल मंत्रिमंडल पदक विजेता खिलाड़ी आर उलो के ट्रेनर के बधाई देलक जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लेकोपियनो के टूर दे फ्रांस महिला श्रेणी में शानदार जीत खातिर ओकर सराहना करलन। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज करल जाता। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हाल के पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार बरिस 2025 में उत्सर्जन 3.4% बढ़ल बाटे जबकि मॉशिकोज में दफनावल गल कचरा के मात्रा 17% ले बढ़ल बाटे। मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय आज चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग के मजबूत करे खातिर एगो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करल गल। इस साझेदारी के चलत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस में उन्नत चिकित्सा सेवा ट्रेनिंग विशेष उपकरण और आधुनिक उपचार सुविधा के विकास में सहयोग दीहन जा। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी लोग खातिर EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म भरे की प्रक्रिया शुरू हो गल बाटे। ई डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से कम करवा लोग टैक्स लाभ यानी कि जो टैक्स बेनिफिट बा ओकर दावा कर सकें जा जेकर में जे तोहर एक कोनो डिपेंडेंट हो या फिर शुरू के 5 लाख रुपया लेके थ्रेशोल्ड पर तोहरा टैक्स एग्जाम्पशन यानी कि छूट की सुविधा भी मिले सकी। और बात कर लिया जा हमनी एमतेल के मुनाफा के बारे में। एमतेल जोन बाटे ई बरिस के पहला 6 महीना में 320 मिलियन रुपया के मुनाफा कमैली बाटे। निमन और बेहतर वित्तीय स्थिति कमती कर्जा और मजबूत लाभ मार्जिन के संगे कंपनी शेयर होल्डर खातिर डिविडेंट पेमेंट के एगो नवा व्यवस्था के घोषणा भी कर ली बाटे। और मेबर्ग के राष्ट्रीय इतिहास म्यूजियम के रेनोवेशन के दिशा में कदम तेज हो गल बाटे। फ्रांस के लूव्र संग्रहालय के विशेषज्ञ डोमिनिक दुफ्रॉ एक सप्ताह ले संग्रहालय आर ओकर संग्रह के मूल्यांकन करियन जकर से 100 मिलियन रुपया के पुनर्निर्माण योजना खातिर भविष्य के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूपरेखा तैयार कर जा सकी। आज दूसरा देश के समाचार में सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान मिल के सामूहिक सुरक्षा सहयोग के मजबूत करे के उद्देश्य से मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर कर ले हवन जा। इस समझौता के चलत तीनों देश में से कोनो एक पर जे सशस्त्र हमला हो त सब सदस्य देश यही सोचन जा कि उलोक पर हमला होल बाटे यानी कि जवाबी हमला खातिर तैयार हो के चाहिए। आर एक संगे ई भोजपुरी के समाचार समाप्त भेल। अभी 8:04 होवता।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: बढ़िला जा अब हमनी मरनी के समाचार देने। विक्टोरिया रोड मोतायलोंग में 65 बरिस के, तिनकुरी 5 बरिस के, श्री भरद्वाज चमन जिनका मिनिस के नाम से लोग जाना थलन जा इनकर अर्थी आज फजिल के 11:00 इनकर बेटा महेश्वर सिंह नीरज चमन के घर मोतायलोंग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन टूडे 11:30 AM तेबे एसलिन थ्रियोली में 77 बरिस के, तिनकुरी 17 बरिस के, श्री 77 बरिस के जनाब महबूब रोमजोन जिनकरा मिस्यू महबूब के नाम से भी आदमी जैसे जानथन जा जोन आगे ISP रलन इंतकाल कर गलवन। इनका जनाजा आज फजिल के 10:00 इनका घरे त्रियोली से उठा के दफनाए खातिर प्रेंदी पपाई के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे 10:30 AM रॉय रोड फ्लोरियाल में 4 कोरी 6 बरिस के, 86 बरिस के, श्रीमती देवंती रामस्वामी पैदाश्रम पियती है जिनकरा साबित के नाम से बेदमी जैसे जहाँ जाके मृत्यु हो बाटी। इनकर अर्थी आज दिन के 1:00 इनका घर फ्लोरियाल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तो मामेल

शमशान भूमि ले जावल जाकर मिशन टूरियर हाफ पॉस्ट 1 PM कौसन विल में कौचिमृतिया में कौसन विल में कौचिमृतिया में 3 कोड़ी 3 बरिस के 63 बरिस के श्री गोपी सिंह छोटे जिनका आरोही छोटे के नाम से बैद में जैसे जहाँ था जाके मृत्यु हो गल बाटे इनकर अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर बेटा आतिश छोटे के घरे विल में कौचिमृतिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौदिमास के शमशान भूमि ले जावल जाए मिशन टूरी एट नून क्लेफो नंबर 2 वाकुआ में क्लेफो नंबर 2 वाकुआ में 3 कोड़ी 19 बरिस के 89 बरिस के श्री राम जंगली जिनका इंदर के नाम से बेदमी जिसे जहाँ तक जाके मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज 12 बज के आधा इनकर घर ए वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आलिब्रियों की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू दी आर हॉफ बॉस नून एवेन्यू रोवर सैकुंसा सैपिया में 95 बरिस के 4 कोड़ी 15 बरिस के श्री मोवैन मुनसामी जिनका दासन के नाम से बेदमी जिससे जहाँ था जाके मृत्यु होकर बाटिन कर अर्थी आज दिन के 1 बज के आधा इनकर घर ही सैकुंसा सैपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैकुंसा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डी एट हॉफ पॉस्ट 1 PM गांधी रोड एन एस फ्लोरों में 56 बरिस के 2 कोड़ी 16 बरिस के श्री सतीश उदित जिनका सतीश के नाम से बेदमी जिससे जहाँ था जाके मृत्यु होकर बाटे इनकर अर्थी आज फजिर के 10 बजे इनकर बेटा अक्षय उदित के घर ही एनएस फ्लोरों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूरी एट 10 AM कोलंबो रोड मोतालोंग में 3 कोड़ी 10 बरिस के 70 बरिस के श्रीमती दमयंती मोवन पैदाशाम पुलिगादो जिनकरा कमला के नाम से बेदमी जिस जहाँ तक जाकर मृत्यु होगल बाटी इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर बेटा कृष्णा मोवन के घरे मोतालोंग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थ्रियोली के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूरी एट 2 PM एपास प्रेम सिंह बाबूलाल स्ट्रीट बोबासे में 61 बरिस के 3 कोड़ी 1 बरिस के श्री शिवराज गेनू जिनकरा बाबू के नाम में जैसे जानते जाके मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर घरे प्रेम सिंह बाबूलाल स्ट्रीट बोबा सिंह से उठा के अंतिम संस्कार खाती सहमौत के शमशान भूमि ले जावल जाए मिशन टूरी एट 2 PM हरे कृष्णा लेन फोंटेन लेओशे में 74 बरिस के 3 कोड़ी 14 बरिस के श्री नारायण दत्त नोबिन जिनका प्रकाश के नाम से बेद में जैसे जहाँ तक जाकर मृत्यु होगल बाटी इनकर अर्थी आज 12 बजे इनकर घरे लेओशे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बामोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डे एट नून बाबूलाल लेन मोदालबिया में 94 बरिस के 4 कोड़ी 14 बरिस के श्री धनवंती खुबलाल पैदाशम रघुआ जिनकरा शांति के नाम से बेद में जिस जहाँ तक जाकर मृत्यु होगल बाटी इनकर अर्थी आज 1 बज के आधा दिन के इनकर बेटा अर्जु खुबलाल के घरे मौदालबिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डी एट हॉफ पॉस 1 PM एवेन्यू एडवर्ड हॉट रेजिडेंस बोसेजू कैट्रोबोन में 53 बरिस के 2 कोड़ी 13 बरिस के श्री सूर्यदेव लकू जिनकरा मनोज के नाम से बेन में जिस जहाँ जा कि मृत्यु होगल बाटी इनकर अर्थी इनकर भाई नाराज मोहन लखू के घरे 11 बजे फजीर के रेजिडेंस बोसेजू कैट्रोबोन से उठा के सबसे आगे लेग्लिज नोत्रदाम जो रोजे ले जावा जाए फिर दफनाए खातिर कैट्रोबोन सैजों के कब्रस्तान फ्यूनरल टूडे एट 11 AM रेलवे रोड सैमिशेल बेली रिव्यू सेश में 77 बरिस के 3 कोड़ी 17 बरिस के श्रीमती इंदुमती भुवन पैदाशनाम विदेशी के मृत्यु होगल बाटिन कर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर बेटा धर्मदेव भुवन के घरे सैमिशेल बेली रिव्यू सेश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे एट 1 PM नंबर 17 अवेन्यू डेजी बीस सदना कैट्रोबोन में 86 बरिस के 4 कोड़ी 6 बरिस के श्री पुबाला सुंदरन ओनासाला पाते जिनकरा बाला बिल पातेया के नाम से बेदमी जैसे जहाँ था जाकर मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज फजिर के 11 बजे इनका घर ही सदना कैट्रोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमशन टूडे एट 11 AM रॉयल रोड ऑसिनाल में 3 कोड़ी 20 बरिस के 60 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती उषा जोगिया पैदाश नाम इसेरिया आज इनकरा नानी गातो के नाम से भी अनमी जैसे जहाँ तक जाकर मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज फजिर के 10 बजे इनकर बेटा वीरू जोगिया के घरे औसेनाल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर
मौसम के शमशान भूमि ले जाव जाए क्रिमिशन टूडे एट 10 AM SSR रोड मौसल मौसम तौंद्री में 3 कोरी 6 बरिस के

0: सट बरिस के श्री सुरेश ननलाल चुनी, श्री सुरेश ननलाल चुनी जिनकर कोंथोलिया तिबेस के नाम से बेदमी जैसे जाते जाके मृत्यु हो बाटे। इनकर अर्थी आज फजीर के 11 बजे इनका घर है मौसल मौसा तंत्र से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुई के शमशान भूमि ले जाओ जाए। क्रीमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबल इस सब परिवार के संगे हमने की दिली हमदर्दी बाटे।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुबह के 8:18 मिनट हुए हैं और अभी आप जुड़े हुए हैं एमबीसी रेडियो मॉरिशस के साथ. प्रस्तुत है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति. अल्बियन फॉर अल्बियन पोल्ट्री सेराली गामा वर्कशॉप और मोसेलमों बेलव्यू के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 8 अगस्त को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिजली की सप्लाई को चालू कर दी जाएगी. इसी बीच असुविधा के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है. तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी अभिव्यक्ति.
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस.

अगर आपने अपना मूल्य तय नहीं किया है तो दुनिया आपको निशुल्क सेवा मान लेगी। दुनिया आपके समय, पीड़ा, प्रयास किसी की भी कदर नहीं करेगी। सो आपका अपना मूल्य, आपको अपना मूल्य खुद जानना चाहिए। सुबह के 8:20, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, हम प्यार भरे नमन करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम रेडियो मॉरिशस के रेनो पे, एमबीसी रेडियो मॉरिशस ऑन 819 किलोहर्ट्ज़। ऑनलाइन सुनना चाहते हैं हमें, सो क्लिक कीजिए डब्ल्यू

www.mbcradio.tv और क्लिक करें लिसन रेडियो मॉरिशस. सो टुडेज देयर इज नो टिकटॉक, कोई बात नहीं. हम रेडियो पर है, ऑनलाइन भी आप हमें सुन सकते हैं. सुबह का नजराना योर मस्त मॉर्निंग शो पार्ट टू. अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक बहुत सारी फिल्मों के गीत हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जैसे जिस देश में गंगा बहती है, खून भरी मांग, संगम मिलन, डुएट लता एंड मुकेश एंड रमैया वस्तावैया, आईना फिल्म नोरी के गाने. ऑलराइट, सो अगर आप इन गीतों को अपनों के नाम करना चाहते हैं सो नाम जोड़ सकते हैं. नो रिक्वेस्ट फॉर सॉन्ग, यू कैन ओनली ऐड डेडिकेशन, यानी कि अगर किसी का जन्मदिन है, शादी है, शादी की सालगिरह है, सो इन गीतों पर आप उनके नाम जोड़ सकते हैं. फ़ोन करने का नंबर यू नो बाय हार्ट, यस 4028085 का सैंक पर फ़ोन कर सकते हैं. लाइन खुली हुई है. सो आई एम टेलिंग यू देयर इज नो टिकटॉक टुडे, इट्स ऑनली ऑन 4028085 पर आप अपने नाम जोड़ सकते हैं. द नेक्स्ट गाना बहुत ही प्यारा सा गीत, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझक दिया, मैंने दिल तुझक दिया हे. और ये प्यारा सा गाना हम चलाएंगे अनुष्का सैतालू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर. यस, टुमारो 9th of August विल बी द बर्थडे ऑफ द बर्थडे गर्ल अनुष्का सैतालू. जन्मदिन की बधाइयाँ उनकी मामा हैं स्वस्ती, पापा शैलेश, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचू चाची, दादी रीता और चाचा साइलेंट की ओर से अनुष्का को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है. ये गाना जाएगा प्रताप की ओर से उनके बेस्ट फ्रेंड हिरोइश के नाम. हिरोइश नारायण रहते हैं मिडलैंड्स, उनकी माताजी और उनके पापा के नाम भी. नेक्स्ट गाना फॉर संजय बिहारी और सब बिहारी परिवार के नाम. और भाई आबू है बाकवा से, उनकी बेगम, बच्चे और सभी दोस्त और सब आबू परिवार के नाम. कमला दिनू मौताबाद से, उनकी छोटी सी बेटी आरोही के नाम. ज्ञान और चित्रा विश्राम मौदाल भी ऐसे है, सब विश्राम परिवार के नाम दिस गाना. रेहाना हसनानी फिनिक्स से, हाय रेहाना जी, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप. अगला गीत जलीला जियाद बैन साइदा कोहैसा और आपके पूरे हसनानी परिवार के नाम. एंड बेहद और रेहाना जी फिनिक्स से बहुत प्यार से हमें सुन रही है, गीतों को एंजॉय कर रही है. सो चलिए हम आपके नाम करते हैं ये प्यारा सा गाना, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया. ये गाना जाएगा रेडियो मॉरिशस के सभी सुनने वाले दोस्तों के नाम.

और अब लीजिए सुनिए ये सूचना। जी हाँ, श्रीमद् भगवत कथा सत्संग लग रहा है बुधवार 5 अगस्त से रविवार 9 अगस्त तक, 5 अगस्त से 9 अगस्त तक। और ये लग रहा है श्री जागृति काली माई मंदिर मोहताबाद एसोसिएशन द्वारा, जनता आमंत्रित इसमें भाग लेने के लिए। और दैनिक कार्यक्रम इस तरह से है, शाम के 6 बजे से 6:30 बजे तक कीर्तन, 6:30 से 7 बजे पूजा, रात के 7 बजे से रात के 8:30 बजे तक कथा, आरती और महाप्रसाद। और रविवार यानी कि कल रविवार 9 अगस्त को पूर्ण होती होगी, 9 दिन के 9 बजे 9:30 बजे कीर्तन, 9:30 से 12 बजे महापूजा, कथा, महायज्ञ, पूर्ण होती महा आरती, पंचामृत और महाप्रसाद दिया जाएगा। और इस पूजा के व्यास वाचक होंगे आचार्य शास्त्री महेश जोशी जी। सो जनता, मॉरिशस की पूरी जनता आमंत्रित है इस पूजा में भाग लेने के लिए। याद रहे कि यह पूजा इसकी समाप्ति होगी कल रविवार 9 अगस्त को, और दिन के 9 बजे से 12 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा सत्संग की पूर्ण होती होगी श्री जागृति काली माई मंदिर मोहताबा में। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस से आपका पसंदीदा प्रोग्राम

मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना। कहते हैं दोस्तों कि इंसान बड़ा बन जाए लेकिन अपने माँ बाप के सामने हमेशा छोटा ही रहता है, उनकी दुआ से ही हर मंजिल आसान हो जाती है। अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता ने आपका साथ दिया और आप अब जब वो वृद्ध हो गए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनकी देखभाल करें, है कि नहीं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अगला गाना, मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान हमारे लीजिए पर दिल हमी को दीजिए, क्या बात है। एंड यह प्यारा सा गाना हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉर्चस की लहरों पे। आप है रिहाना ऑफ नोटरडम, साइलेंट की ओर से उनकी नेफ्यू माधव भैरव के नाम, और माधव अपने चाचा जान से बहुत प्यार करते और चाचू से कहते चाचा जी कब आओगे मेरे यहाँ खेलने के लिए, क्या बात है। चाचा भतीजा का ही प्यार कायम रहे, यही गाना हम चलाएंगे। कवि की ओर से उनकी पत्नी टीना, मामा माला, बहन रीना के नाम, अनीता है फ्रीकॉन फ्लाग से, अनीता लाल जी मौदालवी से, सब ईटू परिवार के नाम भी। अंजिया लौटन, यह गाना आपके नाम और आपके पूरे परिवार के लिए। सत्यम सोनू, आपका बर्थडे था पिछले हफ्ते आपका जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे टू यू, बेडीजर हैप्पी बर्थडे सत्यम सोनू, ढेर सारा प्यार आपको। मुकेश गंगा जी हमारा साथ दे रहे हैं। फिर सुनीता रेजवी से है, रेजवी में काम करती है और उनके पति की याद में हम ये गीत चला रहे हैं। अपने पति को बेहद मिस करती है सुनीता, उनके पति संसार में नहीं फिर भी उनका जो आशीर्वाद है आपके साथ है। प्रेमिला ऑफ कैट्रबोन, प्रभावती नोवेल फॉन्स से है, आशा जानू कॉटेज से, मामा कुमारी, नेफ्यू शुभम, दीदी आरती, जीजाजी और उनके पूरे परिवार के लिए। तो चलिए एक साथ सुनते हैं यह प्यारा सा गाना, फिल्म का नाम है छलिया और ये गीत हम चला रहे हैं उन सब दोस्तों के नाम जो इस समय मीठी मीठी नींद से जागे और पूछ रहे भाई आज कौन सा दिन है। तो हम बता दें आपको, आज है शनिवार, टुडे सैटरडे 8th of August 2026। अगर आज आपका जन्मदिन है सो हैप्पी बर्थडे, और ये प्यारा सा गीत आपके नाम। और मोन एक वायर से आपने फोन किया, सभी फोकेचन परिवार के नाम मोन, ये गाना खासम खास आपके नाम भी।

कहते हैं कि दिलों में वही बसते हैं, दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश करता है, सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें कोई गांठ ना हो। सोचने वाली बात है। सुबह के 8:35, वेलकम सुस्वागतम रेडियो मोशन की लहरों पे दुनिया भर में बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए, कनाडा, इटली, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, सो जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, ये है मॉरिशस का, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का म्यूजिकल एंटरटेनिंग चैनल AM2 रेडियो मॉरिशस, जो कि हमारा लाइव प्रसारण चल रहा है MBC मौका से 819 किलोहर्ट्ज पर। एक ही नाम, एक ही फ्रिक्वेंसी पर चलता है यह कार्यक्रम AM मोड पर, और आप इसे डिजिटल साउंड पर सुन सकते हैं ऑन लॉगिंग ऑन द वेबसाइट www.mbcradio.tv। नेक्स्ट गाना बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहाँ जा रहे हैं। एक साथ सुनते हैं ये गीत, उदय दानी राम के नाम रवि अजपस से है, प्रीतम राज जी मिला यह गीत आपके नाम भी, देविका रामगतिया उनके पूरे परिवार, राधा शिवालक, बेटा प्रशांत, बहू बेटी शिल्पा, दामाद और सब शिवालक परिवार के नाम यह गीत। दीना दीना तीना दीना इस समय फ्रांस में है अपने पति और बेटी के साथ, एन्जॉय योर हॉलीडेज इन फ्रांस। रवि दिनू ये गीत आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता और सब दिनू परिवार के नाम। सुदेश जसवा उनकी माँ राजकुमारी, बेटी सब जसवा परिवार के नाम। लोंग चिबुग राजा, प्रवीण भैरव, नानो संजीव और श्याम मंगल ये गीत आपके नाम भी जाता है। रेणुका है मोहताबाद से, हाय रेणुका, ये गीत आपके नाम। संजय की ओर से गीत जाएगा पबुदिया लेन मोहताबाद के जागृति काली माता मंदिर के सभी सदस्यों के नाम। तो चलिए एक साथ सुनते हैं यह प्यारा सा गाना, जिस देश में गंगा बहती है।

0: साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। और अगला गाना जो है बहुत ही प्यारा सा गाना है, हम तुम, पुरानी फिल्म मिलन का गाना, लता और मुकेश जी की आवाज़ों में। और ये गीत हम चलाएंगे खुशी वाइती जी के नाम। आप एक मोहतर शेफ है क्विजिन में, और बहुत अच्छा बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करती है, क्या बात है। और खुशी वाइती आप रहती है पेचित रिव्ये, ये गीत आपके नाम, आपकी माता जी, आपके भाई और पूरे वाइती परिवार के नाम। और इस समय बहुत से हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मिलते हैं। कृष्णावती जी है, हेलो कृष्णावती जी, शुभ नमस्कार आपको, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
1: प्रणाम जी,
0: कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, प्रताप सिंह जी, प्रताप मोहन, मौसम सुहाना जी, आज मौसम बहुत ही सुहाना है
0: और बहुत ठंड भी है इधर।
1: ठंड भी है, मैंने जेठी को डाला है, जेठी को बोलो, हमने कहा मौसम से वैसे अभी नहीं मोबा पे आता नहीं, कुछ ना प्रिफो मामेटा
0: हाँ, मौसम तो ऐसा ही है, ठंडा कभी गर्म। और अगला गीत है हम तुम, मिलन का गाना है।
1: मेरे से आपको सुन रहे हैं, इतनी अच्छे अच्छे भाव चली है,
0: श्रावण मास अभी तो पूजा पाठ है ना,
1: इतनी अच्छी अच्छी भाव गीत चली है। मैं सोच रही थी अगर रोज की श्रावण मास चलती, रोज की ऐसे,
0: हाँ रोज ऐसा प्रोग्राम चलता, क्या था रोज ऐसा ही प्रोग्राम चलता है ना, सुबह का जाना चलता है मंडे से संडे तक। और इस समय
1: आपको प्रणाम कहेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी गाने,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद जब तक हम पर है तो हम ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते रहेंगे आपके।
1: ओके जी, शुक्रिया जी, आपको बहुत,
0: थैंक यू जी। सो अगला गाना आपके नाम, और नाना जी कहाँ पर है? नाना जी हमसे बात नहीं करेंगे, सुन रहे हैं प्यार से, क्या बात है,
1: सुनते हैं आपको, हम एम्बेसी पर बात करेंगे।
0: हाँ
1: नाना, एम्बेसी को अभी नमस्ते।
0: हेलो नाना जी, कैसे हैं? नमस्कार,
2: नमस्कार,
0: कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सब ठीक ठाक है? आपने चाय पी ली, नाश्ता सब हो गया?
2: हाँ सब हो गया।
0: और कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम सुबह का नजराना? एकदम मस्त है कि नहीं? और आज क्या करेंगे, घर पर रहेंगे या घूमने जाएंगे?
2: अभी बैठे चाय पी रहे हैं, रोटी खा लिया।
0: ओके, सो हम एक दिन, अभी हम स्कूल की छुट्टी में हम आएंगे आपके यहाँ लेतू, हम आपके यहाँ आएंगे लेतू करने के लिए। ओके नाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया, और एक दो से लाइन से मिलेंगे। हेलो,
3: हेलो,
0: हेलो जी,
3: नमस्कार प्रताप जी,
0: श्रीमती जी,
3: सुयाग से
0: क्या बात है,
3: आपको भी
0: श्रावण मास अभिनंदन, श्रावण मास की हार्दिक
3: शुभकामनाएं चलाते हैं आज।
0: हाँ जी, हाँ जी, आप ही लोगों के लिए।
3: एगो मांग कर रहा था भाई, आल भाई ताली से,
0: हाँ
3: भाई के नाम है राधेश्याम,
0: हाँ,
3: और भौजी के जन्मदिन बा,
0: क्या नाम है
3: भौजी के? स्वस्ति,
0: स्वस्ति जी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद है।
3: बेटा है सनी, बेटी शिवानी, और सब चंद्रमुनी परिवार के तरफ से, और सब महेश परिवार के तरफ से।
0: मेरा दोस्त महेश कैसा है? ठीक है,
3: महेश परिवार, सब महेश परिवार की तरफ से।
0: और आजकल वो क्या कर रहे हैं? घर पर है, कहीं घूमने जाते
3: हैं? घर पर है, कार्य में है अभी।
0: और अभी वो गीत गाते हैं, मुकेश के सभी गीत गाते हैं।
3: वो भाई है।

0: हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है।
1: सब कहती है एगो
0: प्यारा
1: सा अच्छा गाना चला दिया भौजी पास, भाई आल बा दुलार के, भाई आल बा
0: भाई दुलार के, भाई आल बा लड्डू सुड्डू सब बन लग बा, लड्डू पे सब गाते हो सब प्यार से।
1: हाँ हाँ सब प्यार से।
0: आगे चला दो अब सब के, ठीक है। सो और एक के दो से हेलो।
1: हेलो प्रताप जी।
0: नमस्ते जी, ये प्यारी सी आवाज किसकी है?
1: मैं हूँ मनु रुजबे से।
0: हाँ मनु, कई दिनों के बाद आप हमसे बात करिए, क्या हुआ? हमसे रूठ गई क्या?
1: शादी है ना, टाइम नहीं बेटा।
0: हाँ हाँ हाँ जी,
1: मेरी छोटी नन्ही से नाती की जन्मदिन था गुरुवार को।
0: हाँ
1: मैं सोचा लाइन नहीं मिली।
0: क्या क्या नाम है, क्या नाम है?
1: सिया गंगा।
0: तो सिया को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है, हैप्पी बर्थडे कहते हैं।
1: उसकी मैं उसकी दादी हूँ, पापा उसका कविराज, उसकी मामा है पल्लवी, उसकी फूफू है राती और छोटी फूफू है रीना, और उसकी सब परिवार कुशाई परिवार, उसकी नाना है नानी।
0: उनका बर्थडे था गुरुवार को, पिछले
1: गुरुवार को।
0: पर उस दिन आपको लाइन नहीं मिली ना?
1: नहीं नहीं, गुरुवार को आप काम नहीं करते थे ना?
0: हाँ मैं शनिवार को आता।
1: हाँ शनि, आप मंगलवार को और शनिवार को,
0: मंगलवार को रात को होता है और बुधवार को भी रात को होता है।
1: बुधवार को, गुरुवार के है ना।
0: हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ, और आपकी नातिन वो कहाँ काम करती है आपने बताया?
1: क्या
0: आपकी नातिन जिसका बर्थडे वो कहाँ काम करती है?
1: एक साल के हुआ, एक साल।
0: अच्छी बेबी सा, एटा सो क्यूट, ये तो प्यारी सी परी है।
1: परी है, छोटी सी परी। उस दिन एक छोटी सी पूजा हुआ हवन।
0: हाँ
1: एक छोटा मेरी दोस्त।
0: अच्छा है, पूजा पाठ हवन सब करना जब किसी का जन्मदिन होता है तो भगवान का आशीर्वाद भी हमें पाना चाहिए।
1: है बहुत धन्यवाद आपका, सब परिवार गंगा परिवार का, कुशाई परिवार का, मेरी छोटी सी ननी से, आप जो शब्द उसके नाम।
0: जी हाँ, तो हम कहेंगे भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी लंबी आयु हो, उनके जीवन में उनका सारा सपना पूरा हो और वो मामा पापा का नाम रोशन करें।
1: क्या बात है,
0: बहुत धन्यवाद। शुभ दिन आपको भी। हाँ। इतने प्यार से आपने में फोन किया, इतनी सुबह सवेरे जितने भी लोग अपना जन्मदिन मना रहे आप लोगों को हमारी ओर से MBC की पूरी टीम की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद है। हम अपनी दुआओं में आप लोगों को रोज़ याद करते हैं, शायद आप हमें कभी भूल जाते हैं, पर अवधी प्रताप सिंह आप सभी लोगों को अपने दिल में समाए रखता है। और मैं रोज़ जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, यज्ञ हवन करता हूँ, तो मैं पूरे जनता मॉरिशस जनता को याद करता हूँ। आप लोगों के लिए मैं दिल से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। और एक दूसरे लाइन पर हम उनसे मिलेंगे। हेलो हेलो हेलो जी, प्रेमिला जी, हमारी प्यारी सी प्रेमिला जी आ गई हैं। कैसी हैं प्रेमिला जी? ठीक ठाक। और श्रावण मास का महीना तो चल रहा है, पूजा पाठ यज्ञ हवन हो रहा है आपके यहाँ भी। और पंडित जी कैसे हैं? पंडित जी आपका परिवार है ना, वो कैसे हैं? ठीक ठाक।
2: अभी पंडित जी थोड़ा दूर हैं हम लोग से। हाँ वो हमारे दो बेस्ट फ्रेंड भी हैं।
0: क्या नाम है?
2: निर्वाण और
0: विहान,
2: भूल जाती।
0: हाँ निर्वाण और विहान, पर वो लोग आपको कभी नहीं भूलते, वो लोग आपको हमेशा याद करते हैं।
2: छोटे हैं ना, अभी तो एक साल हुआ।
0: हाँ पर जो प्यार जो अपनापन होता है ना, जब आते हैं आपके यहाँ घूमने आते हैं तो
2: मुझे बहुत प्यारा, सबसे प्रिय प्रिय।
0: हाँ आप उनकी नानी हैं, दादी?
2: नानी
0: वो कहते हैं दादी अम्मा, दादी अम्मा मान जाओ।
2: मैं गा रही थी हूँ। मामा पापा,
0: हाँ
2: पापा और उसके दो मौसी मौसा और रिया और यश और प्रकाश के लिए।
0: ओके जी।
2: बहनों के लिए संजय बीमार है।
0: हाँ।
2: मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द।
0: वो काफी दिनों से बीमार है ना?
2: हाँ काफी दिनों से बीमार, एक महीना से।
0: एक महीना भी? कहाँ, अस्पताल में या घर पे?
2: अस्पताल, रोजबेल के अस्पताल।
0: डॉक्टर का क्या कह रहे हैं, ठीक होगा थोड़ा सा क्या?
2: हाँ, थोड़ा सा ठीक हुआ, उतना नहीं भगवान से।
0: हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए। ठीक है
2: जी जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। और जितने भी लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं, क्लिनिक में हैं, अनाथ आश्रम में हैं, हमारी प्रार्थनाएं आप लोगों के साथ है। और एक दोस्त से हमसे मिलेंगे। हेलो
3: नमस्ते जी,
0: शुभ नमस्कार, आपका नाम?
3: सुनीता।
0: सुनीता कहाँ से?
3: निगोव से।
0: हाँ सुनीता बोलिए।
3: आज मेरे भाई के जन्मदिन है।
0: क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। भैया का नाम क्या है? परमानंद जी को हमारा सादर नमन और हैप्पी बर्थडे
3: जी.

0: और
1: एक सुंदर भी डाल देना।
0: कितने साल के हो रहे हैं भैया जी? कितने साल के हो रहे हैं आज?
1: 63 के।
0: चलिए हम दुआ करते हैं वो 100 साल तक जिए, उनके जीवन में प्यार हो, बहार हो, लंबी आयु हो, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे।
1: सब गजाजा फैमिली के लिए।
0: ओके, सो आज प्रोग्राम होगा, सभी लोग आएंगे आज?
1: वो लोग आज हवन
0: है। हाँ यज्ञ, हाँ हाँ, यही तो पूजा पाठ है ना आजकल तो।
1: हाँ
0: तो वेजिटेरियन तो केक बन, वेजिटेरियन मिठाई तो बन सकता है ना। हाँ हाँ, और आपके भाई को ढेर सारा आशीर्वाद है हमारी ओर से भी, ठीक है
1: जी।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। और एक नहीं, चलिए अभी गीत सुनते हैं क्योंकि लिस्ट काफी लंबा हो जाएगा। ऑलराइट, फिल्म का नाम है मिलन, हम तुम, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में। ये गीत खुशी वाइती के नाम, आप रहती है पेचित्री भी है, उनकी माता जी, उनके भाई और पूरे वाइती परिवार के नाम।

लता मंगेशकर की गाए फिल्म संगम के इसी मधुर गीत के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जी हाँ, कुछ क्षणों में 9 बजने वाले हैं। 9 बजे का फ्लैश न्यूज के बाद आज की चर्चा पीक टाइम मैगजीन। सुबह के 6 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, इसके शुक्रिया करम मेहरबानी। आपकी फ़ोन कॉल्स SMS के लिए भी शुक्रिया। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम 3 से 4 बजे, ऐसा भी होता है ऑन ऑर एंड प्री रेडियो मनोरंजन। Till then, it's goodbye from me, Aujee Pratap Singh, ki aur se aap sabhi ko pyar bhara namaskar, love you all, God bless, namaste.

0: रेडियो मॉरिशियस।
1: रेडियो मॉरिशियस
2: सुबह के ठीक 9 बजे हैं और समय हुआ है संक्षिप्त समाचारों का। संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं आशिता रघु। नमस्कार आशिता।
3: नमस्कार किरण। श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्ति के अगले ही दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सभा में जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाना होगी। संसदीय अवकाश के बावजूद उन्होंने कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताया, जिन पर वे जल्द ही काम शुरू करेंगे। कॉमनवेल्थ खेल 2026 में मॉरिशस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 4 पदक जीतकर 74 देशों में 15वां स्थान हासिल किया है। मंत्रिमंडल ने कल पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके ट्रेनरों को बधाई दी है, जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लुकोपियन की टू दे फ्रांस महिला श्रेणी में शानदार जीत की भी

सराहना की है। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में उत्सर्जन 3.4% से बढ़ा है, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा में 17% की वृद्धि हुई है। मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के तहत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस में उन्नत चिकित्सा सेवाओं, ट्रेनिंग, विशेष उपकरणों और आधुनिक उपचार सुविधाओं के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EDF यानी एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस डिजिटल प्रक्रिया के जरिए कर्मचारी टैक्स बेनिफिट्स यानी लाभों का दावा कर सकती है, जिसमें डिपेंडेंस और शुरुआती 5 लाख रुपए तक की थ्रेशहोल्ड पर टैक्स एग्जेम्पशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बात करें थोड़ा मुनाफा के बारे में, एमटेल ने इस वर्ष की पहली छमाही में 320 मिलियन रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। बेहतर वित्तीय स्थिति, कम कर्ज और मजबूत लाभ मार्जिन के साथ कंपनी ने शेयरहोल्डरों के लिए डिविडेंड पेमेंट की नई व्यवस्था की घोषणा भी की है। और दुनिया में जारी सबसे बड़े कोरल ब्लीचिंग संकट के बीच मॉरिशस में एक अध्ययन ने नई उम्मीद जगाई है। लाकॉम्ब्यूज में किए गए शोध से पता चला है कि कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भीतियों की बहाली से समुद्र के बढ़ते तापमान के प्रभावों के खिलाफ उनकी क्षमता को मजबूत किया जा सकता है, और जहां कुछ संरचनाओं में 70% से अधिक जीवित रहने की दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी देश सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। और आपको हम याद दिला देते हैं कि समाचारों के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम आज की चर्चा, और आज के लिए विषय है इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जो कि है 1 से 8 अगस्त तक। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान हैं कम्युनिटी फिजिशियन डॉक्टर राजीव बचोनी और सीनियर मिडवाइफ श्रीमती सुमेरी सोनू, और आज के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी किरण जानकी। तो इसी के साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे हम सबका कोई ना कोई संबंध ज़रूर होता है। आज हमने बतियाब जा इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर ये जो अगस्त के पहला महीना चलेला पहला से 8 अगस्त तक ई में माँ लोग के अपन शिशु अपन बेबे के दूध पियावे पर एगो सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलावल जाला। आज मॉरिशस में जैसे जानेला जोन हमनी के स्वास्थ्य मंत्रालय बा ओकर द्वारा ई जोन पूरा सेंसिटाइजेशन कैंपेन जागरूकता अभियान बा ऊ चलावल जाला। तो आज हमने देखब जा कि काहे आज के दौर में भी जहाँ पर इंटरनेट पर सब कुछ आपके मिलेला, जहाँ पर टीवी रेडियो पर सब जानकारी मिलेला, फिर भी ये जो सेंसिटाइजेशन कैंपेन बा वो सार्थक है, वो रेलेवेंट है। आज भी चाहे ना ही करे के काहे चाहे करे के काहे चाहे माँ लोग के आज भी अपन लड़का लोग के दूध पियावे के काहे कि एगो ऐसा दुनिया में जियत है जहाँ पर सब कुछ उपलब्ध बा बाजार में, और काहे चाहे माँ लोग के सिखावे के कि अपन लड़का लोग के चाहे अपन बेबे के दूध पियावे के कब तक पियावे के एकर से कौन फायदा होवेला। ये सब विषय पर आज हमने संगे बात करे खातिर हवन स्टूडियो में डॉक्टर राजीव बाचुनी जे कम्युनिटी फिजिशियन हवन। डॉक्टर जी नमस्ते।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम में आपके बहुत स्वागत बा। और फिर साथ में हमने संगे हवन एगो सीनियर मिडवाइफ श्रीमती सुमेरी सोनू जी। नमस्कार सोनू जी। आप दोनों के सोनी जी आप दोनों के ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आप दोनों जना अपन कीमती समय निकाल के आज फजीरे फजीरे आल हो बजा जनता के ये समझावे कि माँ के कहे चाहे अपन दूध लेका के पियावे के, और ये सब जन कार्य चलता ओकर से कौन लाभ होवे होला बा, कौन उद्देश्य बा, ये सब विषय पर आज बात करब जा। सबसे आगे डॉक्टर साहब हमने के ये बोला ये जो सेंसिटाइजेशन कैंपेन बा ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो पूरा एक सप्ताह तक चले के एकर मकसद है दुनिया भर में, एकर मकसद का है?
1: तो एगो एगो हिस्टोरिक वाली लाइस
0: जरूर
1: है। हम जब से WHO क्रिए होल बा 1948 से, तब से वो एस्टैब्लिश कर ले बा वर्ल्ड हेल्थ के वो गाइडलाइंस देवेला प्रोटोकॉल देवेला और है अवेयरनेस खातिर हमने के सुझाव देवेला। तो है जो कंपनी बा ब्रेस्ट फीडिंग के वो लिदानी सुशांत जी से है, और हर साल ई कंपनी आवेला

0: और हमने के जैसे सिस्टम ला सौते में बात हमने आई जोन ब्रेस्ट फीडिंग के जोन बा ऑन गोइंग हा
1: जी हाँ
0: ओके और हई जोन कंपनी जोन एक चीज रिसर्च से बड़ी नहीं हा तो हर साल एगो नवा नवा थीम रहेला
1: जी
0: तो इस साल के थीम हा कि जोन हमके चाहे जोन चीज हमके डेजा एग्जिस्ट बा ओकर स्ट्रेंथन करे के जैसे तू ही बोला काहे चाहना हर साल याद कराए के क्योंकि हर साल नया नया माँ लोग होलन सा
1: हाँ।
0: नया नया बच्चा शिशु तो ओ लोग के हमने के कैसे आँखों पाएमन यन करीला सो तो एगो टीम वर्क है कि खाली डॉक्टर नहीं करेला इमें हमने के मिडवाइफ भी बा और सब भी जोन कहते गायनी जिनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट में है और हमने के पूरा साल ही चलेला खाली नहीं कि अगस्त के महीना में चलेला ये पूरा साल चलेला
1: जरूर
0: हाँ तो हमने के सब एक ऑनगोइंग प्रोसेस है
1: जी। श्रीमती सुमेरी सोनू जी आप एगो मिडवाइफ हवा हमने के बोला आपके जस्ती संपर्क है जस्ती आप मिलेला माँ लोग से जो माँ बने होला स्त्री हवन जा तो ये जो कंपनी चला था आप लोग कैसे ये सब माँ लोग के मिलेला जा मतलब कैसे चलेला ये कंपनी
2: पहला जब माँ लोग गर्भवती हो जा तो वो लोग आवेलन जा जिस पौसिया में अपन एगो दृश्य बनावे वो लोग के एगो बुकिंग करेला जा जमें उमें वो लोग के सब इंफॉर्मेशन ले ला सा वो लोग के सलाह मशवरा दे ला सा और हेल्थ स्टॉक करेला सा और वो हेल्थ स्टॉक के द्वारा हमने ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करके माँ कैसे बच्चा के दूध पिया काहे के चाहेला दूध पियावे के ब्रेस्ट फीडिंग के जितना लाभवांताज रहेला माँ के समझाएला सा और उकर डिजावांताज भी जन है वो भी माँ के सिखाएला जा कि लोग के दूध नहीं पिए अन सब बच्चा के तो उकर कॉन्सिक्वेंस का हुएला
1: जी। और कौन महीना से मतलब जब एगो स्त्री गर्भवती हो गई लन तब कौन महीना से ये ट्रीटमेंट शुरू करेलन जा रजिस्ट्रेशन कब से करेलन जा
2: उ रजिस्ट्रेशन उ जैसे जनलक की उ प्रेग्नेंट बा ओकर एगो प्रेगनेंसी टेस्ट करल जाला जब आवेलन जा जब ओकर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रहेला तब ओकर एगो दृश्य बनाएला चाचा विजय ओकर गोसेस जन बा उ कॉन्फियम हो गल तो अब ओकर दृश्य बनावब सा ओकर एगो फॉलोअप करब सा और लोग के सब जितना सलाह मशवरा रहेला देवे के तो उ लोग के सब सुविधा दे ला सा और उ लोग के जितना क्वेश्चन रहेला तो उ लोग हमने से सकेलन सब पूछे ओकर सब सॉल्यूशन दे ला जा।
1: अच्छा ज़रूर तो आज जैसे देखा था हमने ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि माँ के अपन शिशु अपन चिबेबे के अपन दूध पियावे पर जो सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलेला अगस्त महीना के पहला सप्ताह में ऊपर बतिया थे जा और हमने संगे डॉक्टर राजीव बाचुनी हवन और साथ में हवन श्रीमती सुमेरी सोनी जी तो कार्यक्रम के अभी थोड़ा देर में और आगे बढ़ावा जा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको के एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने जो विषय पर बतिया थे जा वह माँ के दूध से लड़का लोग के जो लाभ होवेला, जो माँ के लाभ होवेला, और ई पर एगो पूरा सप्ताह के सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलेला अगस्त महीना में पूरा दुनिया में। और ई विषय पर बात करे खातिर आज हमने संगे हवन डॉक्टर राजीव बाचुनी, कम्युनिटी फिजिशियन, और श्रीमती सुमेरी सोनी जे सीनियर मिडवाइफ हवन जा। डॉक्टर साहब, हमने के बोला ई जोन कैंपेन चलता, जोन सेंसिटाइजेशन होवेला, केकर के तो लोग के ऑडियंस है, मतलब के लोग से आप लोग संबोधन करेला जा? खाली माँ लोग संगे, जे लोग माँ बने होला बा, जे लोग माँ बन गल हवन जा, या फिर केकर संगे?
2: तो हम के टारगेट ऑडियंस है महिला लोग जोन प्लान करत हन सा प्रेगनेंसी, और नया मदर जोन प्रेग्नेंट हो गल हन सा, पहला बार लोग के प्रेगनेंसी है। और खाली वो लोग के नहीं, वो लोग के पति, वो लोग के फ्लाफामी, वो लोग के क्लोज जोन संगे बा, वो लोग जन से रही जोन लोग के एडी करी या गोसेस के लेता मैं, तो वो लोग के यानी उनके टारगेट ऑडियंस है। तो शुरू में जैसे बोले जैसे ब्रेस्ट फीडिंग

0: पोतों तो जाना जाने के काहे हैं पोतों ब्रेस्ट फीडिंग एगो चीज नेचुरल हो एगो प्रकृति के एगो नेचुरल एगो नेचुरल चीज हो एगो चीज आर्टिफिशियल नहीं हो
1: जब एगो लड़का के जन्म होवे लाता साथ में माँ के दूध भी आवे के शुरू हो जाला
0: तो जैसे आगे टेक्नोलॉजी नहीं रहल तो माँ के दूध रहल तो तब से बढ़ले यहीं से जब से मॉडर्नाइजेशन आलबा तो ये सब सब्स्टिट्यूट मिल्क जो आलबा वो आलबा है मौसे पर तो एगो जैसे हमने के महिला लोग काम करे लन सर तो हई से मालगजमा जैसे बोला सर प्रभाव होल बा जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग कमती होल बा तो हमने के डेनिस स्टैटिस्टिक जो करे रही सर तो मुकुश में तनी सुन कमती बा हई वर्ल्ड स्टैटिस्टिक में 48-50% हाँ ब्रेस्ट फीडिंग होला तो मुकुश में तनी कम एगो 20% ले और हमने के जो कैंपेन जो बा जो हमने के प्लान बा वैन सेट के हमने के प्लान करते हैं ओकरा बढ़ाई के कि ओकर 50% ले सकी पहुँचे तो ठीक रही तो ई खातिन हमने जैसे बोले सर कंपाई खाली कंपाई के बखत अगस्त में नहीं काम कर ला सर भर साल ई चलेला ई रेनफोर्समेंट है मिसाज
1: एगो सिंबॉलिक है प्रीमियर से विद उतवा एगो सिंबॉलिक है
0: एगो इंटरनेशनल सब कोई सेलिब्रेट करला नहीं तो ई चीज जो जारी है भर साल तो काहे ऐप होता है ब्रेस्ट फीडिंग बस ये हमने के जिसे हमने सुन लिया अब सर पहला वैक्सीन है हमने के बेबे के पहला वैक्सीन है माँ के दूध और माँ के दूध जैसे शुरू होला सब कोई के जो पहला पहला माँ बने लन सर तो लोग कब चौंके लन सर तो वही खातिर ना ये मिडवाइफ जो बा हमने के टीम बा हमने के लेके वो लोग एक्सप्लेन कर ला सर पहला दूध एक कोलेस्ट्रॉम जो निकलेगा जो पहला दो तीन दिन में निकलेगा ओकर बाद में उस सौंसे होला और 14 दिन ले एगो दूसर मिल्क आवेला तब मैच्योर मिल्क 14 दिन के बाद में एस्टाब्लिश होला तो ये सब एक्सप्लिकेशन जारी रहेला और कैसे बेबे के पियाई के तब हमने के टीम जो बा है मिडवाइफ जो हन सर और सबके जो बा जो डिपार्टमेंट में बा वो लोग एडी करे लन सर एक्सप्लिके करे लन सर और जब वो लोग के बुकिंग जब रहेला जैसे मिडवाइफ जी बोला तो वो लोग के पत्नी के वो लोग के पति के वो लोग के सास के वो लोग के माँ के जो साग नाल बा वो लोग के बुलाई ला सर एक्सप्लिके करे सर कौन सपोर्ट चाह दे के और कैसे दे के जमें ही ब्रेस्ट फीडिंग हुआ ये शुरू हुई आकुष्मों के बाद और वो जारी भी रही और WHO रिकमेंड कर ले बा 6 महीना तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पानी तक भी नहीं देंगे
1: खाली माँ से देंगे
0: हाँ तो देखा तो एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है
1: हाँ
0: और देता है बहुत बार और हमने ये काम जारी ही रखे लगा कि खाली नहीं है कि खाली अगस्त में कर लगा और मिडवाइफ
1: हमने के मिडवाइफ हमने के संगे हवन आगे मिडवाइफ के जो ओकर अनुवाद ले बता ओके दाई बोलल जाला तो हमने संगे आज एगो मिडवाइफ हवन आप वही काम करत हवा जो आगे के समय में दाई माँ करत रहलन जब एगो लड़का के जन्म हुआ था लड़का के कैसे दूध पियावे के ओकर से अक्ते जब लड़का के जन्म हुई होला बात माँ के सिखावे के कौन चीज चाहिए करे के ताकि दूध उतरी और जब लड़का हो गल तन जे दूध नहीं उतरता था का चाहिए करे के कौन चीज करब तो दूध अले जाए थोड़ा हमने के बतावा माँ लोग के कौन संदेश देवे ला जा कैसे सिखावे ला जा
2: हाँ तो हमने जब बुकिंग में आवे रंजा अपन दृश्य बनावे तो उ लोग के यही उ लोग के हेल्थ स्टॉक में यही बताई ला जा कि उ लोग के चाहेला अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखे के एगो एगो वेल बैलेंस डाइट लेवे के जमें उ लोग के ला सौते अच्छा रही और बच्चा के दूध मिली उ लोग के चाहिए अपन पानी पिए के अपन वेल बैलेंस डाइट लेवे के जमें बच्चा के खूब दूध मिली उ लोग के ला सौते अच्छा रही तब बच्चा भी स्वस्थ से रही
1: और जो खयन से पियन से ओकर जो लिफे बा उ सीधा रूप से उ लोग के दूध में जाए और वही दूध लैका पी तो जो खयन से पियन से उ दूध में झिगक जाए और लैका के वही ग्रहण करे के समय आए और जब एगो माँ के जब दूध नहीं उतरेला ओके कठिनाई हुआ था तो आप लोग कैसे उ लोग के सहायता करेला जा
2: उ लोग के जब कठिनाई हुएला तो उ लोग के प्रेनाताल क्लिनिक में उ लोग के सब सिखा देला जा जब बच्चा जन्म लेवेला तो जैसे बच्चा जन्म ले लेवेला

0: तो ओके डायरेक्टली ओके माँ के छाती पर लगाए लासा जब मैं बच्चा दूध
1: खोजे
0: और ओके स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बोलल जाला माँ और बच्चा के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जगह पो आ पो बोलल जाला
1: जैसे जन्म हो
0: हाँ जैसे जन्म हुई था तब बच्चा दूध हिंची माँ से और ऐसे बच्चा और माँ में लगाव भी हुई ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ लेबर वार्ड में वो लोग एक घंटा विद इन वन आवर एक गोल्डन आवर बोलल जाला ओके पोस्टनाटल में ट्रांसफर करे से पहले ओके वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करी ला सा तो वहाँ पर लैक्स को भी असेस करी ला सा कैसे कि बच्चा कैसे दूध हिंचाता माँ के कौन पोजिशन चाहेला अडॉप्टे करे के कैसे वो कम्फर्टेबल से बैठी और बच्चा भी कम्फर्टेबल से रहे और देखे के चाहेला कि बच्चा के दूध मिला था और माँ के दर्द भी नहीं महसूस हुई
1: ज़रूर और डॉक्टर साहब ये जो सीख देवत हुआ जा अभी बोल रहा पूछोदास थोड़ा बेसे हो गल बा तो जो जो सीख देवत हुआ जा जो कौसे देवेला जा जो कंपाएँ करेला जा एक से कोनो असर सामने नजर आवता मतलब कितना एफिकास बा कितना फायदेमंद बा
2: जैसे हमने बोला था ऐसा कि फैसिलिटी आप सब कोई खोजेला से हमने खोजा सा हॉफोसे करे के
1: है जरूर
2: है जो लीडे बा लीडे नहीं है मतलब एगो फैक्ट है कि पहला बच्चा जब माँ संगे दूध पिएला तब देखल गल बा स्टैटिस्टिक वाइज ओकर मालाद लेका नहीं रही मतलब पहला जैसे दूध पीलक ओकर माँ से ओकर पहला वैक्सीन से बोलन सा कोलेस्ट्रॉम में उमें ऑंचिको बा उमें विटामिन बा फेयर मैग्नीशियम एलएमएस जोन बा वाइटल जोन ओकरा चाहेला और बच्चा जब पैदा होला तो ओकर पेट बहुत छोटा रहेला
1: हाँ।
2: तो उमें ढेर ओकरा नहीं चाहेला तो 5 ml ले रहेला ओकर पेट तब जैसे जैसे बढ़ेला दिन तो ओकर पेट खुली जब कोलेस्ट्रॉम डिसान होला तो ओकर गट के खोलेला ओके तब ओकरा कोटिंग होला और तब जैसे बोली तीसरा दिन के बाद में दूध के ओकर कंसिस्टेंस सांसे होला और 14 दिन पर वो माचो मिल्क आवेला जब है भय रहेला कि महिला लोग के कि बस नहीं बा दूध ये खाली एगो साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है जब जैसे बच्चा पैदा होला जैसे प्लासेंटा निकलल तो ओकर हार्मोन के कास्केड जो हार्मोन बा वो सांसे हो जाला तो ऑटोमेटिक में ओकर लेको लगी पोजिया करे और लड़का के ओकर स्तन के पास लावन से ओकरा स्टिमुलेट कर लेना से एगो टेक्निक है सिखावेला सर मैडम लोग के मिडवाइफ लोग के टीम सिखावेलन से कैसे लड़का के डाले के जमे ऑटोमेटिक में ओकर रिफ्लेक्स आवेला हिंचे के और वो जैसे रिफ्लेक्स आल हिंचे के तो दूध देसान हो जाला तो ये एगो बड़ा समस्या नहीं है जैसे बोलिए आगे की WHO बोले बा कि 6 महीना तक छना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो ये सब जब करब तो जैसे पहला वैक्सीन हो लड़का के ओकर आसमाचिक के प्रॉब्लम कमती हुई ओकर कान के ओकर पेट के बीमारी जैसे पेट झरेला लड़का के छोटा के वो लोग बहुत कमती होला वो लोग के प्रोटेक्शन होला लंग्स के चेस्ट इन्फेक्शन से और लोग के लोकल विवाह जो ब्रेस्ट फीडिंग कर लेना सर कि बाद में वो लोग के Type 1 diabetic से कम रिस्क है अगर ओबिजिटी नहीं रहेला तो ये सब बहुत लाभताज है जब बेबे ब्रेस्ट फीड होला जब माँ के साथ दूध यहाँ में खाली माँ के लैपोटॉस मतलब लैपोटॉस ने खाली पियावेला
1: जी
2: बच्चा के ओकर लाभताज बा माँ के भी लाभताज बा देखल गल बा जो महिलाएँ जो बच्चे के दूध देवेलन सर तो लोग के रिस्क ऑफ कैंसर ब्रेस्ट और ओवेरियन बहुत कम है
1: जी
2: तो ये स्टैटिस्टिक वाइज ये सब चीज़ है और जब एगो माँ और बच्चा साथ में रहन सर तो लोग के इमोशनल बॉन्डिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग और ये सब ईदी करेला जब लोग मेंटल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल मेकअप दूसरे को फास हो
1: जरूर अब डॉक्टर साहब एगो दूसर बात है कि ढेर ऐसा का है जहाँ पर लड़का के जन्म से अगते कहे कि मिडवाइफ लोग आप लोग सिखावे ला जा माँ के लोग के तैयार करे ला जा ताकि जब लड़का के जन्म हुआ था तो दूध अपने आप अच्छा से उतरी और ऐसा बहुत का है जहाँ पर ढेर दूध उतरा था लड़का नहीं पिया था तो ऐसा में कैसे मतलब इस सिचुएशन के कैसे चाहिए हैंडल करेंगे
2: जैसे शुरू में बोली है रिकमेंड है 6 महीना में खाली ब्रेस्ट फीडिंग तो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करो था तो जितना लड़का के चाहिए उतना फौजय होला माँ के दूध, और दिन में 8 से 12 बार बच्चा पी, बच्चा दूध पी, और ओकर पिए जैसे पिएला ओकर कंसिस्टेंस ओकर क्वालिटी सांस जे होला, शुरू में ओकर दूध दूसर फासो हाँ एगो जस्ती लिक्विड है, बाद में ओकर घा होला ओकर प्रोटीन होला ओकर जितना ओकर पौष्टिक चीज चाहेला वो ऑटोमेटिक रहला। तो कोनो कोनो माताएँ हैं जो नवा नहीं जाने लन सा तो थोड़ा सुन एगो कोते दियन सा अपन स्थान में और तब दूसर थोड़ा सुन तो वो नहीं है चाहना एक के कोते और के पिए देके नीमन से हिंची तो नीमन से ओकर पेट भरी तब जब सांझे करबा तब दूसर का आते नहीं तो खाली ओकर ऊपरे ऊपरे सुपरफिशियल मिल्क जैसे बने सांझे होला। तो ये है एगो बात और पूछला कि
1: जब ढेर दूध उतरता
2: एक्सक्लूसिव देवा तो ढेर नहीं उतरी, अगर उतरा था एक्सेस प्रोजेक्शन हुआ तो आजकल डिवाइसेस बा ब्रेस्ट पंप बा जो महिला लोग सकना सेवी करे और सकबा फ्रिजदे में डाले एक रख देव, और अगर काम करे वाला महिला हो तो आगे से निकाल के डाल दे फ्रिजदे में और वक्त दे
1: बिभों से सकी पिया वे।
2: हाँ लेकिन शुरू में बिभों नहीं आंखों खास कर देगा क्योंकि बिभों लड़का के पागज करा देगा और बिभों देव जाने ला माँ के स्थान एगो जस्ती फासिल ओकर इजैन रखे के
1: जी।
2: हाँ तो जी की जैबा बिभों में डाले तब पर बिभों साफ रखे के निप्पल है हाउ तब बहुत कॉम्प्लिकेशन होला जेकर नहीं सकत वन सा होला में जब तक और भर सक जितना सकी तो
1: डायरेक्टली चाहिए अपने पिया
2: डायरेक्टली ब्रेस्ट
1: जी। तो जैसे सुनत हवा देखत हवा आज के हमने के प्रोग्राम बा माँ के दूध के जो लैपोटॉन्स है और ये काहे सुविधाजनक और लाभदायक है लड़का खातिर भी और माँ खातिर भी, और इस सब विषय पर हमने संगे बात करा था डॉक्टर राजीव बाचुनी और सीनियर मिडवाइफ श्रीमती सुमेरी सोनी जी। थोड़ा घड़ी में आपसे फिर मिलब जा और ये विषय पर और बातचीत करब जा, फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक।

0: का कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने माँ लोग के कैसे चाहे अपन लड़का के दूध पियावे के काहे चाहे पियावे के लड़का के काहे चाहे ई दूध पिए के ई विषय पर बात करते जा। हमने संगे उपस्थित हवन स्टूडियो में कम्युनिटी फिजिशियन डॉक्टर राजीव बाचोनी जी और साथ में सीनियर मिडवाइफ सुमेरी सोनी जी। सोनी जी, हमने के ई बोला कि आप लोग मिडवाइफ के हैसियत से कैसे माँ लोग के अकोपाई करे ला जा, कैसे कौन कौन टिप्स देवे ला जा, लेका के कैसे प्याए के कौन बखत प्याए के, थोड़ा हमने के इस टिप्स के बारे में बोला और आप लोग कैसे सहायता करे ला जा।
1: हमने मिडवाइफ लोग हमने माँ लोग के उन लोग के साथी हैं सा, उन लोग के अकोपाई करे ला सा अगर बच्चा के जन्म से पहले और बच्चा के 2 साल हो जाला तब तब लेक हमने वो लोग के एगो स्वीवी भी दे ला जा। और बच्चा के तुरंत बाद जैसे बोलनी ओके माँ के चाहेला अपन दूध देवे के ओकर पहला दूध जौन है ओके कोलेस्ट्रॉम बोली ला सा, जैसे डॉक्टर साहब बोल दिलन कि ओकर पहला वैक्सीन है तो ओकर इम्पोर्टेंस के बारे में भी ओके जानकारी दे ला जा कि वो कुलर जोन रहेला माँ के ऊ पहला दूध ओके ओके ओके फेकल नहीं जाला
0: गस्पिए
1: नहीं चाहेला गस्पिए करे के वो पहला दूध वा बच्चा के चाहेला देवे के ये बहुत ज़रूरी है। वो ही बच्चा के प्रोटेजे करेला इन्फेक्शन से अलग अलग बीमारी से प्रोटेजे करेला।
0: ये लड़का लोग के सिखा माँ लोग के सिखावे ला जा।
1: हाँ, माँ लोग के सिखाई ला जा और साथ साथ ओकर घर के जौन सदस्य बा दादी नानी पति जौन बा सब कोई के ये जानकारी दे ला जा, बस कि वो लोग के ये गलत फहमी में रह लन जा कि वो एगो जिले साल हाँ ओके नहीं देवे के चाहेला बच्चा के नहीं देवे के चाहेला। लेकिन ये गलत फहमी हमने दूर करी ला जा कि ये बच्चा के चाहेला देवे के
0: सबसे ज़रूरी है,
1: बहुत ज़रूरी है ये बच्चा के देवे के। और माँ लोग के जब समस्या हुएला बच्चा के कठिनाई हुएला बच्चा के दूध देवे के तो उन लोग के हमने सिखाई ला जा, उन लोग के सब जितना केशों रहेला उन लोग के सब रिपन करे ला जा कि उन लोग के कैसे चाहेला अपन लड़का के एगो निमन पोजिशन में ओके कैसे कैसे कौन पोजीशन अडॉप्ट करे के
0: कौन पोजीशन चाहिए अडॉप्ट करे के जे अभी हमने के सुना था वंजा उन लोग के तो का बोलबा।
1: हाँ, ढेर पोजीशन बा कैसे एगो माँ कुछ माँ नॉर्मल से गुजरल बा तो उसे की बैठ के सकी वो अपन लड़का के एगो एगो सोफा पर उसे की लड़का के होल्ड करे अपन हाथ से

0: बच्चा के कपार जोन बा उसकी अपन अपन लिभा में सिपोड़ी हुए और बच्चा के जिपुल जोन बा वो भी चहला सुतेनिया करे के और बच्चा के मुँह चहला खुलल रहे के बच्चा के मुँह खुलल रहे तब वो जोन हा माँ के आखियोला जोन हा तो वो बच्चा पूरा मुँह में डाली और बच्चा के मौतों जोन हा वो चहला माँ के छाती से लगे के और
1: अगर नाक चाहे खुला रहेगी
0: अगर नाक हाँ जब मैं बाबा से कि रेस्पिरे करे तूफे नहीं हुई ये सब सिखाई ला जा और माँ के चहला बच्चा के अपन दूध पियावे के बच्चा के मांग पर और जब बच्चा के माँ बच्चा के दूध पियाए तो ओके कोनो प्रकार के दुले उन्हें महसूस करी
1: और कई मतलब कुल त्यौहार में कई हला एगो माँ के चाहे प्याय के अब रात के जब दूर जना सुतल हवन जा थक के सेतु माँ तक रात में कई हला चाहे लेगा के पियावे के चाहे उठा के प्याय के
0: बच्चा के घर ही देख के नहीं दूध देवल जला बच्चा के मांग पर चहला ओके नहीं बोला जला कि 2 घंटा 3 घंटा पर बच्चा के दूध पियावे के वो बच्चा जो सुतल रही तो ओके उठा के चहला ओके दूध पियावे के और देखबा बच्चा रोवता बच्चा दूध खोजता गोदी में लेबा तो वो देखबा बच्चा दूध खोजता तो ओके चहला घड़ी घड़ी जब मांग करियन तो ओके माँ के चहला ओके दूध पियाई के
1: अच्छा डॉक्टर साहब अभी आप लाभ और जो लाभ हुआ था माँ के पहला दूध से ओकर बारे में बोला था एगो माँ कब ले सकी अपन लेका के कब ले ओके चाही पियावे के ऐसा ढेर काबा मतलब आगे रहा अभी तक नवा समय बदल ले जाता जहाँ माँ लोग 3 बरिस तक पियते रहे लंजा लड़का लोग दूध नहीं छोड़े लंजा त कब ले सकी एगो माँ अपन लड़का के दूध पियावे और अभी जो नवा समय चलाल बा नवा नवा फासों नवा नवा भोजवी नवा नवा उपस्यों दूध से लेके अलग अलग जो सुप्लीमों बा लड़का खातिर आज बा नवजात लड़का लोग खातिर भी बा तो एक पर थोड़ा का बोल बा
2: तो जैसे बड़ी सामने के WHO के रिकमेंडेशन हो 6 महीना तक सिर्फ माँ के दूध तब 6 महीना बाद में वो लोग के थोड़ा सुन सेमी सोडिड दे लासा और एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग 2 बरिस ले रिकमेंड है WHO
1: 2 बरिस के बाद नहीं
2: एक नहीं हाँ कि एगो सख्त चीज़ है कि रोके देखे
1: इसमें फ़ायदा नहीं हुई
2: नहीं वो जाने ला जैसे बोली शुरू में एगो इमोशनल बॉन्डिंग होला लड़का से तो कौन कौन लड़का का 2 बरिस से ऊपर भी पिएला लगभग जो जैसे माँ लोग जो काम करे लंसा और बच्चा के जाला खैश में तो वो छूट जला तो वो हो जाला जो माँ जो घरे रहे लंसा वो लोग तनि जस्ती लेता पियावे लंसा तो इमें में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जब तक लड़का बढ़ता खाता पियता खेलता कूदता तो ठीक बा तो सीमा जब उ लेको लाइके बखत तो देखबा तू अपने से ओकर छूट जाए ढेर नहीं पड़ी जेफो करके सकेला एंड फॉल इतना खोजी तो गति गति ओकर जैसे बढ़ी ओकर संगतिया आई लड़का लोग खेले के कूदे के जब लगी मोबाइल हो तो जस्ती थोड़ा थोड़ा देताशे हो जाए वो अपने से आगे कर दे
1: खोजबो करी तो रात के खोजी
2: हाँ वो तो एन एन फॉल इतना खोजी और जैसे ओकर सॉलिड फूड ओकर दांत निकली ओकर खाए के तरीका तौर भी उसे हो तो वो नहीं छा उतना ढेर अगर पिया था बच्चा तो पिए दा हई हमने के सलाह
1: जी हाँ और जो माँ लोग सोचत हवन जा कि उ लोग के काम काजी हवन जा उ लोग के चाहे वायाजे हो के कॉफी हाउस में जाए के वर्कशॉप में जाए के तो ई वजह से ढेर माँ लोग सोचलन सा कि लड़का के जो दूध पिए बता ई जोन हमने बोलते है जा कि ई जोन संबंध वाला तश्मा बा बॉन्डिंग बा उ बढ़ेला ढेर कोई नई खुशी बा कि ई बॉन्डिंग ढेर बढ़ी काहे कि लड़का ढेर रोवी उ लोग के खोजी लड़का उ लोग के अनुपस्थिति में उ लोग के दुख हुई तो ई माँ लोग के आप का सलाह देबा ऐसा स्थिति
2: ऐसी कोनो खास चीज़ नहीं है जरा जाए के बा काम करेंगे क्योंकि हमने के लेजिस्लेशन बा खाली 16 हफ्ता तक हमने के ब्रेस्ट फीडिंग मदर के ओकर लीव विदाउट मतलब पिया हाँ ओकर कोंजे
1: हाँ
2: अभी सरकार काम करता है लेजिस्लेशन पर कि ओकर बढ़ाइन सा 6 महीना तक और ऊपर अभी तक होता
1: मतलब 6 महीना तक एगो माँ के इजाजत रही
2: हाँ
1: काम में से अक्ते निकल

0: करके जाके अपन लेगा कि दूध पियावे के
1: नहीं सकी अपन कोंजे ले मातानीति
0: अच्छा जी छह महीना पूरा लेका संगे रही
1: तो अभी फिनालिजे नहीं होल बा इपर चर्चा होता इपर पर काम होता तब फाइनल हम नहीं जाना थे सके से होए पर अभी तक 16 वीक साथिन बा तो ओकर बाद में जैसे लेजिस्लेशन डिजा बा एनफोर्सेज हला करे के कि जहां जब जाय काम करे तो सी एगो मदर्स कॉर्नर रही जहां बच्चा के सके इंसान है और माँ सकी बच्चा के दूध पियाए तो ऊपर भी काम होता नहीं तो जो लापटीपो जैसे होला आजकल तो माँ घर पर अपन ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर देवेला तो फ्रिजदे में डाले और जो घरे जो माँ जो बच्चा के ख्याल रखता तो दूध पिया देवा था तो यूजली जन तो लोग नानी उ दादी होला नहीं तो स्पेशलाइज जैसे मतलब खैश पीबा वहाँ भी लोग के ख्याल रहेला जैसे बोला सब्स्टिट्यूट ढेर कालते बा से माँ जैसे शुरू में बोली
0: नहीं
1: सकबा हम प्लास्टिक करे आई दूध के ओकर महत्व एगो नेचुरल चीज है और माँ और बेबे के बीच में एगो संबंध है तो जैसे बढ़ी लेका तो वो दूसर खाना पर भी जाए लेकिन जब जैसे दूध मांगी और कमती लगी मांगे और ढेर कोई महिला के सोचलन सा कि नहीं हमार दूध बस नहीं हुई तो ये लोग एगो एगो इनिशियल एगो भय डाल
0: तो गलतफहमी है
1: गलतफहमी है जितना बच्चा पी उतना दूध हुई
0: जरूर
1: बच्चा लगी कमती पिए दूध अपन गति गति अपने से सूख जाए इसी वजह से
0: और सुमेरी जी आप ई माँ लोग के का बोलब जो माँ लोग अपन लड़का के दूध अच्छा समझे लन जा पियावे के लेकिन लोग में ई भी एगो डर रहला कि ढेर लातास्मा हो जाए लड़का से तो लड़का सकी दिक करे लड़का रोवी तो उलोगे नहीं सके छोड़ छाड़ के इधर उधर जाए ऐसा मान लो कि आप का बोलब ई जो पहला छः महीना बा जेकर अभी चर्चा करलन डॉक्टर साहब का ई चाही मान लो के थोड़ा जस्ती लड़का लोग पर ध्यान देवे के सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा जस्ती लड़का पर छः महीना ध्यान दा फिर अपन काम के बारे में सोचे आप का बोलब मान लो के जे आप तो रोज मान लो संगे मिले ला बात करे ला
2: हाँ हमने मान लो कि बोली ला जा कि कैसे WHO रिकमेंड करेला कि 6 महीना तक चाहेला सिर्फ माँ के दूध देवे के बच्चा के ओके कोनो प्रकार के पानी जी कुछ नहीं चाहेला देवे के काहे खातिन कि ई दूधवा में सब विटामिन जोन बच्चा के
0: चाहेला
2: बड़ा हो के तो ई में सब कुछ बा तो ओकर ले इम्पोर्टेंस उ लोग के बतावी ला जा कि चाहेला है दूधवा देवे के आर 6 महीना तक कैसे डॉक्टर जी बोलन कि उ लोग के ई सुविधा मिलेला उ लोग के मैटरनिटी लीव मिलेला तो ई लीव वहाँ हा उ बच्चा के संगे रही जमे माँ और बच्चा में प्यार और लगाव बढ़ी क्या है कि जब स्तनपान करेब ब्रेस्ट फीडिंग तो उसे माँ और बच्चा में प्रेम और लगाव बढ़ेला और ये प्रेम और लगाव ये बच्चा छोटा रहेला तब नहीं जिंदगी भर वो प्यार वो लगाव वो लाताशमा रहेला ऐसे बच्चा लोग जब 12 होवेलन से तो वो लोग एगो समय द्वात में जालन से माँ की बात सुनियन से और
0: के जो संस्कार ट्रांसमिट
2: हो जाए अच्छा से और ये सब जितना लावांताज है वो हमने तो सिखा दे ला जा और
0: आप यही सलाह देबा कि मान लो कि चाहे थोड़ा जस्ती ध्यान देवे के लड़का के जब जन्म दिला तो जो 6 पहला महीना बा आप जस्ती अपन लड़का के ध्यान दा एगो पूरा ओकर जीवन बा ओकर सामने बाद में सकबा अपन काम काज में जस्ती जोर देवे लेकिन जब 9 महीना तक ई कष्ट सहला अपन गर्भ में एगो लड़का के रखे के तो और 6 महीना तक ओके पूरा ध्यान देवे में नहीं चाहिए हिचकिचाई के
2: हाँ ओके चाहेला अपन पूरा समय निकाल के बच्चा के साथ में रह के और ई में चाहेला जन घर के अलग परिवार जन बा चाहेला माँ के मदद करे के काम काज सब में कैसे ओकर पति जन हुवन उ सकियन बाबा के नापी सौजे करे जितना सदस्य बा ओकर हौसला बढ़ाई कि वो बच्चा के अपन दूध पियाए ओके लेता दे के जब ओके रेपो मिली
0: हाँ जब 6 महीना में खाली होके नहीं परी फचगे हो गए बल्कि सब कोई सहयोग दे और वो अच्छा समय बिताए बहुत ही सुंदर समय बिताए अपन चिबेबी संगे
2: हाँ ओके हाँ जब वो लोग सब सदस्य लोग

0: ओकर हौसला बढ़ाए तो ओकरो लौकुराजमा मिली कि वो प्यार से बच्चा के देखभाल करिए।
1: ज़रूर। और कार्यक्रम के अंत तक लगभग हमें आवत है जा। डॉक्टर साहब आप का बोलबा कि अभी जो विषय पर श्रीमती सुमेरी जी बोलन कि चाहेला लड़का के एगो औका लड़का के माँ के भी चाहे एगो औका दो माँ जब माँ लोग जन्म देवेलन जा तो एगो सैतो माइगो फिनोमेन है बेबी ब्लूज ढेर माँ लोग साइकोलॉजिकल समस्या से गुजरेलन जा अभी जन्म दिला एगो जीवन के बहुत बड़ा एगो पड़ाव है ओकर बाद माँ के खुद परेला अपन के संभाले के अपन इमोशंस अपन भावना अपन साइकोलॉजी पर ध्यान देवे के साथ में एगो नवा लड़का जब आलबा पहला हला एगो नवा माँ के गोदी में तो सब ओकर दुनिया ही बदल जला सब कुछ बदल जला ऐसन में माँ लोग के औका धर्मों पर आपका बोलबा।
2: जैसे हमने के मिडवाइफ जी बोलन हमने के एगो टीम हो तो हर हमेशा जब आवेलन गर्भवती माँ तो लोग के एडवाइस मिलेला और कहे बोल लोग के पौतने लोग के पति नानी दादी के आए के संगे जब ये सब एक्सप्लिकेशन से कब से दे जब जैसे बताई बेबी ब्लूज वो लोग भी समझ जान सा कि एगो बहुत एगो एगो कैसे बोलना सको फिजियोलॉजिकल चेंजेस होला है दे में जब वो लोग के हॉर्मोन सॉन्स होता और जब बेबी फेक नहीं होलवा तो हाई हॉर्मोनल चेंजेस से वो लोग के कबो कबो हाई बेबी ब्लूज लगेरा हो तभी खातिर अकादमा कैसे चना रहे के कि ओकर ख्याल रखिया ओकरा लिबियते द बेबे के खाली पियाए के जैसे ओकरा सफा करे के सौंझे करे के तो पति
1: सहायता कर द
2: हाँ पति सहायता कर दे ओकर जैसे बोलन सब बाद में जब चाहे ओकर गाज निकाल के जैसे थपथपावे लो छोरा तो ऊ ले ली हो सौजवा ओकर जैसे बा खाए पकाए के छ देखे के कि कोई बखत में ओकर खाए पकाए के कर दे नहीं कि बेबे भी देखी
1: जाए खाए के भी पकाए
2: और घर के भी देखी लुगा वो सब समझा तो ऐसे ना तो चाहे वो सब ऑर्गेनाइज कर देखे तो खान ना आना बुलाई ला सा एगो माजे एगो टीम नियन एक्सप्लेन कर ला सा कौन छाना करेगे और एगो अलग से बात है कि अगर जैन हो तो बच्चा देखे के तोहर पाशांस दस्ती बा जैसे जैसे तोहर लाश बढ़ल तो पाशांस कमती होगा ये देखल बा हमने के एक माने ऑब्जर्व कर लिया सर तो वही खातिर हमने के हो साइकोलॉजिकल मतलब माँ के हमने कैसे अंकुकाजे कर लिया सर कि चाहे ला बेबे के और पूरा लातों से देखे हाई 3 से 6 महीना तक पूरा जितना सके अगर काम करे के जंजाला तो वो एक दूसरा कैटेगरी में आवेला नहीं अगर घर के जन में रहेला माँ तो पूरा 6 महीना खाली ब्रेस्ट फीड करेंगे।
1: हम ये सुन ले है कि माँ जितना जवान रहेला ओकर में ममता के कमी रहेला जितना उम्र होला रहेला तो ओकर में ममता जस्ती है वो लड़का पर जस्ती ध्यान देवेला एकर पर का बोलबा।
2: ई हमनी के हमरा पेशेंट माने बुझाल बा क्योंकि जब एक एक जना स्वाजिया करता एगो एगो एगो एगो जवान माँ स्वाजिया करता माँ बने के तो डिजा ओकर साइकोलॉजिकल में बा कि हाँ कि अब एगो नवा जीवन के दे तो ओकर में ममता ओकर आवेला एगो चीज हमनी नहीं सकब सा एक्सप्लिके करे माजे माते माची
1: नहीं
2: एगो बायोलॉजी एगो नाचुए के चीज है एगो हाँ तो वही जो है वो लोग फार्मी के सिपो बहुत ऐप होता है और बस कि ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ऐप होता चीज है पहला कोंटाक है बच्चा के माँ से दुनिया से ब्रेस्ट फीडिंग तो ये छा बरकरार रखेगे।
1: और कार्यक्रम के समाप्ति तक अभी हम बढ़े बढ़त है जा सुमेरी जी आप कौन संदेश देबा आप जे एगो मिडवाइफ हवा आपके हमेशा संपर्क रहेला नवा माँ लोग से जे लोग के अभी बेबे हो ही होला बा जे लोग के बेबे अभी अभी हो गल बा आप कौन संदेश देबा लोग के ई जो सेंसिटाइजेशन कैंपेन चला था एकर कॉन्टेक्स में
0: हमने सब माँ लोग के बोलब जा कि अपन ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक और हो सकी तो और ज़्यादा जारी रखे के कहे खातिर इमें सब लावांताज बा।
1: और फिर आप लोग हेल्थ सेंटर में ये सब करे ला जा आजकल क्लिनिक के समय चला बा ढेर महिला लोग सकेला हेल्थ सेंटर नहीं जाते वन जा खत्म खातिर वो लोग क्लिनिक जान जा तो ऐसा मान लोग के कहाँ पर औका धुमा मिला था डॉक्टर साहब
2: तो ये सब हमने के एगो लीगल फ्रेमवर्क है जैसे बात सप्लीमेंट जो है वो लोग के एडवर्टीजमेंट उस सब बहरा में नहीं धुआ है और हमने के जो डॉक्टर वन सा प्रोफेशनल होन सा हमने के और जो हमने के पॉलिसी बा गवर्नमेंट पॉलिसी तो वो लागू
1: हो
2: सब अप्लीके होला कि
1: तो हूँ जाएगा आपके ये सब सलाह मशवरा मिली
2: हाँ एग्जैक्ट
1: जी
2: त तो ये समस्या नहीं है अभी
1: okay. मतलब जी हेल्थ केयर सेंटर नहीं जाता हुआ था तोरा ने सही सोचे के कुछ आते हुआ था
2: नहीं, नहीं,
1: आपके
2: नहीं,
1: मिली जहाँ जाता हुआ
2: हाँ, जहाँ जाता हो अपन पर्सनल डॉक्टर अपन पर्सनल स्पेशलिस्ट जनबा वो अब तोहर पूरा ख्याल रखे
1: अच्छा और अभी अंतिम में आप कौन संदेश देबा नवा माँ लोग के परिवार लोग के कौन चीज बोलबा
2: ब्रेस्ट फीडिंग जो ना उन्हें छना गो कैसे बोले गो कोविड जैसे बोलना
1: समस्या नहीं चाहिए
2: नहीं छना समस्या रहे के
1: एगो
2: समझे कि एगो एवेज चिस्मा हो तू अपन लड़का के शहद में और खुद के शहद में एवेस्टी करत हो तोहर लड़का के मालाजी नहीं हो मालाद नहीं एगो स्वस्थ बच्चा हो तोहर भी मालाजी के रिस्क कमती हो तो हर पर्सपेक्टिव में छाना देखे के और हमनी के छह हम कैसे बोलन सा वंश बढ़ाई के
1: जरूर
2: तो खाली एगो नहीं दो तीन छना
1: जरूर काहे नहीं डॉक्टर साहब आज आप अइला ये सब जानकारी देला ये सब सलाह मशवरा देला आपके बहुत बहुत धन्यवाद
2: धन्यवाद आपको
1: श्रीमती सुमेरी जी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों जना के बहुत बहुत शुभकामना आप लोग ये देश के ये समाज के ये दुनिया के नवा लड़का लोग के औकाधरे करे में लगल हवा जा आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामना
2: शुभकामना
1: नमस्ते
0: नमस्ते

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में इसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% बढ़ गई। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की पर्यावरण की स्थिति पर जानकारी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आई। स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन की प्रमुख शिक्षण अस्पतालों में से एक पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की गई है। इस सहयोग के तहत मॉरिशस को चीनी विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ मिलेगा, विशेष रूप से कुछ वैस्कुलर बीमारियों का पता लगाने और उपचार के क्षेत्र में। चीन के प्रोफेसर और विशेषज्ञ मॉरिशस आकर स्थानीय चिकित्सा टीमों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी देंगे, खासकर रेडियोलॉजी और न्यूरोलॉजिकल देखभाल जैसे विशेष क्षेत्रों में। इसके अलावा आवश्यक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं भी स्थापित की जाएगी तथा चीनी विश्वविद्यालयों के साथ सीधा सहयोग विकसित किया जाएगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ईडीएफ यानी एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से कर्मचारी 30 जून 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने वेतन से कर कटौती शुरू होने से पहले अपने कर संबंधी अधिकारों यानी कि टैक्स संबंधी अधिकारों का लाभ उठा सकती हैं। इस समय डिपेंडेंस व्यक्तियों के लिए कटौती और पहले 5 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन ने इटली से आने वाली

0: हवाई और समुद्र यात्राओं पर सीमा नियंत्रण लागू कर दिया है। ये कदम इटली द्वारा स्पेन से आने वाले लोगों पर इसी तरह की जांच शुरू करने के एक सप्ताह बाद उठाया गया है। दोनों देशों के बीच विवाद मोरक्को से करीब 78,000 प्रवासियों के स्पेन के सेउता पहुंचने के बाद बढ़ा। स्पेन ने इटली से जांच हटाने की मांग की है, लेकिन रोम ने इसे कम से कम 15 अगस्त तक जारी रखने की बात कही है। इटली ने कहा है कि सुरक्षा जोखिम खत्म होने तक वह अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड वालिता में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री अनुराग रामदोयाल जिन्हें संता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 3 बजे सेंट फिनेरिया दे मुरा पिछित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए श्री बेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन चिड़िया 3 PM अवनी पीजो प्लेजेंस रोजिल में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की बीबी हसन बीडोमा पैदाश नाम एस के हुसैन इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज 1:30 बजे इनके मकान प्लेजेंस रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल चिड़िया 1:30 PM हॉलीवुड नंबर एक वाकुआ में 83 साल के 83 ईयर्स ओल्ड के श्री बलकरण सीताहल जिन्हें धनराज के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन चिड़िया 1 PM रुई मागाजें विल्नुआ मेबर्ग में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री नवबत सिंह सियापत जिन्हें राजेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी सोमवार को सुबह 10 बजे उनके घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे एट 10 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv. Timeless Tarka.
2: RM2.
1: Timeless Tarka.

0: Seamless तड़का RM2
1: 10:11 हो चुके हैं और सुबह हो या दोपहर हमारे गाने तो हमेशा जागते रहते हैं। उठो, हिलो, डांस करो, क्योंकि टाइमलेस तड़का का 2 hours निकल गया, सिर्फ 1 hour रह गया। और इस टाइम में ही तो आपको पूरे दिन के काम की तैयारी करनी होती है, घर से बाहर जाना है, किसी क्रूज पे जाना है, किसी बोट पे जाना है, बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, आप कहाँ रह गए हो, क्यों रुके हुए हो, कहीं घूमने का प्लान करो, किसी दोस्त को फ़ोन करो, बिल्कुल घर में मत बैठो। सैटरडे का दिन हो और संडे, ये दोनों दिन ऐसे होते हैं ना कि इसमें आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। और जो लोग

0: हैं जिनको भाई ज़रूरत है, घर पे ही रहना है, उन्होंने लास्ट वीकेंड इंजॉय किया था, आज बस ये वीकेंड में थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं, तो बस क्या करना है, पैर हिलाइए, साथ में गाने सुनिए, थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, घर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करो, थोड़ी सी कारपेट को क्लीन कर लो, थोड़ा सा इधर से हिला दो उधर से हिला दो। कहते हैं कि जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हिल जाती हैं ना तो घर बड़ा सुंदर सा लगने लगता है और एहसास होता है अरे ये तो बस जैसे पहला था वैसे नहीं लग रहा है, आज थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद नहीं होनी चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए, ये टाइम आपका है। और अगर जो लोग इस समय जिम कर रहे हैं या जो लोग अपने घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या कोई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो ओल्ड हो रहे हैं और उनको थोड़ा सा कुछ मूड चेंज करना है, तो हम आपको इतना बोलेंगे गाने चलाओ, डांस करो, मस्ती करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा और जीने का एक मौका देता है, क्योंकि गाने हमेशा आपके साथ है, आपके प्यार के साथ है। इंजॉय कीजिए इस गाने को, धाकड़
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का।

0: to
1: Radio Musti.
2: शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाई इवेंट वर्क मैनेज्ड बाई राजस्थान वर्क्स
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Fashion Tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Timeless Tadka.
1: RM2.
2: 10:26 हो चुके हैं दोस्तों, ठंड आ गई है, तो स्वेटर्स और जैकेट्स भी अलमारी से बाहर आ ही गए होंगे, लेकिन ज़रा देखिए कहीं उन पर छोटे छोटे से रुएं, जिसे हम छोटे छोटे से बॉल्स बोलते हैं, लिंट बोलते हैं, तो वो तो नहीं निकल गए हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जो क्वालिटी होती है बहुत बढ़िया होती है, पर फिर भी वो नेचुरल होते हैं, और जब वो आ जाते हैं वो लिंट्स, तो थोड़े से बुरे लगते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि ज़्यादा दम नहीं लगाना है, आपको एक लिंट रोलर लेना है और उस पर हल्का सा चलाना है, आप देखेंगे कि वो रुएँ अपने आप उतर जाते हैं। बट अगर उस पर छोटी छोटी सी बॉल्स आ गई हैं, छोटे छोटे से वो जो लिंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक छोटी छोटी सी बॉल बन जाती है, और कई बार वो जो स्वेटर्स होते हैं

0: या उनको हम पहनकर सो जाते हैं तो मोस्टली तब आते हैं। अगर आप उसको आप वैसे ही रखेंगे तो नहीं आएगा, पर जब आप सो जाते हैं उस स्वेटर को पहन के तो उसमें थोड़े से रुएं इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, वो बहुत बुरे लगते हैं और थोड़े से खरखरे से हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जिससे आप बियर्ड बनाते हैं यानी कि शेवर, वो लीजिए, जिसे दाढ़ी बनाते हैं वो शेवर लीजिए और अपने क्लॉथ को थोड़ा सा टाइट कीजिए और उस पर हल्का सा एक दो बार चलाएंगे तो वो जो हल्के से जो बॉल्स बने हुए हैं वो हल्के हल्के से हिल जाएंगे, कट जाएंगे। और बस उसको पहले आप थोड़ी सी ऐसी जगह पर ट्राई करिएगा जहाँ पर आपको मतलब छोटा सा पीस हो क्लॉथ का, वहाँ पर ट्राई कीजिए। जब आप वो निकल जाए तो आप उसको पूरे अपने, जैसे कई बार लोगों के पजामाज होते हैं उस पर भी आ जाते हैं तो वो थोड़े से बुरे लगते हैं, आप उसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। बस शेवर यूज़ कीजिए और आपका ये जो कहते हैं ना, ये जो टिप है बहुत काम आती है। लेडीज़ को बहुत चीज़ें ये चीज़ों की पता होती है, बट हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो मेल्स हैं उनको नहीं पता होती। तो पर अगर आपके घर में कोई फीमेल नहीं है तो हम हैं आपको बताने के लिए। तो शेवर ट्राई कीजिए, लिंट रोलर ट्राई कीजिए या थोड़ी सी बड़ी सी चौड़ी सी टेप भी ले सकते हैं, उससे भी अगर आप हाथ में अपने लपेटेंगे और धीरे धीरे करेंगे उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो वो लिंट्स निकल जाते हैं। तो एंजॉय कीजिए रेस्ट ऑफ द शो।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2।
2: क्या बात है, जब ये साउंड बजती है ना तो सबको एहसास हो जाता है या तो कोई आरजे बोलने वाला है या कोई गेम स्टार्ट होने वाली है। तो भाई हम क्यों आपको ना बताएं कि अब कौन सी गेम है, तो चलिए तैयार हो जाइए क्योंकि RM2 रेडियो मस्ती और राजस्थान वर्क्स लिमिटेड लेकर आए हैं आपके लिए मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का एक शानदार गेम। आज आपके पास है मौका जीतने का 4 एंट्री टिकट्स और जेंट्स लिटिल इंडिया की तरफ से 1 फूड कूपन जो कि शाही थाली है। और शाही थाली में तो आपको पता ही है कि कितनी सारी चीज़ें होती है, कितनी सारी वैरायटी होती है और पूरे परिवार के साथ आपको पहुंचना है 12 से 16 अगस्त यानी कि 12-16 अगस्त तक SVICC पाए जहां आपका इंतजार कर रहा है उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल पावर्ड बाय SBI NLIC। वहां मिलेगा इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंटरटेनमेंट शो, मैजिक शो, फैशन शो, इंडियन आइडल से जुड़े हुए गायक जो हैं प्रणय जैन जो कि लाइव परफॉर्मेंस देंगे, बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर की स्पेशल अपीयरेंस होगी, कानमा शो होगा और बहुत सारे फूड फेस्टिवल लगने वाले हैं, बहुत सारे

अलग अलग तरह के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग मॉरिशस के, अलग अलग जगहों के बहुत सारे खाने को डिशेज़ आपको मिलेंगी, पर आपको हमारे साथ गेम खेलना है इस चीज़ के लिए। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है कि विदाउट गेम तो हम आपको ये दे नहीं सकते, पर सबसे पहले आपको ये देना है, आंसर देने से पहले आपको बहुत अच्छे

0: सेकेंड ब्लड डोनेशन कैंप, थर्ड आई चेकअप कैंप होगा। जो सही जवाब देगा उसको हम लकी विनर बनाएंगे। रेडियो मस्ती आपके साथ है 24 आवर्स, इंजॉय कीजिए। दो गानों के बाद हम आंसर देंगे कौन हमारा विनर बना। फटाफट से भेजिए अपना आंसर।
1: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de Nature's Juice à 76,95 et le pack de 24 rouleaux de papier toilette Winners à 369,95. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
2: On est tous Winners!
3: RM2
4: Radio Mustache.

0: सीमलेस तड़का
1: RM2
2: 10:45 हो चुके हैं और हमने गेम खेल ली और आपने आंसर दे दिए और जो भी आंसर्स दिए उसमें हमने जो गेम खेली थी पहले तो उसकी बात करते हैं, फिर हम विनर की बात करेंगे और आपने क्या जीता है वो भी हम बताएंगे आपको। तो RM2 रेडियो मस्ती और राजस्थान वर्क्स लिमिटेड लेकर आए थे आपके लिए मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का एक शानदार गेम और आपके पास मौका था जीतने का 4 entry tickets जो कि जेंट्स लिटिल इंडिया की तरफ से था और 1 food coupon शाही थाली। शाही थाली के अंदर बहुत सी वैरायटी होती है जिसमें बहुत सारे खाने होते हैं, फ्लेवर होते हैं, डिशेस होते हैं और आप पूरे परिवार के साथ पहुंचेंगे 12 से 16 अगस्त यानी 12 टू 16th ऑफ अगस्त SVICCPI जहां आपका इंतज़ार हो रहा है उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। वहां मिलेगा इंटरनेशनल शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, इंडियन आइडल से जुड़े हुए गायक जो कि प्रणय जैन है वो भी अपनी लाइव परफॉर्मेंस देंगे, बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर की भी स्पेशल अपेयरेंस होगी और कानमा शो होगा और उसमें हमने एक आपसे स्पेशल चीज़ पूछी थी और बहुत सारा फेस्टिवल होने वाला, बहुत सारे खाने होने वाले हैं और उसमें से हमारा एक छोटा सा सवाल था बहुत ही प्यारा सा कि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल में जो मनोरंजन होगा उसमें एक नेक काम होने जा रहा है वो कैंप का नाम क्या है। पहला हमने पूछा था हेल्थ चेकअप कैंप, सेकेंड पूछा था ब्लड डोनेशन कैंप, थर्ड पूछा था आई चेकअप कैंप। आप इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, मैं क्या बताऊँ, आप सब लोग लगता है मुझे कि बहुत ध्यान से हर चीज़ सुनते हैं और बहुत तरीके से मतलब आंसर्स देते हैं, बट हमने जीतना तो एक ही था ना, तो जीत लिया हमने, उसका नाम है

0: सारे जने अपने लिए बजाइए तालियां, क्योंकि आप सब ने खेला है और बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया है, पर हमारे जो ड्रॉ है उसके अंदर तो एक ने जीता है। उनका नाम है, यस फरीन। फरीन ने जीता है 4 एंट्री टिकट्स और एक शाही थाली। इंजॉय कीजिए अपने गानों को और कांग्रेचुलेशंस टू यू डियर। और आप सभी का जो भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ में, हमारी रेडियो मस्ती के साथ में गानों के साथ में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स एंड वाउचर्स मिलते हैं, उसके लिए इंजॉय करते रहिए साथ में। आप बिल्कुल दिल को छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे दिन सभी आरजेस आपके लिए बार बार कोई ना कोई गेम्स लेकर आएंगे। तो इंजॉय कीजिए इस गाने को और साथ में जुड़े रहें फरीन के साथ।
1: Timeless Tadka.
2: RM2.
1: Timeless Tadka.

तो दोस्तों 3 आवर्स पे भी प्रोग्राम यानी कि टाइमलेस तड़का आपका ख़त्म होता है। थोड़ा सा डांस किया, थोड़े से गाने गाए और बहुत सारी एनर्जी ली। बाहर ठंड है, अपना ख्याल रखिएगा, स्वेटर जैकेट या कैप अपने साथ रखिएगा। आज की सुबह मस्त रही थी आपकी भी, मुझे लगता है उम्मीद है मस्त हुई होगी। टाइमलेस तड़का कल फिर मिलेगा आपको, पर मैं थी आपके साथ पूनम, मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है नीलमणि का। इन्जॉय कीजिएगा, बट उससे पहले आपको मिलेगा न्यूज़।

0: सुबह के 11:01 हो चुका है। आप सुन रहे हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से कर्मचारी 30 जून 2027 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए अपने वेतन से कर कटौती शुरू होने से पहले अपने कर संबंधी अधिकारों का लाभ उठा सकती हैं। इस समय डिपेंडेंस व्यक्तियों के लिए कटौती और पहले 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। हर साल मॉरिशस में स्ट्रोक के 4000 से अधिक मामले सामने आते हैं। इन मरीजों में से एक तिहाई की इस बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जबकि अन्य मरीजों में आंशिक या पूर्ण लकवे जैसी गंभीर समस्याएं रह सकती हैं। स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों का सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए चीन के जनवादी गणराज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन दान करने के साथ साथ मॉरिशस के डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। मॉरिशस के 2 न्यूरोसर्जन और 2 इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी

0: थर्ड हॉस्पिटल में इस उपकरण के इस्तेमाल और ऐसी चिकित्सकीय प्रक्रियाओं को करने का प्रशिक्षण पहले ही ले चुके हैं। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में इसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% बढ़ गई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की पर्यावरण की स्थिति पर जारी हाल की रिपोर्ट में सामने आई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात भर हुए रूसी मिसाइल हमलों में एक बच्चे समेत कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। हमलों में कई इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा, जबकि 3 लोग घायल हुए। ये हमला यूक्रेन में हालिया रूसी हमलों में 21 लोगों की मौत के कुछ दिन बाद हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की राजधानी बेलग्रेड पहुंचे हैं सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंचे हैं। ये उनकी पहली सर्बिया यात्रा है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए बढ़ते अमशोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। कौन आकाशिया पोस्ट दिफ्ला
1: Radio Mauritius. Silver Nera. Silver Nera.

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं कुछ विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कालबासा तथा अर्सेनाल के रहने वालों को, विशेषकर मालाकोफ स्ट्रीट, अर्सेनाल गवर्नमेंट स्कूल, फिलिंग शेल और एमटेल के पास के रहने वालों को सूचित करता है कि कल रविवार 9 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ सीबी अमिचिए, बॉलो, गोकुला, बेल्विमोरेल और मोलवाजिया के रहने वालों को सूचित करता है कि कल रविवार 9 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सभी मरम्मत कार्यों के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: बाला

बालानंदम बालानंदम मन पिल्ललु इंटी चिरुनव्वुलु पिल्ललु उन्न चोटे निजमेन आनंदम अलागे पिल्लल नव्वुलो स्वे

नमस्कार, इस समय 2:15 है। हमारा आपके साथ रेडियो मर्चेंट्स पर, हम हैं सुरेखा आपके साथ, बैठे हैं हम आपके साथ, महफिल सजाए हुए हैं हम, और हमारी आपकी ये मुलाकात होने वाली है अभी से, यानी कि 2:15 से 4 बजे तक। और इस साथ के दौरान हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी पसंद कार्यक्रम, और दिल में यही दुआएं लेकर आए हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, सेहत आपकी बहुत अच्छी होगी और मूड भी आपका बहुत अच्छा होगा, हंसना मुस्कुराना आपके जीवन का हिस्सा बन गया होगा, यही हमारी उम्मीद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आपकी पसंद कार्यक्रम की। आपकी पसंद कार्यक्रम में बेशक आप अपनी पसंद जाहिर कीजिएगा, फ़ोन करना चाहेंगे तो 4028085 पर फ़ोन कीजिएगा, बताइएगा कौन सा गाना आप सुनना चाह रहे हैं, और यही बताना चाहेंगे आप अगर मैसेजेस के ज़रिए तो 5251705 है नंबर हमारा, और इन्हीं नंबरों पर आप हमसे संपर्क कीजिएगा और बताइएगा कौन सा गाना आप सुनना चाह रहे हैं। और फिलहाल तो हम सुनवाना चाह रहे हैं आपको चमत्कार मूवी का ये गाना।

शुक्रिया। तो हम कहेंगे आपको आपके मैसेजेस के लिए, आपकी कॉल्स के लिए। आपके पसंद कार्यक्रम में आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस ही जान डाल देते हैं और आप की बदौलत ये कार्यक्रम खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस पार्टिसिपेशन के लिए। चलिए ज़रा हम पेश करते हैं पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश जनता हवलदार मूवी की है। इस गाने की फरमाइश की है धानी जी ने बॉशेरी से यश और हेमिश के लिए। तो चलिए सुनते हैं अनवर की आवाज़।

0: और चलिए जरा मस्ताना मूवी के गाने की ओर चलते हैं, जिसकी फरमाइश नौथदाम से रेहाना जी ने की है माला फौदार के लिए और प्यारी ननद सुरेखा के लिए। उन्होंने ये गाना बड़े प्यार से अपनी सहेलियों के लिए मांगा है और बड़े दुलार से इस गाने की फरमाइश की है अपने पूरे परिवार के लिए।
1: उठा, मगर बहनों भाइयों, आप भी मुस्कुरा रहे हैं या नहीं? ओह भाई, ये मैंने तो इस तरह से पूछा जैसे सिबा का गीतमाला के रेडियो प्रोग्राम में पूछा करता हूँ। सिबा का गीतमाला जो श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से बचता रहा 1952 से लेकर 2 जनवरी 1992 तक, और हर सोमवार की शाम 8 से 8:30 बजे तक यही प्रोग्राम विविध भारती के कई स्टेशनों से भी गूंजता है। बहरहाल अब गूंजेगा 1955 के वार्षिक पायदान नंबर 14 का गाना, याद है?

बस भूलने वाली बातें जो नहीं जो होती है, जो न भूलने वाली बातें होती हैं, बल्कि उन्हें दिल में बसा लेते हैं हम। कभी भी ये यादों के सहारे हम इन्हें जी लेते हैं। तो चलिए, यादों को अपने दिल में संजोए रखिएगा, क्योंकि ये यादें ही होती हैं जो हंसी लम्हों को ख़त्म होने ही नहीं देती। 2:37 हुए हैं आपके पसंद कार्यक्रम में। आपको हम प्यार का सागर मूवी का गाना सुनवाएंगे नुवेल फ्रांस की गायत्री जी की तरफ से। गायत्री जी ये गाना अपने बेटे अजय के लिए मांग रही हैं और मेबक की मामी कल्याणी मोहन जी के लिए, मोताइलोंग की भाभी शकुंतला जी के लिए और फिर नुवेल फ्रांस की सखी गीता बाई के लिए।

प्यार की जिंदगी जो देता है प्यार उन्हें भी मिलता है। बस एक बार बांटिए 100 बार मिलेगा प्यार आपको। आप जरूर इस बात पे ध्यान रखिएगा कि जहाँ प्यार बांटा जाता है वहीं पर प्यार डबल होता जाता है। इस बार हम विश्वानी जी की तरफ से गाना पेश करेंगे और ये गाना होगा सैनिक मूवी से लिया गया। विश्वानी जी ने वाकवा से हमें मैसेज किया है और उनकी तरफ से उनकी बहनों के लिए इंदिरा शारदा के लिए और उनकी सहेलियों के लिए नीला और प्रतिभा के लिए ये गाना हम पेश करेंगे। साथ साथ उन्होंने यही गाना मांगा है शोभा जी के लिए और गीता गजाधर जी के लिए।

और चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम में हम इस बार आपको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये गाना सुनवाते हैं। ये गाना हमने लिया है वल्लाह क्या बात है मूवी से, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं वाकवा के नंदलाल जी के लिए।

0: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: तो ये है मिलन मूवी का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में. ये है गाना सुनैना जी के लिए जो बिलिया की रहने वाली है. इस गाने के साथ साथ हम थोड़ा सा रोकेंगे हमारे कार्यक्रमों को, हमारे आपकी पसंद कार्यक्रम को, और 3 बजे आप सुन पाएंगे आज के संस्कृत समाचार. और ऐसे में आप संस्कृत समाचारों के बाद आपकी पसंद कार्यक्रम आगे सुन पाएंगे.

0: द्वारा आज सुबह पोटली स्थित सन ट्रस्ट बिल्डिंग में एमएसएम ने एक प्रेस सम्मेलन लगाया। जूली जोंगर ने राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की फ्लक में हुई हालिया जुटाव, संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्ष के नेता की नियुक्ति और वेरोनिक लोगोविन का इस्तीफा शामिल था। आज सुबह इबन में प्रेस से मुलाकात करते हुए पुल बेहोंशे ने विपक्ष के नेता के रूप में चेतन बाबूलाल की नियुक्ति पर टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुसार ये निर्णय गणराज्य के राष्ट्रपति का होता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जोआना बेहोंशे को विपक्ष की व्हिप के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। फॉर्मिलिटा प्रोग्रेसिस के नेता ने संस्थागत संवाद पर आधारित शासन करने के एक नए तरीके की इच्छा जताई है। मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए विषयों, लोअर सेकेंडरी में अधिक विकल्पों और तकनीकी धाराओं के विकास पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। मीडिया रिव्यू के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय, मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक रणनीतिक बैठक में इन विचारों पर चर्चा की गई। और विदेश में भारत में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। दिल्ली गुरुग्राम में जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी और बिहार सहित 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: तो इस समय 3:02 हो चुके हैं। 3:02 पर हम आगे बढ़ाएंगे आपकी पसंद कार्यक्रम को और 4 बजे तक ये प्रोग्राम ले चलेंगे हम। आप अपनी फरमाइशें जारी रखिएगा। फरमाइशों की एक लिस्ट हमारे पास है और आगे बढ़ाएंगे लिस्ट को आपकी फरमाइशों पर, आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस के आधार पर। फिलहाल तो चलिए हम ज़रा बढ़ते हैं फरमाइशी गानों के इस प्रोग्राम में आपकी पसंद के गाने पेश करते हुए। अभी हम जो गाना पेश करेंगे वो होगा मुकेश की आवाज़ का गाना और ये गाना हम पर बजवा रहे हैं आपके लिए। घर परिवार मूवी से लिया गया है। इसकी फरमाइश कांगुस्त के विजय जी ने की है और विजय जी ने ये गाना मांगा है पूरे मुनिया परिवार के लिए जो कांगुस्त के रहने वाले हैं।
3: समय का उड़ता पंछी जिसको

तो बस हम बात ही कर रहे हैं हमारे श्रोताओं से, और फिलहाल जो गाना हम सुनवाएंगे आपको वो होगा रन मूवी से लिया गया, और रन मूवी का ये गाना हम पेश करते हैं मौदालबे की अनीता जी की तरफ से। मौदालबे की अनीता जी ने ये गाना मांगा है अपने पूरे परिवार के लिए, कविता, अमृता और करुणा के लिए। तो चलिए ज़रा सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें।

और चलिए जरा हम बढ़ते हैं आगे और पेश करते हैं विद्यानंद जी की पसंद का गाना। बाबुल मूवी से लिया गया ये गाना है, जी नहीं, बादल मूवी से लिया गया ये गाना है। विद्यानंद जी ने इस गाने की फरमाइश की है मेबर्ग से। सोहंती जी के लिए अमित, शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, राजीव, स्वीटी, हरवेश के लिए, और शिवाला लेन मेबर्ग के अपने मित्र विष्णु गजाधर जी के लिए, और अपनी बहन बिंदु कालीचंद जी के लिए।

0: 18 and 19 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: और चलिए जरा पाकीज़ा मूवी का ये गाना सुनते हैं शोभा जी की तरफ से। पॉपुलर मूवी शोभा जी ने ये गाना सुनना चाहा है अपने पूरे परिवार के लिए और अपने सभी दोस्तों के लिए, मांगा उन्हें ये गाना।

0: चलते चलते अब चलिए जरा हम सावन के महीने की वजह से सावन का ये गाना पेश करते हैं मिलन मूवी का। नीता जी ने सैशुलिया विलाज से इस गाने की फरमाइश की है पूरे खेतनी परिवार के लिए।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ जिया रे झूमे से जैसे बन माना छे मोर।
1: यही गाना हम पेश करते हैं गाँव गुप की सुनीता जी के लिए और उनकी बहन अनीता अमिता जी के लिए।

और चलिए बढ़ जाते हैं हम फिल्म गुमनाम के गाने की ओर। ये गाना हम पेश करते हैं लाल माटी की सुनीता जी के लिए और उनके पति के लिए, और इसी गाने की फरमाइश सुदेवी जी ने की है थयोले की दीदी ललिता और कुशल फैमिली के लिए, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, बिंदु के लिए, माला, जयश्री के लिए, फिर मालेगा के कृषय, कृष्णी, प्रणीता और राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार, कुवाहू, रघुबर और जालू परिवार के लिए।

तो चलिए बढ़ जाए आगे और बढ़ते हुए हम पेश करें आपको लिए अपना देश मूवी का गाना। अपना देश मूवी का ये गीत आप सुनिएगा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में दिलीप जी की पसंद पर। कुंगुमा के दिलीप जी ने ये गाना नाम किया है। संगीता जी के योगेश, कविता किशनवी, मनशा, इंदिरा और दानंद जी के। और यही गाना हम पेश करते हैं देवी जी के नाम। यही गाना हम पेश करते हैं थ्रियोले के बंधु परिवार के नाम। उर्रा!

0: और अब हम जहाँ चलेंगे वहाँ आपको आपके लिए पेश करेंगे फिल्म मेरा नाम जोकर का गाना।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
0: सो रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिमन नाडी की आवाज़, और आप सुनेंगे अभिमन नाडी की आवाज़, सुन रहे हैं म्यूज़िक मेरा नाम जोकर मूवी का। और ये गाना हम पेश कर रहे हैं नोएल फॉन्स के कुलैन जी के लिए और उनके दोस्तों उनके परिवारों के लिए। फिर हम यही गाना फिनिक्स की रेहाना जी के लिए भी पेश कर रहे हैं।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

और अब चलिए जरा हम शंकर जी का नाम लेते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज में सुनते हैं शंकर जी वाला ये गाना। बैराग मूवी से लिया गया और ये गाना हम उषा जी की तरफ से बजवा रहे हैं उनकी तीन बहनों के लिए, उनके पांच भाइयों के लिए और पूरे इसी धारी परिवार के लिए।

0: एनबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: इस समय 3:55 हुए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लालमाटी के रॉयल रोड के

आसपास के निवासियों को और CWA के आसपास के निवासियों को सूचित करता है कि ओवरसीज रोड जानकी प्रसाद लेन प्रोग लेन सिटी EDC, Moselman VRS, NHDC और सीमेटियर दे बोबोआ और आसपास की गलियों में कल रविवार 9 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। अब पेश करते हैं हम आपकी पसंद कार्यक्रम का अंतिम गाना, जिसे हमने बाबुल मूवी से लिया है। इस गाने की फरमाइश करने वाली हैं जैबून जी पोंफाले से। उन्होंने ये गाना अपने शौहर के लिए मांगा है, अपने 4 बेटों के लिए और बहुओं के लिए, और यही गाना उन्होंने मांगा है जहरबी, फैजुल्ला, निहाद, नगमा, उर्फा, हिदायत के लिए, भाई आज़ाद के लिए, भाभी जैबून के लिए और पूरे परिवार के लिए। और ये गाना हम याद दिला दें आपको, बाबुल मूवी से लिया गया है।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सहित हो जाएं जब दो मन, साहित्य का तब हो सृजन, संवेदनाओं को दे आधार, साहित्य जोड़े दिलों के तार। साहित्य दर्पण श्रीमती अंजू गर्बरन की प्रस्तुति में।

सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। आप सब अच्छे होंगे, श्रावण मास में पूजा पाठ से आनंद उठा रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं साहित्य भी उसी का हिस्सा है। और उम्मीद करते हैं कि सभी श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं खूब स्वस्थ और आनंदमय होंगे। श्रोताओं, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जीवन में जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, पर कभी कभी छोटी सी बात भी एक बड़ा निर्णय लेने के लिए आमादा करती है, और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना भी आवश्यक होता है। आज हम महाभारत से दो प्रसंग आपके साथ साझा करेंगे जिस पर आप चिंतन करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें फोन द्वारा हमें। तो चलिए मैं एक पहला प्रसंग शुरू करती हूँ। महाभारत का युद्ध जारी था, भीष्म और द्रोणाचार्य का वध हो चुका था और सेनाध्यक्ष पद की बागडोर दुर्योधन ने कर्ण को सौंपी थी। उसके रण कौशल के सामने पांडव सेना के छक्के छूटने लगे। स्वयं अर्जुन भी हतोत्साहित हो गया था, किंतु कर्ण का दुर्भाग्य कहिए या परशुराम का श्राप, कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। यह देख कर्ण तत्काल रथ से कूदा और उसे निकाल

संभालने की कोशिश में लग गया। श्री कृष्ण ने कर्ण की यह स्थिति देख अर्जुन को उस पर बाण वर्षा जारी करने का इशारा किया। अर्जुन ने उनके निर्देशों का पालन किया जिससे कर्ण बाणों के आघात को सहन ना कर सका। वह अर्जुन से बोला, मां धरुंधर थोड़ी देर रुक जाओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरा ध्यान रथ का पहिया निकालने में जुटा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि जो योद्धा रथ विहीन हो, जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हों, या जो निहत्था हो, युद्ध रोकने की प्रार्थना कर रहा हो, ऐसे योद्धा पर धर्म युद्ध के ज्ञाता और शूरवीर शस्त्र प्रहार नहीं करते। इसलिए महाबहो, जब तक मैं इस पहिये को ना निकालूं, मुझ पर प्रहार ना करो, क्योंकि यह धर्म के अनुकूल नहीं होगा। कर्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह उपदेश श्री कृष्ण को शूल की तरह चुभा। वे कर्ण से बोले, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज धर्म याद आ रहा है। सच है कि जब नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ता है तो उसे अपने कुकर्मों की याद तो नहीं आती, मगर दूसरों के धर्मोपदेश देने का विचार अवश्य आता है। उचित होता तुमने अपने धूर्त कर्मों और पापों का विचार किया होता। हे महावीर कर्ण, जब दुर्योधन के साथ मिलकर तुम पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया, भीष्म को खत्म करने के इरादे से विष दिलवाया, 13 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी पांडवों को राज्य नहीं दिया, द्रौपदी का चीरहरण करवाया, निहत्थे अभिमन्यु को तुम्हारे समेत 7 महारथियों ने मारा, तब तुम्हारा धर्म ज्ञान कहाँ गया था? क्या तुम्हें तब धर्म पालन की विस्मृति हो गई थी? कर्ण को इसका उत्तर देते ना बना। वह अर्जुन पर बाण वर्षा के सामने टिक ना सका और धराशाही हो गया। श्रोताओं, जब हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर भी उठती हैं। तो इस छोटे से प्रेरक प्रसंग से आपने क्या सीखा, आपने क्या पाया, ये आप फ़ोन कॉल द्वारा मुझे बताएंगे। और आज का दूसरा प्रसंग शुरू करने से पहले एक गीत के साथ यज, जो आप तक ये टेक्निकल सहायता से कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं, गीत सुनते हैं, फिर इसके बाद चर्चा जारी रहेगी एक दूसरे प्रसंग के साथ।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: हेलो, आज कार्यक्रम में पहले श्रोता जो जुड़े हैं, हम उनका नाम जानना चाहेंगे। हेलो।
1: हाँ बेटी।
0: नमस्ते नानी, कैसन हो?
1: नमस्ते बेटी। आज गला तनको ने छावा बेटी, कैसे एगो भजन गावे के भक्ति पर।
0: हाँ बोलो, सुना सुनी ला
1: जा। गला ने छावा से
0: सावन के महीना बा, भजन तो चाही सुने के ना।
1: जैसे धरे पहाड़ भक्त पर, जैसे धरे पहाड़ भक्त पर, खम्भाही फरी हरी नाकुश मारे कबधरी है रघुनंदन हमारी, कबधरी है दीननाथ हमारी। जैसे धरे भीषण के ऊपर, जैसे धरे भीषण के सेत बांधी लंका पति मारो, कब धरी है रघुनंदन हमारी, कब धरी है रघुनंदन हमार। जैसे धरे द्रौपति सुता पर, जैसे धरे द्रौपति सुता, घीच चीर दुशासन के हार, कब धरी है रघुनंदन हमारी, कब धरी है दीननाथ हमारी, कब धरी है रघुनंदन हमारी।
0: देख ला कैसन जोली से गईला, सुंदर गीत सुनैला हमनी के।
1: ई भक्ति भजन है बेटी।
0: हाँ, बहुत जोली से सुनैला, जब द्रौपदी के चीरहरण के बाद चला लूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्रोताओं। ऐसे प्रेरक प्रसंग जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने बच्चों के साथ बांटते हैं,

0: उसमें एक शिक्षा रहती है, जैसे कि जो अभी प्रेरक प्रसंग मैंने आपके साथ साझा किया उसमें धर्म पालन की बात कितनी सुंदरता से बताई गई कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता तो सकता है कि धर्म पालन ये है वो है, पर स्वयं धर्म का पालन करना भी आवश्यक होता है। चलिए, जब तक कोई श्रोता नहीं जुड़ता है तो हम एक दूसरा प्रसंग लेते हैं, वो भी महाभारत का ही प्रसंग है। दुर्योधन को किसी शत्रु द्वारा बंदी बनाए जाने की खबर सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने भीम से दुर्योधन को छुड़ा लाने को कहा। भीम इस पर आदेश को सुन नाराज हो गया, बोला, भैया आप मुझे ऐसी आज्ञा दे रहे हैं जो आपको ही शोभा नहीं देती है। आप मुझे उस पापी को छुड़ा लाने को कह रहे हैं जिसके कारण हम आज इस विपदावस्था में हैं, जिस अधम ने न्याय अन्याय नीति अनीति का विचार किए बिना हमें कहीं का नहीं रख छोड़ा है, जिस पापात्मा ने अपनी भाभी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया है, उस नारकीय कीड़े के प्रति इतनी मोह ममता रखते हुए आपको कुछ भी ग्लानी नहीं महसूस होती। धर्मराज, भीम के कटु और रोष भरे शब्द सुनकर युधिष्ठिर चुप हो गए और उन्होंने सिर नीचा कर लिया। अर्जुन भी वहां उपस्थित था, उसे यह समझने में देर ना लगी कि युधिष्ठिर आंतरिक वेदना से व्याकुल हैं। बिना कुछ बोले अपना गांडीव धनुष उठाकर वे वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में उसने लौटकर दुर्योधन को मुक्त करने तथा शत्रु का वध करने की खबर युधिष्ठिर को सुनाई। एक फोन कॉल है, हम लेते हैं, उसके बाद ये प्रसंग पूरा करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो दीदी, मैं हूँ राधा मोचिदा से।
0: राधा जी प्रणाम, कैसी हैं?
1: प्रणाम दीदी, आपको भी प्रणाम मेरा। मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक।
1: हाँ, आप जब प्रसंग सुना रही हैं महाभारत का
0: जी,
1: तो मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था किसी कथा में कि उन कथा में ये कथावाचक बोल रहे थे, जब वो युद्ध वो क्या कहते हैं जुआ का खेल प्रारंभ होने वाला था
0: जी, चौसर,
1: तो हाँ
0: जी,
1: तो दुर्योधन ने वो अपने मामा शकुनी से मदद मांगी थी
0: जी,
1: उनकी तरफ से शकुनी जी ये वो खेलने आए, वो खेलेंगे उनकी तरफ से। तो उन लोगों ने कहा था महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि दुर्योधन युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे
0: जी,
1: उनसे जब पूछा गया था कि आप लोगों की तरफ से कौन खेलेगा, यदि उस समय कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा था कि युधिष्ठिर यदि उस समय कहते कि हमारी तरफ से कृष्ण लड़ेंगे, कृष्ण खेलेंगे, तो ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता
0: जी।
1: लेकिन युधिष्ठिर ने उस समय कुछ नहीं कहा
0: जी,
1: और चौसर में उन लोगों की हार हो गई और उसमें
0: और दुर्योधन ने अपने मामा को चयनित किया था पासे फेंकने के लिए।
1: हाँ, पासे फेंकने के लिए। अगर उसी समय युधिष्ठिर ने कहा होता कि हमारी तरफ ये प्रश्न उन लोगों की तरफ से द्रौपदी ने कहा था कि यदि उस समय आप लोगों ने कहा होता कि मेरे सखा कृष्ण हमारी तरफ से खेलेंगे
0: जी,
1: तो ये महाभारत युद्ध आज कभी नहीं होता। लेकिन युधिष्ठिर जी ने ऐसा नहीं किया और महाभारत का युद्ध हुआ और आज तक ये युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। हर बात में लोग कहते हैं महाभारत, महाभारत केवल उस समय का युद्ध नहीं है दीदी,
0: आज भी
1: हमारे जीवन में है महाभारत,
0: हमारे अंतर मन में महाभारत चलता ही रहता
1: चल रहा है। हम प्रतिदिन युद्ध हो रहा है हमारे अंतरात्मा में,
0: हमें अपने आप को सशक्त बनाना है उस महाभारत को जीतने के लिए।
1: और हमको अर्जुन बनना है और कृष्ण के द्वारा जो सीखी गीता का ज्ञान उन लोगों ने दिया है उसको अपने जीवन में उतारना है। ताकि ये सब न हो। और ये भी एक बात है, ये आपने जो कहा हम एक उंगली एक किसी की उठाते हैं तो तीन उंगली हमारी तरफ होती है, ये बिल्कुल सच है।

0: क्योंकि देखिए हम दूसरों की गलती तो हम बहुत जल्दी बता देते
1: पकड़
0: हैं,
1: लेते
0: हम
1: हैं।
0: हाँ
1: दूसरों को
0: लेकिन
1: उपदेश देना भी आसान है, खुद
0: आसान
1: पर लागू
0: है
1: करना मुश्किल
0: हाँ,
1: है।
0: हाँ वो बहुत, किसे कहते हैं ना कि दूसरों को भाषण देना वो तो आसान है, कहीं
1: बहुत
0: भी
1: आसान है।
0: भाषण दे
1: दूसरों
0: सकते
1: को
0: हैं,
1: ज्ञान
0: लेकिन
1: देना बड़ा आसान है, खुद पर वो ज्ञान लागू हो, आपकी अंतरात्मा उसको सहे, तब आप
0: हाँ
1: जान पाते हैं कि हम असल में क्या हैं।
0: क्या है, क्योंकि गलती हम भी करते हैं, हम सब तो
1: बिल्कुल
0: मनुष्य ही है ना,
1: बिल्कुल
0: गलती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमारी गलती हमको नजर नहीं आती, लेकिन दूसरों की गलती हमको बहुत जल्दी नजर आ जाती
1: इसीलिए तो
0: है ये।
1: दर्पण देखना आवश्यक होता है।
0: हाँ हाँ ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है।
1: रोज हम आईना देखे तो बहुत कुछ सीखते हैं,
0: बहुत कुछ
1: केवल
0: सीखने को
1: श्रृंगार
0: मिलता
1: के
0: है,
1: लिए नहीं है, अपने आप को देखना बहुत
0: देखने
1: आवश्यक
0: अपनी
1: है।
0: अंदर आ, हमारे गुरुदेव हमको कहते हैं हम निकलते हैं दुनिया को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए,
1: जी
0: लेकिन हम एक बात करें, हम खुद सुधर जाएंगे ना तो हमारी नजर में पूरी दुनिया सुधर
1: तो
0: जाएगी।
1: हर व्यक्ति अपना कार्य सही मायने में करे तो कहीं कोई समस्या ही नहीं होगी।
0: नहीं होगी ये, बिल्कुल नहीं होगी दीदी, बहुत अच्छा विषय रखा है आपने,
1: बिल्कुल
0: बहुत सुंदर विषय रखा है,
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत
1: ऐसे
0: धन्यवाद,
1: ऐसे प्रसंग
0: आभार।
1: हम पढ़ते हैं तो हमें मन करता है कि आप लोगों से भी बांटें,
0: हाँ
1: कि
0: जरूर,
1: हमारे
0: और हम
1: श्रोता।
0: बातें, और हम चाहते हैं कि लोग सुनकर, हम भी तो उनकी तरफ मनुष्य ही हैं, हम कोई
1: जी
0: देवता महान, हम
1: कुछ
0: देवी नहीं है,
1: सीख पाए
0: लेकिन
1: हम,
0: कुछ ना कुछ थोड़ा तो हम सीखते हैं, थोड़ा कुछ हम
1: बिल्कुल
0: संभलते हैं।
1: छोटा
0: हाँ
1: सा भी
0: धन्यवाद,
1: एक वाक्य कभी कभी बहुत बड़ा शूल का काम कर देता है, कभी कभी आपकी अंतरात्मा को हिला देता है, एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा वाक्य। बहुत धन्यवाद, आपने भाग लिया राधा जी, हम आपको आभार प्रकट करते हैं और हम अपना जो प्रसंग है उसे पूरा करते हैं। तो मैं फिर से छोटा सा एक हिस्सा लेती हूँ। भीम के कटु और रोष भरे शब्द सुनकर युधिष्ठिर चुप हो गए और उन्होंने सिर नीचा कर लिया। अर्जुन भी वहाँ उपस्थित था, उसे ये समझने में देर न लगी कि युधिष्ठिर आंतरिक वेदना से व्याकुल है। बिना कुछ बोले अपना गांडीव धनुष उठाकर वे वहाँ से चला गया और थोड़ी ही देर में उसने लौट कर दुर्योधन को मुक्त करने तथा शत्रु का वध करने की खबर युधिष्ठिर को सुनाई। तब धर्मराज भीम से हंस कर बोले, भैया हमारा आपस में भले ही बैर हो, भले ही हम मतभेद और शत्रुता रखते हों, फिर भी संसार की दृष्टि में हम भाई भाई हैं। बेशक कौरव 100 और हम पांडव 5 होने के कारण अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में हम 105 हैं। हम में से किसी एक का भी अपमान अन्य सभी 104 लोगों का ही अपमान है, और ये बात तुम नहीं अर्जुन ही समझ सकता है। ये स्पष्टीकरण का भीम के लिए कोई जवाब ना बन पाया। श्रोताओं, तो अपने रिश्तों को संजोना कितना आवश्यक है। ये भाई का अपमान जो युधिष्ठिर ने सोचा, चाहे दुर्योधन मतभेद करता है तो वो भाई ही, इसलिए भाई का रिश्ता उन्होंने निभाने के लिए अर्जुन गांडीव उठाकर चला गया और दुर्योधन को मुक्त कराकर ले आया वापस। तो कितना आवश्यक है अपने रिश्तों को बचाना, क्योंकि रिश्तों से ही परिवार सुगठित रह सकता है। चाहे महाभारत हुआ, इतना बड़ा युद्ध हो गया, पर अंत में युद्ध का परिणाम क्या होता है? चारों तरफ संहार तो हो जाता है, पर युद्ध से किसी की भी, सबकी हानि होती है, लाभ किसी का नहीं हो पाता है और रिश्तों में खटास आती है। लुडविक हमारे साथ बने हुए हैं, एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है।

श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है जो आप सब हमें सुन रहे हैं। आज हमने प्रेरक प्रसंगों के साथ कार्यक्रम को सजाया है। दो प्रसंग हमने

0: महाभारत से लिए। अब तीसरा प्रसंग शुरू करने से पहले एक फोन कॉल लेते हैं, फिर आपको उस प्रसंग से भी परिचित कराते हैं जो कि रामायण से है। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। मैं हूँ धनेश्वर चौहान से।
0: जी जी धनेश्वर जी, कैसे
1: तो
0: हैं?
1: तो बहन जी कुछ जोड़ना चाहता हूँ।
0: अवश्य।
1: और कबीर की बात सुनाऊंगा।
0: जी स्वागत है।
1: तो अच्छी कर्म करना चाहिए जो सीख मिला है, सत्संग में जाना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हम लोग जो जिनों का मेहमान है
0: जी,
1: तो यहाँ सुनिए दो लाइन
0: जी।
1: उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो,

0: भाई साधो गाड़िया जब निराली है, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। धन्यवाद भाई,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सचेत किया कि ईश्वर के आगे हमें झुकते रहना चाहिए और अपने कर्म सही दिशा में लेके जाएंगे, क्योंकि हमें ही नहीं पता है कब गाड़ी आ जाएगी और कब हम निकल जाएंगे यहाँ से, कोई हमें अंदेशा नहीं है। फ़ोन कॉल एक और है, हम लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बसंती जी।
2: मैं हूँ बसंती
1: जी, कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। महाभारत के मूल्य लेखक महर्षि देवव्यास माने जाते हैं
1: जी।
2: उनका जन्म आज से 5000 वर्ष के भी अधिक समय वर्ष हुआ था
1: जी।
2: महाभारत में महाभारत बुद्ध कौरव वंश की कहानी अनेक जनक उपदेश और कथाएं भरी पड़ी हैं
1: जी।
2: वह ग्रंथ ज्ञान के दृष्टि से विश्वकोश अथवा पांचवी वेद माना जाता है।
1: बिल्कुल।
2: मनुष्य अभिमान में कभी कभी ऐसे कर्म कर बैठता है जो सच्ची मानवता की मर्यादा से हीन होती है। वह ऊंचा पद पाकर अपने पूर्व परिचितों और मित्रों को भूल जाता है जी, अपितु उनका तिरस्कार भी कर देता है। परिमाण वह होता है कि उसे समय पाकर ऐसा लज्जित होना पड़ता है कि उसने नेत्र सदा झुके ही रह जाते हैं। अर्जुन की गुरु दक्षिणा हमें ऐसे ही सत्य को समझने की प्रेरणा देती है। तो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ अंजू जी।
1: बहुत धन्यवाद
2: दिए जाए।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। एक और फोन कॉल लेते हैं। हेलो, हेलो, फोन कट गया है। चलिए हम एक और प्रसंग आपके साथ साझा करते हैं, फिर उस पर विचार आप लोगों की ओर से आएंगे। तो चलिए, लंकाधीश रावण दिग्विजय करने निकला, उसके मार्ग में कुबेर नामक राजा का राज्य पड़ा। रावण ने उस पर चढ़ाई की लेकिन सफलता ना मिली। बात यह थी कि कुबेर

0: असालिका नामक विद्या में पारंगत था। इस विद्या के कारण वह अपने राज्य के चारों ओर अग्नि का कोट बना डालता था। फलस्वरूप उसे कोई जीत नहीं सकता था और उसका राज्य अजय बना हुआ था। रावण निराश हो गया। इतने में उसके पास कुबेर की दासी आई और बोली, महाराज, आप इस राज्य पर विजय कभी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमारे राजा असालिका विद्या में पारंगत है, इसलिए उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उन्हें हराने का एक ही उपाय है, रानी को अपनी ओर मिलाना, क्योंकि राजा ने यह विद्या उन्हें भी सिखा दी है। रानी ने आपके पास प्रस्ताव भेजा कि यदि आप उन्हें अपनाकर अपनी रानी बनाएं, तो वे आपको विजय दिला सकती हैं। किंतु रावण पहले नीतिमान और धर्मनिष्ठ था। उसने पर स्त्री कहकर उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। दासी की निराशा मुद्रा देख विभीषण ने कारण पूछा तो दासी ने सारा हाल कह सुनाया। विभीषण ने दासी से कहा, जाओ रानी से कहो कि विभीषण उन्हें अपनी भाभी बनाना चाहता है। बात जब रावण को मालूम हुई तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने विभीषण से स्पष्टीकरण मांगा। विभीषण बोला, आपको उसे सचमुच रानी नहीं बनाना है, यह तो एक राजनीतिक चाल है। हमें उस विद्या को सीखकर विजय प्राप्त करनी है। बात रावण को जच गई। भोली रानी ने विभीषण को विद्या का गुर बता दिया। वह मालूम होते ही विभीषण बोला, आपको मैंने भाभी कहकर पुकारा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी भाभी कोई निंदनीय और गलत काम करे। आपको यदि मेरे भाई ने अपना भी लिया तो आप उनकी उपपत्नी ही कहलाएंगी और आपको उनके पास यहाँ जैसा सम्मान नहीं मिल पाएगा। यह बात रानी को जच गई। कुबेर पराजित हुआ और उसे यह समझने में देर ना लगी कि हार रानी के कारण हुई है, क्योंकि वह विद्या उसके अलावा और किसी को मालूम न थी। इतने में विभीषण उसके पास आया और उसे भैया कहकर पुकारा। कुबेर सोचने लगा कि यह मेरे शत्रु का भाई होकर भी मुझे भाई कहता है और मेरी पत्नी है, जो मेरी अपनी होकर भी मुझसे विश्वासघात करती है। विभीषण बोला, क्षमा करें भैया, आपका व्यवहार भाभी के साथ अच्छा नहीं है, इस कारण वे आपसे असंतुष्ट हैं। आपको हार का कारण रानी नहीं बल्कि आपका उनके साथ दुर्व्यवहार है, अतः आप अब इससे सबक लेकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। विभीषण ने कुबेर को उसका राज्य पुनः दिला दिया, लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए उसे शत्रु को भैया और शत्रु पत्नी को भाभी कहना पड़ा। श्रोताओं, ये प्रेरक प्रसंग हमें क्या शिक्षा देता है कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और विनम्रता का परिणाम क्या होता है? विनम्रता दूसरों को जीत लेती है, आपके लिए वो जीतने का प्रसंग बन जाता है। एक फोन कॉल है, हम लेते हैं। हेलो।
1: हाँ बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओं को बताएं कि आपका शुभ नाम क्या है।
1: मैं श्यामा रघुनंदन हूँ, गाँव गुप्त से।
0: जी श्यामा जी, कैसी हैं
1: आप? लोगों की दुआ दया से अच्छी हूँ बहन जी।
0: ईश्वर की दया है,
1: एक तो ईश्वर की दया है और आप लोगों की दुआ दया है बहन जी, क्योंकि जो भी हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि चिरंजीवी भव, सदा सुहागन रहो
0: जी,
1: ये कहते हैं ना
0: जी, बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर तो भगवान उतर कर नहीं आते हैं, हम जानते हैं ईश्वर ने हमारी रक्षा की है, लेकिन लोगों का भी दुआ दुआएं हमें काम आते हैं बहन जी,
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा ये कहना है बहन जी, महर्षि वेदव्यास को पता था कि आने वाले युग में समाज की क्या स्थिति होगी
0: जी,
1: इसीलिए उन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा।

0: जी
1: बस आने वाले युग से हमें अवगत कराने के लिए आज घर घर में महाभारत हो रहा है बहन जी।
0: बिल्कुल घर घर में नहीं, हर व्यक्ति के स्वयं में भी महाभारत चल रही है।
1: महाभारत
0: जी।
1: तो किसी को सब्र नहीं है बहन जी।
0: जी
1: एक टुकड़ा जमीन तो क्या हर चीज का बंटवारा हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ तो धृतराष्ट्र तो जन्मांध था, फिर भी पुत्र मोह के वश होकर अपनी पुत्र वधु को भरी सभा में अपमानित होने दिया।
0: जी
1: गांधारी ने तो पट्टी आंखों में पट्टी बांध ली बहन जी।
0: जी
1: वधु की रक्षा न कर सकी, पर अपने पुत्र को श्राप से बचाने के लिए द्रौपदी के सामने गिर गिराने लगी। ये कहाँ का अन्याय है बहन जी? ये तो अन्याय है।
0: जी
1: दुर्योधन ने सारी मर्यादाओं पार कर ली।
0: जी अधर्म सारी मर्यादा लांगी। जी
1: अधर्म का साथ दिया है बहन जी।
0: बिल्कुल
1: सभी ने एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की, पर विचार अलग अलग थे बहन जी।
0: तो यही तो होता है। हम अभी कुछ दिन पूर्व हमने गुरु पूर्णिमा मनाई। क्या शिक्षा आज 40 छात्रों की एक कक्षा में एक या दो ही ऐसे हैं जो अपने गुरु चाहे अध्यापक हो अध्यापिका हो उसका सम्मान करते हैं। बाकी बच्चे तो बस निरादर नहीं कह सकते पर ध्यान भी नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि ये आसान बात है, पर हमें जिससे शिक्षा मिलती है हमेशा उसके लिए हमें नतमस्तक रहना चाहिए।
1: हाँ बहन जी, तो मैं ये कहूँगी कि किसी को अपमानित करना कहाँ का अन्याय है।
0: बिल्कुल
1: केवल 5 गांव के लिए एक टुकड़ा जमीन के लिए जिसको हमें छोड़कर जाना है एक दिन।
0: जी।
1: लेकिन महाभारत का इतिहास तो साक्षी है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगर
0: बिल्कुल।
1: किसी का सम्मान नहीं कर सको तो अपमान भी मत करो।
0: जी
1: अभी आपने कहा कि आजकल तो बच्चे देखकर अपने गुरु अध्यापक को मुंह फेर लेते हैं बहन जी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ बहन जी,
0: जी
1: कि जहाँ भी मेरे जो शिष्य दिखते हैं वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। लड़कियां तो ज्यादातर नहीं मिलती है, जब लड़के मिल जाते हैं ना बहन जी रास्ते पर
0: जी
1: आकर साष्टांग प्रणाम करते हैं बहन जी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ बहन जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भरी बाजार में जब
0: छात्रों को आपने शिक्षा दी है जो कि आज भी आपके समक्ष नतमस्तक हैं। जी
1: भरी बाजार में बहन जी वो आते हैं बहन जी कुनुआ
0: वो बड़े हो चुके हैं पहचान नहीं
1: पा गई हूँ बहन
0: जी। जी जी
1: तो अपनी पत्नी से कहता है कि ये देखो मेरी सामो बहन जी सा बहन जी श्यामा उपा बहन जी श्यामा वो
0: जी।
1: तो ऐसे ऐसे तो हम खुश नसीब हैं बहन जी।
0: बिल्कुल
1: हमारी इज्जत ज्यादा बढ़ जाती है बहन जी, आपको पता है।
0: बिल्कुल और
1: जो
0: हम
1: हमने पढ़ाया बच्चों को सिखाया बहन जी,
0: जी।
1: कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जबकि कब मार देते हैं या डांट देते हैं तो मन में रखते हैं हमेशा के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि स्वयं बहन जी लाइन से आ हिंदी नो तो उसका मुंह कहाँ जाता है तो देखो से आते
0: बिल्कुल
1: लजा कर रह जाता है
0: जी।
1: तो हम कैसे कहते हैं जो शिक्षा है ना बहन जी वो ग्रहण करने की चीज है, पीने पिलाने की चीज नहीं है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: हम कुछ भी ऐसा घुट्टी की तरह पिला

0: इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, चाहे तुरंत काम नहीं आता है लेकिन बाद में हम सोचते हैं, विचारते हैं, ऊपर मनन करते हैं, मननशील होते हैं, अध्ययन करते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या किया है।
1: आज माताओं को ही बच्चे निरादर करते हैं, पर माँ सबसे बड़ी शिक्षक होती है, माँ की गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। पर आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माँ का निरादर कर देते हैं, माँ को भटकने के लिए छोड़ देते हैं। पर हमें
0: तो घर घर की बात है बहन जी, देखो ना, माँ हमें उंगली पकड़ कर
1: चलाना
0: सकती है लेकिन कलम पकड़ा कर लिखा नहीं सकती है बहन जी, हमें ज्ञान नहीं भर सकती है बहन जी।
1: जी
0: आपको पता है ना,
1: बिल्कुल।
0: ये तो जो ज्ञान का सागर वो गुरु होते हैं बहन जी, ज्ञान का खान तो गुरु होते हैं।
1: जी जी, जी।
0: माँ हमें कैसे संस्कार से भरती है, अच्छे से संस्कारों से भरती है, लेकिन कौन इस पर अमल करता है? काश वे अमल करते तो आज माँ बाप दर दर की ठोकर नहीं खाते बहन जी,
1: आज इतने होम नहीं होते, इतने
0: नहीं होते। और अगर होम नहीं होते तो वे कहाँ जाते बहन जी, ये आपको सोचना चाहिए, वे कहाँ जाते, किसके दरवाजा कर खटखटाती बहन जी, किससे अपना दुखड़ा रोती,
1: सही
0: कोई नहीं सुनता बहन जी उनकी दुखड़ा सुनने के लिए, आपको पता है ना
1: जी।
0: ये तो चलो होम है तो उनका गुजारा किसी न किसी प्रकार से गुजारा हो ही जाता है। अब तो होम ले जाने से पहले आपको पता है क्या करते हैं, कागज पत्र करते हैं,
1: बिल्कुल
0: हाँ, कि ये जमीन मेरे घर मेरे नाम पर कर दो, तुम्हारे पास जो पैसे है वो मेरे नाम पर कर दो, तब मैं तुम्हें देखूंगा। कहाँ देखेंगे बहन जी, जब सब कुछ नाम में हो गया तो वो उठाते हैं अपना डेरा डंडा और वो माँ को एक तरफ कर देते हैं और खुद अपने आप एक तरफ हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये है दुनिया, इसी का नाम है दुनिया बहन जी।
1: यहाँ पे दुनिया में हमें बहुत कुछ बच्चे सिखाते हैं, बड़े तो जो शिक्षा देते ही है पर बच्चे बहुत अलग शिक्षा दे जाते हैं
0: जी। बहन जी, और हमें बच्चों से बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है
1: जी, बिल्कुल।
0: उसके सिखाए राहों पर हम भी चलते हैं बहन जी, क्षमा करना मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको।
1: धन्यवाद धन्यवाद, आपने अपना गुबार निकाला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपस में बातचीत करना भी आवश्यक होता है।
0: एक गुबार नहीं है बहन जी, हम सोचते हैं बैठ कर ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं दिन भर कोई भी काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, आज क्या ये क्या है, वो क्या है, क्यों दुनिया ऐसी है, कौन सी कविता में क्या है। जैसे कि सवेरे मैंने सुना सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, तो ये हम सब सोचते हैं बहन जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत कुछ हम सोचते हैं। अब दिन भर हम सोचेंगे मेरी पड़ोसी ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या दिया मुझे, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपमान किया, ये जिंदगी नहीं है बहन जी।
1: जी
0: इसे जिंदगी नहीं कहते, अगर आगे बढ़ना है तो हमें चिंतन मनन करना चाहिए बहन जी, भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए बहन जी। हाँ, मेरा यही कहना है बहन जी,
1: बहुत
0: धन्यवाद आपको,
1: आपको भी शुभ संध्या। और श्रावण मास में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आजकल बहुत जगह हवन हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, रामायण हो, गीता हो, उनके उपदेश हमारे साथ न्याय कर पाए, हम उनको उनसे कुछ सीख पाए, हर उपदेश हर मंत्र से अगर हम कुछ शिक्षा पा लेते हैं तो श्रावण मास बहुत ही अच्छा रहेगा हम सब के लिए। तो चलिए एक गीत के साथ कार्यक्रम को सजाते हैं, फिर बातचीत जारी रहेगी।

0: हेलो हेलो
1: हाँ बेटी,
0: जी
1: हम ही है। तो एक एक दो दो लाइन बोले था।
0: बोला।
1: इस शादी के गी अथी है, इसमें दूल्हा के अथी है ताप झलके तो देखिए कैसे होला।
0: जी
1: सवाना भदवा के तरफे बिजुलिया, सवाना भदवा के तरफे बिजुलिया, सेहू में झाला की हो गईले दूल्हा के दांत, सेहू में झाला की हो गईले दूल्हा के दांत, परिचय बाहर भइले सासु मदागिन, परिचय बाहर भइले सासु मदागी, दतवा के जोतिया ये सासु गिरेला मुरुछाई, दतवा के जोतिया ये सासु गिरेला मुरुछाई, किया तोरा सासु हो जड़ावा से जुड़िया, किया तोरा आहो ये सासु घूमे लाका पा।

में लाका पाऊं, दातावा के ज्योतिया ये सासु गिरेला मुरु छाई, दातावा के

0: के धारल की यात्रा आहो ये बाबू गढ़ेला सोनार की यात्रा आहो ये बाबू गढ़ेला सोना। ई रूप तो भगवान देले हवन बेटी,
1: जी
0: इमें बात अबरी बात नहीं सकब बोले, लेकिन तनी सुन बोल दे।
1: याद कर देला के सावन के महीना बा, हाई प्रसंग चाहि सुनाई के तोरा।
0: नहीं खिसी है, गो दुल्हा के गीत गा दे दी।
1: जी जी
0: सावन भादो के बहुत बारी बिजलिया तड़पेला।
1: बिल्कुल
0: जब दुल्हा निकलेला शादी करे के तब का दांत चमकेला बहुत। यही यही बोल दे दी बेटी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आभार। श्रोताओं एक और प्रसंग को हम लेते हैं और जानते हैं कि सबसे महान कौन है। एक बार देवऋषि नारद के मन में ये जानने की इच्छा हुई कि सबसे महान कौन है। वे वैकुंठ गए और उन्होंने प्रभु से यही प्रश्न किया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद जी सबसे बड़ी तो यह पृथ्वी दिखाई देती है, इसलिए हम पृथ्वी को सबसे बड़ी की संज्ञा दे सकते हैं, मगर समुद्र ने उसे घेर रखा है, इस कारण समुद्र उससे भी बड़ा रहा। किंतु इस समुद्र को भी अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, इस कारण समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है। तब तो अगस्त्य मुनि सबसे बड़े हुए, मगर उनका भी वास कहाँ है।

अनंतकाश के एक सीमित सूची का सदृश भाग में वे मात्र एक जुगनू की तरह चमक रहे हैं, इसलिए आकाश उनसे बड़ा हुआ। लेकिन वामन अवतार में भगवान विष्णु ने इस आकाश को भी एक ही पग में नाप लिया था, इस कारण विष्णु ही सर्वोपरि महान सिद्ध होते हैं। फिर भी नारद, विष्णु भी सर्वाधिक महान नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारे हृदय के अंगुष्ठ मात्र स्थल में ही सर्वदा अवरुद्ध देखे जाते हैं, इसलिए वास्तव में सबसे महान तो तुम ही सिद्ध हुए। तो श्रोताओं, सबसे महान कौन है, ये एक दूसरे से प्रश्न करके स्वयं इसकी जांच करें कि सबसे महान कौन है, हो सकता है। ऐसे ऐसे विचार हमें करने चाहिए, ऐसे प्रेरक प्रसंगों को पढ़कर कितने विचार हम में उठते हैं और हम उनका उत्तर ढूंढने के लिए मजबूर होते हैं। एक और प्रसंग लेती हूँ जो कि इस आज का अंतिम प्रसंग रहेगा। सतयुग में एक बार देवताओं ने महर्षियों से पूछा, श्रुति कहती है कि यज्ञ में अजबलि होनी चाहिए, अज यानी बकरा, इसलिए उसकी बलि आप लोग क्यों नहीं देते। इस पर महर्षियों ने कहा, देवताओं को मनुष्यों की बुद्धि को इस प्रकार भ्रम में नहीं डालना चाहिए। वास्तव में बीज का नाम अज और वेद अज यानी अन्न से यज्ञ करने का निर्देश देता है। इस कारण यज्ञ में पशुवध करना सज्जनों का धर्म नहीं है। बात देवताओं को जची नहीं, उन्होंने इस तर्क को नहीं माना। उसी समय आकाश मार्ग में राजा उपप्रचर जा रहे थे, उन्हें देख देवता और महर्षि मध्यस्थ बनाने के इरादे में उनके पास गए। उन लोगों सारा हाल कह सुनाया और पूछा कि यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए या नहीं। राजा उपरिचर ने सोचा कि देवताओं को प्रसन्न करने का यह अवसर अच्छा है, अतः उन्होंने निर्णय दे दिया, देवताओं का कथन ही ठीक है, यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए। ये गलत निर्णय सुनाते ही महर्षियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तूने पक्षपात करके असत्य निर्णय दिया है, इस कारण हम शाप देते हैं कि तू देवलोक में कभी भी न जा सकेगा, पृथ्वी में भी तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, तू अब पृथ्वी में धंस जाएगा। अपरिचर उसी समय आकाश से गिरने लगे, इससे देवताओं को दया आई। वे बोले, महाराज, महर्षियों के वचनों को मिथ्या करने की शक्ति हम में नहीं है, महर्षियों के पक्ष ही सत्य सिद्ध हुआ, हम से अनुराग होने के कारण आपने हमारा पक्ष लिया, इसलिए हम वरदान देते हैं कि जब तक आप भूगर्भ में रहेंगे, यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा जो घी की धारा डाली जाएगी वे आपको प्राप्त होगी और आपकी भूख प्यास का कष्ट ना होगा। तो श्रोताओं, ऐसे ऐसे प्रसंग हमें कितना सोचने पर आमादा करते हैं। असत्य वचन का परिणाम ये है जो अभी आपने सुना। तो गलत बात को भी पक्षपात में कभी ना रखें और सही बात का से ही अन्यों का मार्गदर्शन करें। आज ऐसे प्रेरक प्रसंगों के साथ हमने साहित्य दर्पण को सजाया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप किस बात पर सबसे अधिक चिंतन कर रहे हैं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और अंजू को आज्ञा दें शुभ संध्या। और यहाँ पर हम लुदोविक को धन्यवाद देंगे जिन्होंने टेक्निकल सहयोग देते हुए ये कार्यक्रम आप तक पहुँचाया। और आज रोशन जी आ चुके हैं दूसरा कार्यक्रम लेके, आज आपके साथ इतना ही, शुभ संध्या।

0: एमबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: अंजू जी द्वारा ये था प्रोग्राम साहित्य दर्पण। कोटिशा धन्यवाद जो किया आपने श्रवण, आपकी सेवा में आ गया है रोशन। और समय है 5 बजे शाम के।
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।
1: नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका प्यारे श्रोताओं। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम आपके लिए हर सप्ताह शनिवार की शाम 5 से लेकर 6 बजे तक। पहला भाग सिनेमा दिल से, जहां पर

0: गीत विषय के अनुसार एवं प्रश्न भी करेंगे आपसे। और दूसरे भाग में गीत कुछ फास्ट और पैपी माहौल को और मजेदार बनाने के लिए। तो पहले भाग में विषय है सिनेमा दिल से। इस प्रकार आज का जो विषय है वो है मिलते जुलते गाने, शब्दों के खजाने। साथियों, हिंदी फिल्म जगत में ऐसे कई गाने हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। शब्द, गायक, कलाकार एवं गीतकार व संगीतकार बदल जाते हैं, पर सभी गाने सुनने में एक ही लगते हैं। चलिए, ऐसे गाने आप लोगों के लिए हम चलाएंगे जो मिलते जुलते हैं, लेकिन इसको ज्यादा समझने के लिए गाना तो चढ़ना पड़ेगा। और ये जो पहला गाना है, ये फिल्म बड़ी लोकप्रिय रही और बार बार देखने को जी करता है। एक गाना है इस फिल्म सागर में, जी हाँ, सागर, जो ऑडी बर्मन के संगीत तले ये फिल्म बनी थी, 1985 में रिलीज हुई थी। और एक गाना है इस फिल्म में जो अन्य गानों से मेल खाता है। पहले सुनिए, प्रश्न का जवाब भी आपको तो देना है। इस मूवी में ऋषि कपूर, डिंपल कपाडिया और कमल हासन का नाम क्या था? जी हाँ, बहुत ही आसान सा प्रश्न। सागर फिल्म में ऋषि कपूर, डिंपल कपाडिया और कमल हासन का नाम क्या था? 402-808-5402-8085 पर प्लीज आप लोग जवाब दें।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

आपके बिन मेरा कोई नहीं, आपके साथ सब होता है सही, आप ही के चर्चे यही कहीं। सागर फिल्म का गाना किशोरदा और लता जी की आवाजों में बहुत ही रोमांटिक सा गाना ऋषि कपूर साहब और डिंपल कपाडिया जी पर फिल्माया गया। और सवाल था कि ऋषि कपूर, डिंपल कपाडिया और कमल हासन का नाम क्या था इस बहुत ही लोकप्रिय फिल्म सागर में। और सही जवाब है, ऋषि कपूर का नाम रवि मोना, डिंपल कपाडिया का नाम और राजा कमल हासन साहब का नाम। और कमल हासन जी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था फिल्म फेयर की ओर से। और सही जवाब दिया शोभा जी फ्रॉम वाकवा और मेबर्ग की इंदिरा बहन। बहुत बधाई हो, आप लोग दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं, अपना नाम रेडियो सेट के जरिए आप सुन रहे हैं, इससे बड़ी चीज और आपको क्या चाहिए। चलिए, ये गाना तो आपने सुना सागर किनारे, ये जो पहला भाग है, ऐसे ही और एक गाना है जिसका जो पहला भाग है मिलता जुलता है, जैसे कि अब ये आपने सुना सागर किनारे दिल ये पुकारे, और एक गाना है ऐसा आता है वो गाना, ठंडी हवाएं लहरा के आए। ये जो गाना है मिलता जुलता है सागर किनारे वाला गाना से, आपने अनुमान लगाया ही होगा। और ये जो गाना है 1951 का गाना है, नौजवान फिल्म का गाना। तो आप हमें जल्दी जल्दी बताइए कि ये जो गाना अभी हम चलाने वाले हैं, नौजवान फिल्म का 1951 में रिलीज हुई, केवल आपको बताना है दिमाग लगा कर कि इसमें हीरो और हीरोइन कौन थे। इतना आसान सा प्रश्न, नौजवान फिल्म में कौन हीरोइन थी और कौन हीरो थे। 402-808-5402-8085।

आई लहरा के हवाएं आपकी मुस्कुराहट ने दी सदाएं। ठंडी हवाएं लहरा के आए, फिल्म नौजवान का ये बहुत ही सुंदर सा गाना और लता जी की आवाज में। श्रोताओं ने फोन करके बताया कि आप तो कभी ऐसे पुराने गाने चलाते नहीं, 50s के गाने क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो पता चले 50s और 60s को हम क्यों द गोल्डन एरा कहते हैं। देखा आपने, ये जो गाना था ठंडी हवाएं, इस धुन पर कितने और गाने बने। और हमने सवाल किया था कि इस फिल्म नौजवान में कौन हीरो थे और कौन हीरोइन। सही जवाब है प्रेमनाथ साहब, जो बाद में चलकर खूनखार विलेन का रोल उन्होंने किया और सपोर्टिंग रोल में भी नजर आए थे कुछ फिल्मों में। प्रेमनाथ जी के साथ नलिनी जयवंत, ये एक हीरोइन का नाम था, एक अभिनेत्री का नाम। चंद फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी दी थी। और सही जवाब दिया इंदिरा बहन मेबर्ग से एक बार फिर, और एक बार फिर शोभा जी बाकवा से, साथ ही साथ विल्मे से श्यामा जी, और कटरबोन से स्वस्ति जी। और अगला गाना चलाने का समय आ गया है, और आपने अभी सुना ठंडी हवाएं, और एक गाना है जो इसी धुन पर आधारित है और वो इस प्रकार है।

0: सामने, ऐसा ही कुछ है। तो चलिए, ये आपकी परछाइयां मदन मोहन जी का संगीत है इस गाने पर। 1964 में ये रिलीज हुई थी और इसमें नजर आए थे द हेमन ऑफ इंडियन सिनेमा धर्मेंद्र साहब धर्मपा जी के साथ। नजर आई थी सुप्रिया चौधरी यानी सुप्रिया देवी, एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री थी। आप हमें केवल ये बता दीजिए कि ये जो अभिनेत्री थी सुप्रिया देवी, ये किस अभिनेता से इसकी शादी हुई थी, और अभिनेता भी इस दुनिया में अब नहीं रहे, और अभिनेता भी बहुत बहुत बढ़िया कलाकार थे, अमानुष में वो नजर आए थे। अभी तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। तो सुप्रिया देवी जो आपकी परछाइयां फिल्म में अभिनेत्री थी धर्मेंद्र साहब के साथ, हमें बताइए कि वो किस अभिनेता के साथ उसकी शादी हुई थी। 4028 5402 8085।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.

जी हाँ, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, धर्मेंद्र साहब और सुप्रिया देवी पर फिल्माया गया फिल्म आपकी परछाइयां, जो एक बहुत ही सुंदर फिल्म थी 1964 में। हम बहुत ही पुरानी फिल्म है लेकिन

0: गाना सदाबहार है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। हमने सवाल किया था कि सुप्रिया देवी जो है वो किस अभिनेता की पत्नी थी। सही जवाब है, हमने आपको एक क्लू भी दे दिया था, अमानुष फिल्म में वो नजर आए थे, वो अभिनेता बहुत ही बढ़िया कलाकार थे वे। और सही जवाब है उत्तम कुमार साहब, बिल्कुल सही जवाब। दिया देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, सिदिक भाई फ्रॉम फिनिक्स, अनिता जी फ्रॉम ओदाबेयर, आनंदी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, हरीश भाई फ्रॉम बुबासे, उमा जी फ्रॉम रोजबेल और आत्मा जी फ्रॉम थोडेडुस। चलिए ये गाना तो आपने सुना, यही है तमन्ना। अगला गाना जो चलने वाला है फिल्म ममता का कुछ ऐसा ही है, रहे ना रहे हम, इसी धुन पर आधारित है ये, तो इसी राग पर, इसी चून पर। आपको हमें बताना पड़ेगा कि ये जो गाना चलने वाला है फिल्म ममता का, इसमें भी धर्मेंद्र साहब नजर आए थे। इसका संगीतकार कौन था? हाँ जी, कौन थे इस फिल्म के संगीतकार? 4028085 पर प्लीज दिमाग के घोड़े को लड़ा के आप जवाब दें।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

लता जी की आवाज़ में एक और मधुर गाना फिल्म ममता का, और ये जो गाना है बड़ा ही लोकप्रिय गाना है। बहुत से श्रोता फोन करके बता रहे हैं कि जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है 5 बजे से लेकर अब तक सभी जो गाने चला रहे हैं चाहे वो पुराने हो लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर गाने एक ही चून पर आधारित। और हमने सवाल किया था कि ये जो गाना था इसका म्यूजिक देने वाला है कौन। किसी ने कहा नौशाद, किसी ने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, परंतु ज्यादा लोगों ने कहा सही जवाब और उन लोगों को मेरा नाम याद आ गया, रोशन। हाँ जी, सही जवाब है रोशन, यानी रोशन लाल नागराथ, जो राकेश रोशन साहब और राजेश रोशन के पिताश्री थे और ऋतिक रोशन के दादाश्री। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही सुंदर म्यूजिक दिया था और उन फिल्मों में से एक ये गाना रहे ना रहे हम। और सही जवाब दिया इंदिरा जी फ्रॉम मौदाबिया, आनंदी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, स्वस्ति बहन फ्रॉम कटरबोन, बुबासैन से बसंती जी, देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, अनीता जी फ्रॉम मौदाबिया और संध्या जी फ्रॉम पुएर्टो पिमा। चलिए थोड़ी देर में दूसरा भाग हम आपके लिए पेश करेंगे और अभी के लिए एक अंतिम गाना इसी विषय पर आधारित मिलते जुलते गाने, और राहुल देव बर्मन का और गाना था 1983 में अगर तुम न होते। हमें और जीने की एक ही धुन, एक ही राग पर आधारित, राग नहीं बल्कि एक ही चून पर आधारित है हमें और जीने की। और आपने सुना रहे ना रहे हम, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो हम थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं।

0: days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxis.
1: जी हाँ, अगर आप लोग न होते तो हमें जीने की कोई चाहत नहीं होती। आप लोगों का प्यार इस प्रोग्राम में चार चांद लगा देता है। 4028085 पर फ़ोन आप करते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं। 5:32 और खेल खिलाड़ी का दूसरा भाग।
0: खेल खिलाड़ी खिलाड़ी।
1: जी हाँ प्यारे प्यारे श्रोताओं, म्यूजिक लवर्स और स्पोर्ट्स प्रेमी, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम केवल आप लोगों का नाम हम कर रहे हैं। स्वागत है आप लोगों का पुनः रेडियो मॉरिशस AM2 की लहरों पर। और इस भाग को हमने नाम दिया है मेरा सवाल तेरा कमाल। क्यों नहीं, हमारा सवाल तो होता रहता है फुटबॉल पर, स्पोर्ट्स पर, सामान्य ज्ञान पर यानी जनरल नॉलेज पर, लेकिन आप कमाल दिखाते हैं बिल्कुल सही जवाब देकर या भाग लेकर, चाहे वो जवाब सही नहीं हो लेकिन फिर भी आप कोशिश तो करते हैं, इसीलिए आप कमाल करते हैं। और हम आरंभ करेंगे इस भाग का, हम शुभारंभ करेंगे फुटबॉल के साथ। और 21 अगस्त से यानी इस महीने की 21वीं तारीख से प्रीमियर लीग की गाड़ी चालू हो जाएगी। यानी आर्सेनल द लीग चैंपियंस वर्सेस न्यूली प्रमोटेड टीम कोवेंट्री सिटी। ये एक शुक्रवार की रात्रि होगी जहां पर पहला मैच इस सीजन का खेला जाएगा आर्सेनल और कोवेंट्री सिटी के बीच। लेकिन उससे एक सप्ताह पूर्व यानी ट्रेडिशनल चैरिटी शील्ड कप, अब जो FA कम्युनिटी शील्ड ट्रॉफी हो गई है, ये खेला जाएगा। अगर मुझे याद है तो गत सप्ताह हमने सवाल किया था कि किन दो टीम्स के बीच में ये FA कम्युनिटी शील्ड खेला जाएगा, और वो है आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी। और ये जो चैरिटी शील्ड है, अब जो कम्युनिटी शील्ड हो गया है, इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। यानी 1908 से लेकर अब तक पूरे 118 साल बीत गए हैं जब से ये ट्रॉफी की कंपटीशन होती आ रही है। और ये ज़्यादातर मैचेस वेम्बले में खेला जाता है, लेकिन जो इनोग्रल मैच था वो स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेला गया था। और 1908 में इस कम्युनिटी शील्ड का जो सबसे पहला विजेता था वो था आप ही का फेवरेट टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ जी, आप हमें बताइए अब कि ये जो FA कम्युनिटी शील्ड है, इसको किसने सबसे ज्यादा जीता है, किस टीम ने इस FA कम्युनिटी शील्ड को सबसे ज्यादा जीता है। जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, इंग्लिश चैंपियनशिप को सबसे जीतने वाली टीम है लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड ईच 20 टाइम्स। वैसे ही आपको बताना पड़ेगा कि कम्युनिटी

0: शील्ड कप जो है, जो चैम्पियनशिप से एक सप्ताह पहले ये खेला जाता है, ये किस टीम ने सबसे ज़्यादा जीता है ये कप? 402-808-5-402-80-85.
1: This is Radio Marches. Radio Marches.

जी हाँ, जब तक सांस चलेगी, जब तक आप स्पोर्ट्स में ध्यान देंगे, तो जरूर आप एक जिंदा बंदा है। और हमने सवाल किया था कि ये जो एफए कम्युनिटी शील्ड है, जो फॉर्मली चैरिटी शील्ड हुआ करता था, ये किस टीम ने सबसे ज्यादा जीता है? और सही जवाब कौन सा है आपको तो पता चल गया। जी हाँ, जिस टीम ने सबसे पहले जीता था, मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसी टीम ने 21 times, हाँ जी 21 बार ये कप जीता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड। और सही जवाब दिया धीरज भाई फ्रॉम ट्रियोले, नंदलाल जी फ्रॉम मॉडस्टालिया। ये दोनों जो है, नंदलाल भाई और धीरज भाई, दे आर डाई हार्ड फैंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, तभी तो सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया। और बाद में जवाब दिया सही इंदिरा जी फ्रॉम मोदाबे और वाक्वा से शोभा जी। चलिए, हम एक बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। और हम जानते हैं कि आप लोग अपने देश से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, देशभक्ति की भावना आपके मन में जागृत होती रहती है। और हमारे स्पोर्ट्स बुलेटिन के दौरान आप लोगों ने सुना कि मॉरिशस का नाम कितना रोशन हुआ इस सप्ताह। उस मॉरिशन महिला रेसिंग साइकिल

का नाम हमें बताइए जिन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ही प्रकाशित किया है दुनिया में स्टेज 6 ऑफ टूर डे फ्रांस को जीतकर। इतना आसान प्रश्न, जवाब देकर आप मनाइए जश्न।

0: 9 8 0 8 5 80 85.
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।

बहुत आसान सा प्रश्न था और बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया और उन्होंने जवाब देकर कहा कि वी आर सो प्राउड ऑफ दिस लेडी द आयरन लेडी ऑफ मॉरिशस जिन्होंने स्टेज 6 ऑफ टूर डे फ्रांस को जीतकर हमारे देश का नाम प्रकाशित किया। गत बार भी उन्होंने जीता था और आज भी एक स्टे और इस साल भी उन्होंने कमाल दिखाया। नाम है उनका किम्बरले लेकोर दे बियो पियनार और सही जवाब दिया आत्मा जी फ्रॉम टूडोडूस, मेनिल से सुरेखा जी, सिदिक भाई फ्रॉम फिनिक्स, ओकुली से विद्या जी, हरीश भाई फ्रॉम बुबासे, धीरज भाई फ्रॉम त्रियोले, नंदलाल जी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और अली जनाब फ्रॉम लेस्कालिये। चलिए अब हम उपन्यास और लेखक पर सवाल करेंगे। द बुक द नोवेल एंड ऑथर एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास यानी नोवेल है जिसका शीर्षक है वॉर एंड पीस युद्ध और शांति। जब पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ चुकी है यूक्रेन और रशिया के बीच, इसराइल और लेबनान के बीच,

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी जो युद्ध है समाप्त हो जाए और शांति की जय जयकार हो पूरी दुनिया में। तो बहुत ही कुछ बहुत साल पहले 1869 में पब्लिश हुई ये नोवेल, ये उपन्यास वॉर एंड पीस। कृपया आप विचार कीजिए और हमें बताइए कि इस उपन्यास के लेखक कौन थे। बड़ा आसान सा प्रश्न, इस उपन्यास के लेखक कौन थे? 4028085 4028085। और ये जो प्रोग्राम है आप लोगों को दिमागी कसरत करने पर मजबूर करता है ताकि आप लोगों की सेहत बहुत ही ठीक रहे।

जी हाँ, जालिमा कोका कोला पिला दे। क्यों कोका कोला पिलाएगा जालिमा? कोका कोला इतना ज्यादा पीने से सेहत बिगड़ जाती है, शुगर लेवल आपकी बढ़ जाएगी। अगर कोका कोला भी पीना है तो बहुत ज़्यादा व्यायाम आप लोगों को करना है, और हमने सवाल किया था कौन सा, आप लोगों को तो पता है ही। वॉर एंड पीस बड़े सभी महान उपन्यासों में से एक है। विश्व साहित्य के क्लासिक हैं और इसका लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय। जी हाँ, लियो टॉल्स्टॉय सही जवाब है, जिसने दिया। शोभा जी फ्रॉम वाकवा, अली जी फ्रॉम रिस्कालिये, स्वस्ति जी फ्रॉम कटरबोन, मॉड अल्बिया से इंदिरा जी और मॉड ऑस्ट्रेलिया से नन्नाल भाई एक बार फिर। और लियो टॉल्स्टॉय एक महान रूसी लेखक थे जिनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट तो किया गया था, पर दुर्भाग्यवश उन्हें कभी ना तो नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर ना ही नोबेल पीस प्राइज प्राप्त हुआ। ये कंट्रोवर्शियल फैक्ट है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, इस सेगमेंट का एक अंतिम प्रश्न जो बड़ा ही आसान सा है।

0: चलिए मॉरिशस में एक हम एक गांव ढूंढते हैं जो मोका डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और उसका जो पहला सिलेबल है, सिलेबल का मतलब पहला भाग, यानी जब हम मॉरिशस कहेंगे तो मो रिशस में तीन सिलेबल्स हैं, मो एक सिलेबल, री दूसरा सिलेबल और शस तीसरा सिलेबल। तो जो मोका का जो गांव है इसमें दो सिलेबल्स हैं और जो पहला सिलेबल है मेरा पहला, लिखते हैं हिंदी शब्द की तरह जिसका अर्थ होता है मिलना या घुल मिल जाना, और दूसरा जो सिलेबल है ये एक फ्रेंच या एक इंग्लिश वर्ड है जो एक फूल के नाम से जाना जाता है और उस फूल को हम कहते हैं गुलाब। अब तो ज्यादा आसान हो गया है, जो दूसरा भाग है वो एक गुलाब है जो हम हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच में उसे क्या कहते हैं, और जो पहला भाग है उसे हम मिलना कहते हैं, और मिलाप मिलन ये सब कुछ होता है। तो हमें बताइए कि वो कौन सा गांव है जो मोका डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। 402-808-5
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस।

जी हाँ, आप हैं तभी तो सब कुछ बात है। और हमने सवाल किया था कि वो कौन सा गांव है मोका डिस्ट्रिक्ट में, मोका प्रांत में, जो पहला भाग है वो मिलाप यानी मिलन, और हिंदी में वो एक शब्द है यानी मिलन का मतलब है मेल, मेल। हाँ, और जो दूसरा भाग है वो फ्रेंच और इंग्लिश में गुलाब को क्या कहते हैं, वो है रोज यानी मेलरोज। और बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया, हरीश भाई फ्रॉम बोबासे, दिला जी फ्रॉम ओलाशो, और संध्या जी फ्रॉम पुएंतो पिमो। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। आप लोगों ने दिलचस्पी बढ़ाई, फोन किया, जवाब दिया, कोशिश की, बहुत बहुत बहुत ही धन्यवाद आप लोगों को। जीवन में सब कुछ नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं, ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, पर वो अवश्य बेहतर तरीके से, बेहतर प्रकार से होगा, ये ईश्वर की एक अद्भुत है योजना, केवल आपको उन पर विश्वास है रखना और अपने आप पर भी आप विश्वास रखें, और हमेशा व्यायाम करें, तनाव से दूर रहें, और कोशिश करें कि मोबाइल पर ज़्यादा समय न बिताएं, और अपने सेहत पर, अपनी सेहत पर ख्याल रखें, और खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मॉरिशस के स्कूल पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी, नए विषयों और लोअर सेकेंडरी में ज्यादा विकल्पों पर विचार। पढ़ाई और कामकाज में एआई का बढ़ता प्रभाव, युवाओं को आने वाले बदलावों के लिए तैयार करने पर जोर। मॉरिशस और चीन के बीच स्वास्थ्य समझौता, स्ट्रोक के शिकार मरीजों के इलाज के लिए एंजियोग्राफी मशीन का दान। विदेश में धरती के बढ़ते तापमान का असर, सूखे से डैनूब का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से नीचे, यातायात और पर्यटन प्रभावित। अरब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए विषयों, लोअर सेकेंडरी में अधिक विकल्पों और तकनीकी धाराओं के विकास पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। मिड ईयर रिव्यू के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय मॉरिशस एग्जामिनेशन

0: सिंडिकेट और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक रणनीतिक बैठक में इन विचारों पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य छात्रों और देश की भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को बेहतर ढंग से ढालना है। ज़रा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: मॉरिशस में मीडिया रिव्यू मीटिंग के लिए आए कैम्ब्रिज के प्रतिनिधियों ने शिक्षा क्षेत्र के साझेदारों से मुलाकात की। इस दौरे से अब तक किए गए काम की समीक्षा करने में मदद मिली। यहां पोर्ट लुई के रॉयल कॉलेज में कैम्ब्रिज के डायरेक्टर ऑफ एक्रेडिटेशन ने मिनिस्ट्री पार्टनरशिप्स के प्रमुख के साथ अपनी पढ़ाई के बाद के मार्गदर्शन पर अभिभावकों और छात्रों से चर्चा की। मॉरिशस की ये यात्रा स्कूली पाठ्यक्रम के विकास में अगले चरणों पर चर्चा करने का अवसर भी है। इस प्रकार नए विषयों को शामिल किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के चीफ टेक्निकल ऑफिसर रिको उगबर बताते हैं,
2: les compétences que le monde d'aujourd'hui et le monde de demain pour besoin et qu'il est là nous capable forme nos mêmes enfants vers la compréhension de du monde, la compréhension de l'entrepreneurship.
1: आज और कल की दुनिया को जो प्रतिभा चाहिए उसी के आधार पर हम अपने छात्रों को तैयार कर रहे हैं, जैसे ठेकेदारी, समुद्र आदि के क्षेत्रों में, और किस तरह अप्लाइड लर्निंग को भी अमल में ला सकते हैं। इसका उद्देश्य लोअर सेकेंडरी से ही विकल्पों का दायरा बढ़ाना और छात्रों को अधिक विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान करना भी है। एससी और एचएससी स्तर पर तकनीकी धाराओं पर भी विचार किया जा रहा है। कैम्ब्रिज के साथ इस काम से कुछ विषयों को आधिकारिक मान्यता मिलने की भी उम्मीद है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ मिनिस्ट्री पार्टनरशिप्स वालिद बगादी ने कहा, अगले चरण के लिए हम शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान करना। सरकार को पहले अपनी आर्थिक रणनीति के मद्देनजर अपनी प्राथमिकताओं की परिभाषा देनी होगी।
3: Would require an appraisal at the government level of its industrial strategy, its economy, how it intends to create pathways for those candidates. And so once that is determined, Cambridge would provide the necessary support.
4: À partir du moment où tout le travail avec Cambridge est mis en place, que Cambridge dans SC Technical, dans l'agriculture, et les fins tombent d'accord pour le créole, quand les fins finis, examine ce qu'on appelle the assessment materials et ce qu'on appelle the assessment framework pour nous capables gagner la reconnaissance officielle de Cambridge pour que ça ben sigé là vienne officiellement des matières d'examen.
1: इसलिए मॉरिशस की स्कूली शिक्षा प्रणाली में इन बदलावों को शामिल किए जाने से पहले चर्चाएं जारी रहेंगी।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI धीरे धीरे पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और कामकाजी दुनिया का अहम हिस्सा बन रही है। आज शनिवार 8 अगस्त को मोंटाई ब्लांश स्थित पॉलिटेक्निक मॉरिशस में आयोजित यूथ कन्वेंशन में युवाओं से इस टेक्निक से मिलने वाले अवसरों को बेहतर ढंग से समझने और आने वाले बदलावों के लिए खुद को तैयार करने की अपील की गई। ये पूर्वी क्षेत्र में पहली बार आयोजित किया गया ऐसा कार्यक्रम है।
5: एक ऐसा आईना जो अब सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता बल्कि जानकारियां भी दे सकता है। इस तकनीक को शामिल करना AI के इस्तेमाल से संभव हुआ है। योगेश देव जी कहते हैं,
6: slightly ou trouver les objets ou les températures qui peut faire dans différentes régions avec aucun ou agenda aussi।
5: स्लाइड करने पर ये समय अलग अलग इलाकों के तापमान और एजेंडा भी बता सकता है। हम कोडिंग सीखना शुरू कर रहे हैं। हम वाइब कोडिंग इस्तेमाल करते हैं, AI की मदद से प्रोग्रामिंग करते हैं। वैभव कहते हैं, AI हमें ऐसी जानकारियां दे सकती हैं जो हम नहीं जानते, रिवीजन में भी मदद करती हैं।
6: फॉर एग्जांपल डिमांड इंफॉर्मेशन कैन यू पैक इन टू ले जूल का द न्यू फॉर एग्जांपल डिमांड रिवीजन।
5: पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, खासकर पढ़ाई और कुछ परियोजनाएं तैयार करने में। तलाई बेन बताते हैं, अगर अध्यापक ने जो कहा हम समझ नहीं सके तब AI से पूछ सकते हैं, पर हम हमेशा इस पर निर्भर नहीं रह सकते। शबनम कहती हैं, ग्राफिक डिजाइन कर रही हूँ, छोटी छोटी चीजें AI से पैदा कर
7: सकती
8: हूँ।
5: दिलान बताते हैं, दुनिया भर में AI बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ कानून होने चाहिए। जैसे जैसे AI

0: अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जगह बना रही हैं, एक सवाल उठता है, इस पीढ़ी को काम की दुनिया में आने वाले बदलावों के लिए कैसे तैयार किया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुकून बताते हैं, विश्वविद्यालयों में AI पर कोर्स देना अनिवार्य हो गया है। इस साल सभी करिकुलम्स पर फिर से गौर कर रहे हैं, अगले साल से इसमें AI भी शामिल करेंगे। मालिक वर्ग से भी छात्रों को AI का प्रशिक्षण देने की मांग करते हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नियमों को और सख्त किया जाएगा। ICT मंत्री अविनाश रामतोहल कहते हैं, नौजवानों को AI का प्रयोग करना आना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई में सहयोग के लिए।
1: Il est très important qu'ils nous mettent bonne garde fou dans le système, sinon on est capable d'un petit peu difficile pour capable amener les autres genre de modération dans le futur.
0: प्रदर्शन से लेकर अपने भविष्य पर विचार करने तक ये युवा पहले से ही तेजी से हो रहे बदलावों का सामना कर रहे हैं। अब चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से समझना और इसका इस्तेमाल करना सीखना।
2: चीन और मॉरिशस के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को लेकर आज दोपहर एबेन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन और स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के बीच हुआ है। समझौते के तहत मॉरिशस को डिजिटल सब्सक्रिप्शन एंजियोग्राफी मशीन दान में दी जाएगी। इस उपकरण की मदद से स्ट्रोक यानी हार्ट अटैक से पीड़ित मरीजों पर ऐसे उपचार किए जा सकेंगे जो उनकी जान बचाने में अहम हो सकते हैं।
3: मॉरिशस में हर साल स्ट्रोक के 4,000 से अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। इनमें से एक तिहाई मरीज बच नहीं पाते हैं, जबकि अन्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिनमें आंशिक या पूर्ण पक्षाघात यानी पैरालिसिस शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र को स्ट्रोक के पीड़ितों का बेहतर इलाज करने में सक्षम बनाने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता मुख्य रूप से डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन दान करने के साथ साथ मॉरिशस के डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने से संबंधित है। डॉक्टर अश्वमेध दीना सिंह बताते हैं, जब सर से खून बहने लगता है तो उसे रोक देना चाहिए, वरना ये जम सकता है। इसलिए हमें एक ऐसा उपकरण दिया जा रहा है जो एक अंजो की तरह होता है, जो उस आर्टरी तक जाता है और तुरंत खून को बहने से रोक देता है। चीनी और मॉरिशस पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौते में न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी और ऑफ्टाल्मोलॉजी के जाने माने विशेषज्ञों के मॉरिशस आने का भी प्रावधान है। डॉक्टर हुआंग शिफांग ने कहा, चीनी पक्ष डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि एक ऐसी पेशेवर टीम तैयार की जा सके जो स्वतंत्र रूप से न्यूरो इंटरवेंशनल प्रक्रियाएं करने में सक्षम हो। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्चू ने कहा, हमें एक टेक्निकल इंजीनियर भेजा जा रहा है जो टेली सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि बेहतर संचार हो। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मॉरिशस में राजदूत डॉक्टर हुआंग शिफांग चीनी डॉक्टरों के जल्द ही मॉरिशस आने के लिए बहुत जल्द बीजिंग की यात्रा करेंगी, जो कुछ ही हफ्तों में होने वाली है।
2: ISKCON इस साल दो महत्वपूर्ण अवसर मना रहा है, अपनी स्थापना के 60 साल और इसके संस्थापक भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा, जिन्हें शीला प्रभुपदा के नाम से भी जाना जाता है, कि मॉरिशस की ऐतिहासिक यात्रा के 50 साल। उनकी ये यात्रा ISKCON के इतिहास में आज भी विशेष स्थान रखती है और उनकी विरासत आज भी आगे बढ़ रही है। आज एबेन में प्रेस से मुलाकात करते हुए पॉल बेरांजे ने विपक्ष नेता के रूप में चेतन बाबूलाला की नियुक्ति पर टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुसार ये निर्णय गणराज्य के राष्ट्रपति का होता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि रॉना बेरांजे को विपक्ष की विप के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। फ्रों मिलिटां प्रोग्रेसिस के नेता ने संस्थागत संवाद पर आधारित शासन करने के एक नए तरीके की इच्छा जताई है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
0: पॉल बेरांजे ने चेतन बाबूलाल की विपक्ष नेता के पद पर नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी।
4: Nous fin écrire au président de la République. Nous fin écrire une lettre signée par nous trois. Pour éclaircir les choses et non pas pour demander quoi que ce soit. Le président exerce sa liberté totale sous la Constitution. Qui fait nous écrire? Parce que nous voulons bien mettre.

0: Donc la Constitution dit si le président trouvait qu'il y a un nouveau parti qui est dans la majorité, il n'est même pas obligé, il est capable sans le leader de l'opposition. Loupé propose l'honorable Jean-Alain Béranger comme whip de l'opposition.
1: Paul Béranger ne Véronique Le Govindke Junior, ministre qui pad se istifé ko lekar patrakaron ke sawalon ka bhi jawab diya. Unhone kaha ki ve jaanch puri hone ka intezar karenge. Paul Béranger ka manna hai ki hal ke ghatnakramon, khaskar pension se jude mamlon ko dekhte hue, shasan chalane ke tareeke mein badlav zaruri hai. Unhone anya sujhavon ke saath Fiscal Responsibility Act aur ek independent fiscal commission banane ka bhi prastav rakha hai.
2: राजपोत स्थित सेंट्रल बिल्डिंग में MSM ने भी एक प्रेस सम्मेलन लगाया जो लोशोंगा ने राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की फ्लाक में हुई हालिया जुटाव, संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्ष नेता की नियुक्ति और वेरोनिक ले गोविन का इस्तीफा शामिल था.
3: जो लोशोंगा ने विपक्ष के नेता के पद से अपने इस्तीफे पर बात की. जो लोशोंगा का दावा है कि MSM पेंशन योजना में संशोधन करेगा, उनके अनुसार मौजूदा प्रणाली मैनुअल वर्कर्स के प्रति अन्यायपूर्ण है. MSM छोटे और मध्यम उद्योगों पर लगाए जाने वाले VAT की सीमा की भी समीक्षा करने का वादा करता है. MSM ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में पूछताछ के दायरे में आई सांसद वेरोनिक ले गोविंद के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन से जांच शुरू करने की मांग की है. MSM सिंथेटिक ड्रग्स से संबंधित एक नई नीति की भी वकालत करता है. जो लोशोंगा ने हाल ही में कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को बधाई दी है और टूर डी फ्रांस में किम्बर्ली ले कुपियनो के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की है.
2: झरने, प्रकृति की खूबसूरती का अनमोल नज़ारा और छुट्टियों में सैर सपाटे का पसंदीदा ठिकाना और वाटरफॉल भी ऐसी ही एक जगह है. मिनी सी वाटरफॉल भी एक ऐसी जगह है जहां बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं. पिछले 8 सालों में मॉरिशस के विभिन्न झरनों में डूबने से 13 लोगों की जान जा चुकी है. ऐसे में स्कूल की छुट्टियों के दौरान बचाव दल और हाइकिंग विशेषज्ञ लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं. विदेश में धरती के बढ़ते तापमान का सीधा असर अब साफ दिखाई दे रहा है. रिकॉर्ड तापमान और कई महीनों तक बारिश नहीं होने के कारण डैन्यूब नदी के कुछ हिस्सों में पानी का स्तर ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. सूखे की वजह से कई क्रूज जहाजों की आवाजाही रुक गई है, माल ढुलाई धीमी हो गई है और मध्य यूरोप के कई देशों में पर्यटन पर भी गंभीर असर पड़ा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने को लेकर बातचीत जारी है. ये मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. वाशिंगटन का कहना है कि उसे उम्मीद है कि ईरान और ओमान के बीच जल्द ही एक समझौता हो सकता है, लेकिन तेहरान ने आज कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने का फैसला मुख्य रूप से ईरान की शर्तों को स्वीकार किए जाने पर निर्भर करेगा, इसलिए स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है. और कोंगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. देश में अब तक 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और करीब 1,850 लोगों की मौत हुई है. सबसे ज्यादा मामले इचूरी प्रांत में है, लेकिन बीमारी 4 अन्य प्रांतों तक भी फैल चुकी है. इस बार इबोला का दुर्लभ प्रकार सामने आया है, जिसके लिए पहले इस्तेमाल होने वाले टीके और खास इलाज उपलब्ध नहीं है. प्रभावित इलाकों में संघर्ष और सुरक्षा की समस्या के कारण बीमारी को रोकने का काम भी मुश्किल हो रहा है. देशी देशी खबरों के बारे में अब मौसम का हाल सुनते हैं.
3: आज रात के दौरान पूर्व से पाए जा रहे अस्थिर बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा. अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी. कभी कभार सामान्य वर्षा होगी. ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. कल दोपहर बाद आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और ऊंचाइयों

पर रह रहकर वर्षा होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह से दक्षिण पश्चिम के समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, इसीलिए कल सुबह से पश्चिमी और दक्षिणी लगुनों में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:35 पर और शाम 5:54 पर सूरज ढल जाएगा।

मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए से आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक और कोविला का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।

वेजी रोड गुडलैंड्स में, वेजी रोड गुडलैंड्स में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराज टकोरी, श्री जयराज टकोरी जो रमेश नाम से ज़रा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी। अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर वेजी रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। लातूर रोड रोस्टेमी 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री गोहाना चिमादू की मृत्यु हो गई है उनकी। अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विमला चिमादू के घर लातूर रोड रोस्टेया से उठाकर दफनाने के लिए बेलमोंग गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 10 AM। भीम जोरी स्ट्रीट अतर रोशमी 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेशमी जोरी शुक्लोल पैदाइशी नाम सुकलोल और जो रेशमी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, मृत्यु हो गई है उनकी। अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री विकास जोरी के घर भीम जोरी स्ट्रीट तैयारोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। सिर गुलाम लेन नोवेल फ्रांस में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी डोलोरी जो किशोर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई उनकी। अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर से गुलाम ले नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए नोवेल फ्रांस की रामजेन लेन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM। रुई मगाजन विलनुआ मेबर्ग में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री नौबत सिंह सियापत जो राजेश नाम से ज़रा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई उनकी। अर्थी सोमवार 10 अगस्त को दिन के 10 बजे उनके घर रुमागाजा विलनुआ मेबर्ग से उठाकर दफनाने के लिए तोम्बो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल ऑन मंडे 10 अगस्त एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। सीईबी की तरफ से एक विज्ञप्ति, कालबास ओसेनाल और आसपास के रहने वालों को मालाकोफ स्ट्रीट, ओसेनाल गवर्नमेंट स्कूल, फिलिंग शेल और एमटेल और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 9 अगस्त 2026 को सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। एक और विज्ञप्ति सुन लीजिए। मोका और आसपास के रहने वालों को ले रावें, मोंसलमों बागातेल, लेक्लेजियो एवेन्यू, ओल्ड रेजुई रोड, मोंसलमों यूरेका, मोंटाई ओरी रोड, बाबूलाल लेन और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 9 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे के बीच में मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बोबासें और आसपास के रहने वालों को डॉक्टर रीड एवेन्यू, मादेव बिल्टू एवेन्यू, जुपेर एवेन्यू, शास्त्रनेफ और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 9 अगस्त 2026 को सुबह के 8:15 से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। आमिचिये, बॉलू, गोकुला, बेलवी मोरेल और मोलवाजिया और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 9 अगस्त 2026 को सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और जिन जिन जगहों का नाम हमने आपको बताया वहां पर बिना सूचित किए फिर से बिजली की सप्लाई को जारी की जाएगी। इन असुविधाओं के लिए सीबी क्षमा प्रार्थी हैं।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। श्रोताओं, कहा गया है कि कर्म का न्याय देर से होता है किंतु कभी अधूरा नहीं होता। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि रात को सोते समय मन शांत रहे तथा ईश्वर के सामने सिर झुकाने में कभी संकोच ना हो। जी श्रोताओं, अभी आप रेडियो मॉरिशस की लहरों से जुड़े हुए हैं, जहां आप सुन पा रहे हैं भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम। अनीता की ओर से आपका सादर नमन है। आइए कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ एक गणेश भजन के साथ करते हैं।

भक्तजन, बहुत ही सुंदर कहा गया है कि जिसकी दृष्टि जैसी होती है वैसे ही संसार दिखता है। अच्छाई व सच्चाई यदि आप में नहीं है तो संसार में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। यदि आपके मन में छल है तो हर कोई आपको धोखेबाज लगेगा। यदि आपके भीतर प्रेम है तो अजनबी में भी अपनापन दिखाई

दिखाई देगा। स्मरण रखिए कि अच्छाई और सच्चाई विश्व में ढूंढने से पूर्व अपने भीतर जगानी होती है। जो स्वयं सत्य के मार्ग पर चलता है उसे हर मोड़ पर ईश्वर का संकेत मिलता है, किंतु जिसका मन संदेह व द्वेष से भरा है उसे प्रत्येक स्थल पर अंधेरा ही दिखता है। अतः दूसरों को परिवर्तित करने से पूर्व अपने विचार बदलिए। जब मन निर्मल होता है तो सृष्टि भी सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि संसार आपका दर्पण है, आपकी सोच का प्रतिबिंब है।

प्रियजन, यदि आपको लगता है कि आपके अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं तो धैर्य रखिए। इस सृष्टि में कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता। कर्म का यह अटल विधान है कि आप जिस नियत से कर्म करते हैं उसी नियत के अनुसार उसका फल आपके जीवन में लौट कर आता है। यदि आपके कर्म में सत्य, करुणा व निष्ठा है तो समय चाहे जितना लगे उसका शुभ फल अवश्य मिलेगा। और यदि कर्म स्वार्थ, छल या अहंकार से किया गया है तो उसका परिणाम भी निश्चित है। इस दृष्टि में न्याय का नियम कभी पक्षपात नहीं करता। किसी के अन्याय से विचलित मन ना होइए, किसी के अन्याय से आप विचलित ना होइए, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म और नियत को पवित्र बनाइए।

0: भक्तजन, छल कपट और पाप उतना ही करिए जितना आप भोग सके, क्योंकि ग्रह शांत हो सकते हैं किंतु नियति नहीं। छल से मिली जीत कुछ समय के लिए सुख दे सकती है, किंतु उसका परिणाम जीवन भर पीछा करता है। बुरे कर्म संसार से छिप सकता है किंतु नियति से नहीं। ग्रहों की दशा पूजा दान और साधना से शांत हो सकती है, परंतु नियति केवल कर्मों के आधार पर अपना निर्णय सुनाती है।
1: हे

श्रोताओं, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो इसी सुविचार के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होता है। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: औज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामईन, उम्मीद है आप बफजले खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आप जहाँ से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका आज की इस मजलिस में दिली खैर मकदम करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि अपने बंदे को हलाल रोज़ी की तलाश में मेहनत करता और तकलीफ़ उठाता देखे।

आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ तुम खाते हो उसमें सबसे बेहतर वो है जो तुम अपने हाथों से कमा कर खाओ और तुम्हारी औलाद की कमाई भी जायज़ है। बाहवाला इब्ने माजा शरीफ। ऐ पाक परवरदिगार, हमें हमेशा हलाल रोज़ी कमाने और खाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का।
3: धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत करत है रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर हाई बा स्टूडियो के घड़ी में अभी 9:03 हो गल बा और आप सब कोई के साथ है देवत हवन रत्ना जहाँ कहूँ से भी साथ है देवत हवा बस आशा है ये रखब जाके आप सब कोई अच्छा हुआ मजे में हुआ। तो चला आज के कार्यक्रम के संगे जुड़ जाइए और मजेदार कार्यक्रम के साथ साथ जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने के ते हर हिया तोहर हिया बा कोनो ऐसा खास मौका जन्मदिन के मौका या फिर शादी के सालगिरह के मौका तू अपन प्रियजन खातिर एगो बढ़िया भोजपुरी गीत डेडिकेट करे सकब 4028085 पर जी।

यहाँ 402-808-8585 पर हमने के तू टेलीफोन करे सकबा और ई मैसेज विदा करे खोजा था वा 5251705। तो चला आज के कार्यक्रम के शुरुआत कर अब जाए एगो बढ़िया गीत कुणाल हीरेलाल के आवाज में रखल जलसा के रात।

0: भोजपुरी तड़का
1: जाने ल थपरी बजाई बा तो तोहर लासों ते बहुत अच्छा रही, बहुत निमन रही। और ऐसन ऐसन जब गीतवा बजेला तो थपरी बजाई के मन करेला, तब बजावा थपरी के तोरा रोकता। तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावा जा, बहुत बढ़िया बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर ढेर कोई श्रोता लोगन हमनी के संगे जुड़ गल हवन, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसने प्यार से साथ दे दे रही है जा है जा पर विश्वानी दुमन हमनी के साथ देवत हवन वाकवा बगल से, और अपन बहिन इंदिरा शारदा और सखी हवन नीला और प्रतिभा और साथ देवत हवन शोभा जी और गीता गजाधर खातिन कैसे बनी चटनिया है गीत के वो मांग कर ले हवन। तो चला भाई दानन बीजन के आवाज में रखल है गीत, चलाओ अब जा थोड़ा घड़ी में तोहर खातिन। आउरी मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर जितना कोई साथ है देवत हवन बस ऐसने प्यार से साथ देते रहिया जा। आउरी का बोला हमर चाचा गजोदर जोन है, वो तो एगो नमूना आदमी है।

जाने ल दोक्तिया ओकरा बोलले बा फजीरे उठ के तनी घूमे जाई के। त हम चाचा के बोलनी, चाचा का करत हव, जात हव ना घूमे। बोले कितना घूमब है दोक्तिया, हमनी के बोले घूमे के, कितना घूमब बोला था, धरती तक घूमता, अब हम भी घूमब, कितना घूमब धरती घूमत हवन, अब हम भी घूमब, तो घूमते घूमते हमनी के घूमरी नहीं लगी हो, आइए तब बोलत है, हई का बोलब दोक्तियावा के, हम तब रंज हो गई नी दोक्तिया से।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम औरी चला। अभी तक श्रावण के मास चला था और श्रावण के महीना में एगो बढ़िया शिव महिमा के गीत के मांग करत हवन नवीन जी। नवीन लक्ष्मण हमनी के संगे जुड़ गल हवन रोज बेल बगल से और प्यारी पत्नी चित्रा खातिन। और आज चित्रा जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन। चित्रा जी तोरा बहुत बहुत प्यार हमर बगल से। और चला अगला गीत जौन है तोहर खातिन चलाओ अब जा लीलो माथुर सुकन के आवाज़ में रखल और निवेदित और सच्चिदानंद जी संगे जुड़ गल हवन मेबग से। ललिता और धनराज जी साथ देवत हवन अपन बेटी स्वीटी संगे। मौडालबिया बगल से राज और अमृता उबिलक हमेशा जुड़ल रहेलन हमनी के साथ न्यू ग्रोव से। और घोंबुआ बगल से रमेश और प्रीति जी साथ देवत हवन बहुत बहुत धन्यवाद। और चला हईजा पर सुनीता जी भी साथ देवत हवन गाँव गोब से। और उनकर बहिन हवन विमला अमृता जी और वीना जी। आज तक विमला जी कोंगोमा से निकल के गल हवन मोताई ब्लॉश बगल। उनकर बेटी कविता हिया घूमे। और जे तू सुनत हवन राजो तो चला तोहर खातिन हई अगला गीत चलाओ अब जा बहुते मजेदार बहुते बढ़िया गीत। और चला बहुत बहुत प्यार से कविता जी हिया तू अपन छुट्टी मनाइय। और साथ देवत हवन है जापर चाची शांता सुकारी से जमील फोरसाइट से। उनकर पतो हवन किरण बेटा सुदेश साथ देवत हवन फावेश और संजना नाती और नातिन। और उनकर बेटा लोग हवन सुजीत अशोक और गाविन भैया खातिन। चला मजेदार गीत संगे शिव के महिमा है गीत सुनब जा साथ मिल के। औरी का बोलब जा हंसते मुस्कुराते जीवन आगे बिता आगे बढ़ावे के चाहिला काहे के जाने ल। जोन जीवन है बहुत थोड़ा घड़ी में फिनी हो जाए इसीलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। और हमर चचा जोन है ना का जनी कहाँ से जब देख तब चचा चाची संगे गाल बजावेलन से। जब देख तब चाची संगे झगड़ा करेल और जाने ला चाची के कौन ची बोले जाने ला बुढ़िया। हाँ हई जन पुरुष लोग हवन युद्ध जीत लेलक धरती जीत लेलक समुद्र जीत लेलक यहाँ तक कुछ नहीं आसमान भी जीत ले लगा। और तू महिला लोग अभी ले कौन सी जीत ले हवा बोला था तो चाची भी बोले हाँ हम महिला लोग जाने लनी सन मेकअप लगा के तोहर नियर बुढ़वा के तोहर नियर पुरुष लोग के जीत ले वेला दिलवा। और का चाहिला तो चला सुनब जा शिव के महिमा।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जा पर ढेर कोई काम पे से अभी घरे चलाल हवन और साथ देवत हवन तो चला है जा पर हमनी के प्यार से साथ देवत हवन रिहाना जो फिनिक्स से साथ देवत हवन और बहुत ही प्यार से आज उ जन्मदिन के बधाई देवत हवन अनुष्का के जेकर जन्मदिन बा आज और खासकर मामा रेशमा साथ देवत हवन पापा शैलेश और दादी हवन रीटा और सब सीतालू परिवार मोता बा बगल से हमनी के साथ जुड़ गल हवन तो चला आज के कार्यक्रम के लाजवाब मजेदार गीत संगे सजावत है और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जोन कार्यक्रम हा सब कोई के पसंदीदा कार्यक्रम हा चला हैप्पी बर्थडे के है गीत के मांग कर ले हवन रिहाना उनकर खातिन त जरूर चलाओ अब जा है गीत और हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा जाने ल हमर चाचा जोन है चाची और चाचा चाची बहुत खीस करे चाचा संगे और चाची जाने ल चाची खीस करे अच्छा है चाची चाचा से बोले काहे तू इतना शराब पिए ल हो तो चाचा बोले हाँ तू काहे इतना मेकअप सब सब लगावेला काहे तू ब्यूटी पार्लर इतना जाल हो बोले देखा तू शराब छोड़ दिया हम नहीं अच्छा हम खुशी नहीं है तो चाचा बोले हाँ तू भी ब्यूटी पार्लर जाई के तनी छोड़ दिया तो चाची बोले जाने ल हम ब्यूटी पार्लर जाइला तोहर खातिन तनी सज संवर के तो तनी तनी जोली लौकब तो तू हमनी के दिखब तो चाचा बोले है ये खातिर तो हम भी शराब पीला हो हम जब शराब पीब तो तू तनी जोली लौकबे ना हमनी के है ये से शराब पीला का हो चाचा ऐसे बोल दिलक तू चाची के

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:29 हो गल बा और मजेदार कार्यक्रम संगे हईजा पर ढेर कोई हमनी के साथ देवत हवन त चल हंसते मुस्कुराते हईजा बहुत प्यार से साथ देवत हवन हमनी के अनीता जी अनीता लाल जी जे जुड़ गल हवन हईजा पर मौडाल बिया बगल से और ईतु परिवार गोगा परिवार और नागेश्वर परिवार खातिन अगला गीत के उमांग कर ले हवन रोशन सदा सिंह के आवाज में रखल एगो बढ़िया गाना त चला सुनाओ अब जा और इस संगे मिलकर सुनब जा और हई गाना जौन है बहुत मजेदार वंदना हमर सोना और वंदना नाम के जन छोकड़ी रही उ त जस्तिया खुश हो जाए हई गीत सुन के चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और चाची और चचा के चुटकुला चाची और चचा के बात का बोलब चाची चचा से बोले पहला तो शादी से पहला तो तू हमनी के रबड़ी बोलत रहल बर्फी बोलत रहल इतना प्यार से हमनी के कैसे कैसे नाम से बुलावत रहल रस मलाई सब बोलत रहल अब शादी हो गल तो काहे नहीं बुलावे ला है सब नमवा से तो चाचा बोले देखा दूध के जन चीज रहेला ना दूध के जन मिठाई रहेला ना दो दिन से जस्ती अच्छा नहीं लगेला खाई के समझ रहे समझ गए ले

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला 9:35 हो गल बा और हैजा पर भाई माहेन हमनी के संगे जुड़ गल हवन माल पालमा बगल से और उनकर दीदी मान भी हमेशा हमनी के साथ है देवेलन तो चला बहुत प्यार से साथ देते रहिए जा जरूर बुझाता धमाल तो शुरू हो ये गल बा तो धमाल चरी रात के 11 बजे ले और ही मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई हमनी के साथ है देवत हवन ऐसे प्यार से साथ देते रहिए जा और ही मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जा पर गायत्री जी साथ देवत हवन अल्फोंस बगल से बेटा अजय मामी हवन कल्याणी मोहन भौजी हवन शकुंतला मोहताई लोंग से और खास सखी हवन गीता बाई और ही हमनी के बोले तनी बढ़िया गीत वा चला द लागी नाही छूटे राम जरूर चला देव तो हाइये गीतवा चलावब ललिता जी खातिन ललिता कुशल जे त्रियोले से साथ देवत हवन और वो भी बहुत खुशी रहेलन है गीत सुने के और आज उनकर प्यारी बेटी आरती के जन्मदिन बा तो चला आरती आरती के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देवब जा और दमाद बाबू हवन विकास साथ देवत हवन बेटा विशेष और विधि पुपू वीना और साथ है देवत हवन ललिता जी ममा ललिता हवन साथ हवन सुदेवी जी और ज्ञानी देवीना साथ छोटी पोलाव जैसे दादी प्रभावती भाई हरीश भाई आत्माराम मालाराम जावन सुखलाल मौसी खातिर और का बोले अब हमार चचा जोन है कौन दिन गल एगो बाबाजी हियाँ जाके बोले बाबाजी तनी हमनी के समझाव तनी ज्ञान द कि हम अपन भीतर के जोन कमी है ओकरा कैसे जानब कैसे हमनी के पता चली कि हमार भीतर कौन कौन कमी बा तब बाबाजी बोले बेटा बहुत सरल है बहुत इजी है तू अपन पत्नी के एक गो गलती बताइए ओकरा और फिर देखा तोहार कमी तोहार परिवार के कमी तोहार संगतिया के कमी सब एक के बाद एक उ तोरा सुनते जाए और जे तोरा और मन बा सुने के तो खाली अपन बुढ़िया के माता पिता के बुढ़िया के मतलब अपन तोहर ससुराल बगल के तनी कमी बताइए ओकरा उ तोहर पिछला जन्म के सब कमा सब सब कमी बता दे तोरा समझ गईला बोले बाबा जी तोहर चरण कहाँ बा

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला है जहाँ पर 9:41 और सब कोई हमनी के साथ देवा धवन ता चला ऐसन ऐसन बढ़िया बढ़िया गीत आज हमनी के श्रोता लोग चुन के अनले हवन और है जहाँ पर धर्मदेव जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन पुदोद अमलेट से औरी जैसे अभी थोड़ा घड़ी पहला लागी नहीं छूटे राम के है जुन गीत तू सुन ल लता मंगेशकर और तलत महमूद के आवाज में एक और गीत के वो मांग कर ले हवन है ये मूवी से लाले लाल होटवा से रस चुएला आउरी मजेदार गीत संगे ऐसन ऐसन बढ़िया गीत सुनब जा और साथ देवब जा सब कोई के आउरी हमर चाचा चाची के किस्सा का बोला भो कौन दिन चाचा चाची से पूछे हाय वशीकरण कौन ची हा तो चाची बोले हा जाने ल जोन व्यक्ति के कोई अपन प्रभाव से वशीभूत कर लेवेला और अपन मन पसंद काम करावेला ओकरा बोलल जाला वशीकरण। तो चाचा बोले धत पगली है वशीकरण थोड़ी है तो शादी है शादी में भी तो ऐसने होला का हो ऐसन बोला था।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: तड़का कार्यक्रम तो चला आगे बढ़प सा और बढ़िया गीत लाल मुनिया सोना नोयन के आवाज में रखल हाई गीत वा रफिक जी खातिन चला बाबा रफिक मोहित जो हमनी के साथ देवत हवन ताई आग बगल से तो चला उनकर परिवार खातिन चला बाबा हाई बढ़िया सन गीत और हमर चाचा के किस्सा तो सुनते चला जाने ल हमर चाचा बोले जा

नेला है जन महिला लोग हर तीन हल्ला शॉपिंग करे जाला। मतलब तीन हल्ला मतलब पहला हल्ला वो खाली देखे जालन सब कि कहाँ कौन चीज कौन भाव में बिकता। दूसर दिन वो जयन खरीदे जे खरीद ले है जब फिनी नहीं होला तीसर दिन फेरों से जालन सब। हम बोली का है तीसर दिन कौन चीज करे जालन साँझे करावे काहे के तीन हल्ला जब ले नहीं जयन तब ले ओकरा शॉपिंग जोन हाउ फिनी नहीं होला।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम देखते देखते चला 9:54 हो गल बा। औरी मजेदार कार्यक्रम 11 चली। और हैजा पर भाई अबू आफेज और संगे हवन असलम आया जायन जहीरा रईस खाला छोटी आपी और उनकर पत्नी और उनकर सब परिवार खातिर चलाओ अब डा जय हलाल के आवाज में रखल मच्छी मरवा के है गीत। काहे के भाई अबू हमनी के बोला आज उनकरा मच्छी खाए के मन करता। तो चला हैजा से तोहर खातिन है बढ़िया गीतवा चलाओ अब जा। और जाने ला हमार चाचा जोन हा बहुत सत्संगी हा भी बहुत सत्संग करता लेकिन सत्संग से कहाँ उकर दिमाग में का जानी कौन बात चलावेला। हमनी के बोले जाने ला हाउ जन रामायण में वाली रहल जाने ला ना वाली के एगो वरदान मिलल रहल। हम बोली हाँ चाचा वाली के है वरदान मिलल रहल ना कि ओकरा ओकर से कोई भी लड़ाई करी कोई भी युद्ध करी तो ओकर जोन शक्ति हौ वाली के भीतरे चल जाई ओकरा आधा शक्ति मिल जाए। बोल रहे हाँ वाली है रहल द्वापर युग के वाली सलमा जाने ल कल युग में बुझाता है जोन वाली है वो फेरो से प्रकट हो गल बा। हम बोले सच्चे कैसे जानब। बोले हाँ है जोन वाली है वो घर वाली बन के प्रकट हो गल हवन काहे के हमर जितना शक्ति है वो आधा हमर शक्ति सब खींच ले वेला। तू काहे झगड़ा करेला चाची संगे

चल रात के 10:02 हो गलवा भोजपुरी दल का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम के संगे संगे आप सब कोई के साथ देवा था और रात के 11 ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखब जात चला मजेदार कार्यक्रम संगे हईजा पर हमनी के साथ ढेर कोई जुड़गल हवन और हईजा पर हमनी के साथ देवत हवन पूर्णिमा फुकीरा जी तो चला उनकर खातिर अगला गीत चलावब जा और उनकर 4 बेटी प्राविनी पिंकी पूनम और पूजा और साथ देवत हवन उनकर बेटा प्रवेश और पतो हवन साथ देवत हवन और फुकीरा परिवार देवी दयाल परिवार कालिया चेती परिवार और उनकर सब SSRN के स्टाफ लोग खाती नगला गीत चलाओ अब जात चला हंसते रहिया मुस्कुराते रहिया और ई गंगा मैया के हई गीतवा उनकरा खातिन उनकर खातिन चलाओ अब जा और हमर पप्पू भैया के त किस्सा सुनते चला। पप्पू भैया कोन दिन अपन गर्लफ्रेंड से भेंट करे गल और गर्लफ्रेंड के जाके बोले बाबू जाने ल अभी लेसेंस के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गल बा। तो ओकर गर्लफ्रेंड बोले हाँ तो हम का करी पेट्रोल के भाव है लेसेंस के भाव तनी जस्ती बढ़ गल बा तो हम का करब हो। बोले नहीं हम तो बोलत रही कि जौन दिन तोरा मन करी ना तनी लॉन्ग ड्राइव करे के तो तनी आधा पैसा दे दिया हमर खातिन जेकर में हमनी के उतना महंगा नहीं पड़ी हो।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:09 और मानती जी हैजा पर हमनी के साथ जुड़गल हवन हल्दी से भाग भाग के धौ धौ के वापस चला काहे के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम शुरू होई 9 बजे से लेके 11 बजे ले और हमनी के संगे जुड़गल हवन नोबेल फर्स्ट बगल से दुगो बहिन अनंती और आरती साथ हवन भव्य पुष्कल और

हितांशु और गिरीशा और मिता खातिन चलाओ अब जा अगला गीत गिरीशा और मितिशा खातिन। तो चलो मजेदार गीत और संतोष महादेव के आवाज में रखल है गीत गरम गरम दाल कचू और है गीत खास कर उनकर खातिन जे अभी हरदी में हवन और हरदी के समय में कचू और पूरी खाए के जो मजा है वो तो बढ़िया रहेला लाजवाब रहेला। और हमर चचा जोन हा का जनी को दिन ऐसे मुंह लटका के बैठल रहल हम पूछने कौन चे होल चचा काहे रोज रोज नियर तू अपन मुंह जोन है इतना लंबा बना के बैठल हव। बोले जाने ला छोटा रहले ना हमर जब परिवार जब आत रहल हमर दादा हमर नानी नन्ना सब आत रहल तो हमनी के पैसा देवे तो हम तो छोटा रहली तो उतना तो अकल नहीं रहल हमनी के कि पैसवा से कौन ची करब तो हम तो सोचत रहली आशीर्वाद देते तो जस्ती अच्छा रहते ना आशीर्वाद देते तो हम तनी पढ़ लिख के तनी डॉक्टर बन जाती तो आशीर्वाद नहीं देलक हमनी के पैसवा दे के चल जात रहल। अब जब बड़ा हो गल है तब कबो पैसवा के जरूरत पड़ेला तब लोग हमनी के पैसवा नहीं देवे हमनी के आशीर्वाद देवे बोला आज पैसवा के जरूर है तब पैसवा नहीं देवता आशीर्वाद देवता कहाँ जाता दुनिया कहाँ जाता है हमर समाज अरे कहाँ जाता हम कैसे जानब चचा हमनियों के है ये हाल बा तनी गरम गरम दाल कचू खा ला।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखा था।

और हईजा पर हमनी के साथ देवत हवन ग्रीना जे फ्लोरियाल बगल से हमनी के संगे जुड़ गल हवन। और आज के कार्यक्रम में हमनी के बोले विनोद शिवदत्त के आवाज में रखल ठेला ठेली के हई गीतवा तनी हमर खातिन चला द बहिन काहे नहीं हो। और हई गीत चलाव जा बेटी परी खातिन जे हमनी के साथ देवत हवन मोताबा बगल से। तो चला बढ़िया गीत विनोद शिवदत्त के आवाज में रखल बिस्टॉप में ठेला ठेली। बी स्टॉप में तो छड़ो चाची के घर में जितना ठेला ठेली होते रहेला। जाने ल चचा कोंची कलन काल अपन पड़ोसन संगे जाके फिल्म देखलन तो चाची खिसिया गल। अच्छा तो सच्चे है चाची ढेर खिसिया गल और खिसियाते बोले चचा के का हो हम सुनले हैं काल तू पड़ोसन संगे फिल्म देखे गल रले। बोले हाँ बुढ़िया का बताओ तोहरा जाने ल है फिल्म संस्कारी फिल्म नहीं रहल पारिवारिक फिल्म नहीं रहल उही खातिर हम पड़ोसन संगे गल रही समझ गई काहे के है फिल्म अच्छा नहीं है संगे बैठ के देखे के। और हमर बोली चाची चचा के बतवा के सच मान लेलक।

0: भोजपुरी तड़का
1: राजा बंधु की आवाज में रहल थोड़ा जीले हई बढ़िया संगीत और चलाए कर संगे संगे आगे बढ़ब से और हई जा पर बढ़िया बढ़िया गीत संगे जितना कोई हमनी के साथ है दिवत हवन बस प्यार से साथ है देते रहिए जा और मजेदार गीत के कार्यक्रम के संगे चला अगला गीत जो है अभिमन्यु हरपाल की आवाज में रखल और हई गीत चलाओ अब जा पंडित राज वर्मा खातिर जे पेची तकाफ़ी से हमनी के साथ हमेशा साथ है जुड़ल रहेलन और बड़ुआ परिवार खातिन अगला गीत के मांग करले हवन और ये हमर चचा जाने ल बोले हमनी के हाई जोन मीन पकावेलन सब कोई मीन में और बुढ़िया में बहुत अंतर नहीं रहेला। हम बोले का बोला था वो चचा बोले देखा मीन पकाए के 2 मिनट लगेला 2 मिनट में वो बन जाला। हाँ तो वो कहाँ कहाँ कहाँ से कहाँ तू जोड़ा था तब बुढ़िया में कहाँ कौन अंतर बा बोले मीन बनेला 2 मिनट में वो बन जाला पक जाला और बुढ़िया जोन रहेला वो 2 मिनट में बिगड़ जाला कुछ भी बोल बा तो मुँह चढ़ जाला ओकर।

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम और ही चला है जहाँ पर 10:32 हो गल बा आदेश ताकुपन सा पसंद के आवाज में रखल है अगला गीत पसंद कर ले हवन विजय बंधन जी क्लावेज से उनके प्यारी पत्नी उनकर प्यारी पत्नी रेखा और तीन गो बहिन चंदनी बिंदु कुमारी उनकर सब संगतिया खातिन उनकर सब परिवार खातिन और आदेश ताकू प्रसान के आवाज के रखल है गीत है एल्बम छोकरा के छोकरी तो चला सुनब जा है मजेदार गीत।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। और तू सुनत हुआ, और रात के अभी 10:40 हुआ था। तो चलो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आगे बढ़ब। सा छोटी पोलाव जैसे हमने के संगीत जुड़ गल हवन, और भाई आत्माराम, दादी प्रभावती, चाची ललिता और उनकर सब संगतिया खातिन चलाव अब जा विनोद शिवदत्त के आवाज़ में रखल है अगला गीत।

भोजपुरी गाना विनोद सूदत के आवाज में रखल हई गीत के बाद चला सुनीता ननकू के आवाज में रखल अगला गीत चमेली चमेली और हई गीत शोभा जी सुदेवी जी खातिन चलाओ अब डा जे अभी वाकवा से हमनी के साथ देवत हवन दीदी ललिता कुशल खातिन जे त्रियोले से साथ देवत हवन भाई आत्मा राम खातिन सुनीता शोभा देवीना और मालेगा के राम रतन परिवार चला एकर संगे नाम जोड़ब जा नीता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन से जुलिया विलास बगल से और साथ देते रहिए जा।

घुमाइते घुमाइते चमेली के घुमावत हवन है, जहाँ पर चाची चमेली भी बहुत घूमेलन सर चचा जोधर संगे। और 10:52 हो गल बा, राधा जी हमने के साथ देवत हवन। वेल फोन से आज उनकर बहिन आरती के जन्मदिन बा, कात को बोन से साथ देवत हवन उनकर 4 गो लड़का 4 गो बहिन की ओर से, भाई राकेश की ओर से, और साथ हवन भगीना भविष्य और नीतीश और प्रताप परिवार और निंजू परिवार की ओर से साथ है देवत हवन। तो चलत तोहरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई आरती जी, खासकर तोहर बहिन राधा बगल से।

आज अपन जन्मदिन मनावत हवन उन सब कोई खातिन है ये गीत। और चला आज के कार्यक्रम भाई, आज लगभग कार्यक्रम समाप्त होता पर ढेर कोई हमनी के गीत मंगले बा। आई जा पर कल्याणी जी हमनी के संगे बहुत शेरी से जुड़ गल हवन, और अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल अगला गीत के वो मांग कर ले रहलन, और साथ ही साथ श्यामा रघुनंदन जी भी साथ है देवत रहलन शारदा सिन्हा के वो गीत मंगले रहलन, और साथ देवत रहलन शोभा जी का थोबोन से उनकर बड़ा भैया खातिन जे जिनकर तबीयत उतना अच्छा नहीं बा, पर अभी समाप्त हुआ था समय भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के, और सुदेश बोईजू के आवाज़ में रखल हाई गीत करब जा माहेन भैया खातिन जी हमनी के साथ है देवत हवन। तो चला सुदेश बोईजू के आवाज़ में रखल हाई ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त हुआ था। आशा करब जा कि आप सब कोई हमनी के बहुत ही प्यार से साथ देलन, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सब कोई के, और हमनी के बाद सुनहरे पल कार्यक्रम तो सुने सकब नीतूषा की प्रस्तुति में। तो चलो इसी के साथ बस आज के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त करत हैं, फेरों से भेंट आप आवत शाम दी के। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्कार शुभ रात्रि आप सभी को।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतुषा का कर्ज और प्रणाम। इस समय आप सुनहरी पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आइए श्रोताओं, आज हम आपको खयाम साहब, जो मशहूर संगीतकार रहे, उनकी दुनिया में ले चले हैं।

भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया में अगर किसी संगीतकार ने अपनी मधुर धुनों, सादगी और शास्त्रीय संगीत की खूबसूरती से हमेशा के लिए अपनी अलग पहचान बनाई, तो उनमें से एक बहुत ही सम्मानित नाम है खयाम साहब। पूरा नाम मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी था। उनका जन्म 18 फरवरी 1927 को पंजाब के राहौन गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने संगीत और फिल्मों का बहुत शौक था। महान गायक अभिनेता के.एल. साइगल से प्रेरित होकर उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही संगीत को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला कर लिया। शास्त्रीय संगीत की गहराई तालीम ने उनकी धुनों को एक अलग ही रूहानी एहसास दिलाया।

अपने संघर्ष के दिनों में खयाम साहब ने कुछ समय तक सेना में भी सेवा दी। इसके बाद वे मुंबई आए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कठिन संघर्ष किया। शुरुआत में उन्होंने एक म्यूजिक ड्यूओ के रूप में भी काम किया, लेकिन बाद में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उनकी प्रतिभा चमक उठी। फिल्म फिर सुबह होगी ने उन्हें पहली बड़ी पहचान दिलाई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

खयाम साहब की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे संगीत में कभी अनावश्यक शोर या भारी ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका मानना था कि गीत की असली ताकत उसके बोल, भाव और सुरों की सादगी में होती है। इसलिए उनकी हर धुन दिल को सुकून देने वाली होती थी। उन्होंने गजल, शास्त्रीय संगीत और कविता को इतनी खूबसूरती से अपनी रचनाओं में पिरोया कि उनका संगीत हमेशा के लिए अमर हो गया।

उन्होंने बॉलीवुड को कई अमर फिल्मों का संगीत दिया, जिनमें कभी कभी उमराव जान, नूरी, बाजार, राजा सुल्तान, आखिरी खत, थोड़ी सी बेवफाई और दर्द जैसे नाम शामिल हैं। इन फिल्मों के गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने दौर में थे। कभी कभी मेरे दिल में, दिल चीज क्या है, इन आँखों की मस्ती, फिर छिड़ी रात, दिखाई दिए यूं और आजा रे ओ मेरे दिल बर आजा जैसे गीत उनकी बेमिसाल कला के जीते जागते उदाहरण हैं।

साहब ने लता मंगेशकर, आशा जी, रफी साहब, मुकेश दलत महमूद, भूपेंद्र, जगजीत कौर और येसुदास जैसे महान गायकों के साथ काम किया। उनकी पत्नी जगजीत कौर भी एक प्रतिभाशाली गायिका थी। दोनों की जोड़ी संगीत जगत में बहुत सम्मान के साथ देखी जाती थी।

एक बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि खयाम साहब ने अपने पूरे करियर में बहुत अधिक फिल्मों में संगीत नहीं दिया, लेकिन जितनी भी फिल्मों में दिया हर गीत को एक अनमोल हीरे की तरह तराशा। उनका मानना था कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है, इसी वजह से उनका हर गीत आज भी एवरग्रीन माना जाता है और हर पीढ़ी के संगीत प्रेमी उसे बड़े शौक से सुनते हैं।

उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी अनोखी प्रतिभा और भारतीय संगीत को दिए गए अमूल्य योगदान का प्रमाण

अगस्त 2019 को खयाम साहब इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी मधुर धुनें आज भी हर दिल में जिंदा है। उनका संगीत हमें ये सिखाता है कि असली कला कभी शोर नहीं मचाती, बल्कि खामोशी से दिलों में उतर जाती है। खयाम साहब सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, बल्कि सुरों के एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को नज़ाकत, गहराई, शायरी और रूहानियत का अनमोल उपहार दिया। जब भी बॉलीवुड के सुनहरे संगीत का इतिहास लिखा जाएगा, खयाम साहब का नाम बड़े गर्व, सम्मान और श्रद्धा के साथ हमेशा लिया जाएगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्ही ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया।

0: रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
1: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
0: मेरे बारे में?
1: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो। तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
0: हटो चापलूस कहेंगे।
1: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

में हमको रहना नहीं, हम प्रेमी हैं तोता मैना नहीं।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो